और पालकी में होके सवार चलिए, और मैं तो अपनी साजन की और द्वार चलिए, और चलते हैं अलका याग्निक कुमार शानू की ओर, जिस फिल्म में संजय दत्त ने काम किया है महिमा चौधरी के साथ। तो चला जाए अलका आपकी आना और दिल में धड़काना।

और मेहनी लगा करे और खुद चले आना, और जब मेहनी लगेगी तो प्यार जरूर आएंगे हमारे दोस्तों। चलते हैं कुमार शानू और साधना सरगम की ओर। इस फिल्म में गोविंदा और शिल्पा शेट्टी ने काम किया है, और दोस्तों आओ सुना जाए ये कौन सा सॉन्ग है, और ये बहुत मस्त फिल्म के नाम है क्रेडिट्स भैया। हाँ।

हाँ अगला गीत मैं चलाने वाला हूँ, तो ये है इस तरह से मैथिली मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस और लता जी के साथ रोटी कपड़ा मकान नेगन तीन फिर से इवन तक का ये गीत आपकी जानी पहचानी गीत है।

मैं ना भूलूंगी लता जी और मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ अ मिलियंस रोटी कपड़ा मकान में से आपको सुनाए हमने ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप सुन रहे हैं और आपका हृदय से स्वागत करते हुए चलिए हम आपको ये गीत सुना रहे हैं। क्या ख्याल है, इस तरह से आ रहा है।

शंकर जय किशन के साज पर माइती मुकेश करोड़ों के दिल पर राज करने वाला आपको सुनाए निकती ए सही फिल्म का एक गीत 1971 का और फिल्म नादान में से चला। चलिए अगला नंबर हम चलाने वाले हैं, क्या ख्याल है, ये लंबा चौड़ा गीत सुनिए रफ़ी साहब की आवाज़ में।

फिल्म अली बाबा एंड द 40 थीव्स यानी अली बाबा और 40 चोर। इसकी कहानी बहुत अच्छी है, गीत सुन।

0: देख लीजिए, अब कोई नहीं कह सकता कि सर धड़ से अलग था।
1: शाबाश, ये लीजिए आपका इनाम।
0: शुक्रिया शुक्रिया।
1: मुस्तफा बाबा, जरा आंखों पर पट्टी बंधवा लीजिए ना।
0: बांधिए बांधिए।
1: कल रात को मैं फिर आपके घर आऊंगी।
0: किसी और की गर्दन काटने का इरादा है क्या?
1: नहीं नहीं, सिर्फ आपसे मिलने।
0: जरूर आइए जरूर आइए।
1: चलिए
0: चलिए।

हम तेरे चिराग है, जलाए जा बुझाए जा। तवारीख गवाह है, यानी खुशकिद ने इतिहास गवाह है। अली बाबा एंड द 43 में ये गीत हमने निकाले हैं। और ये असली कहानी है, सही कहानी है, क्योंकि कितने किताबों में आया है, कितने पुस्तकों में इसका जिक्र हुआ है। उषा खन्ना के साज पर नेक दिन ससन शस्त्र का ये फिल्म हम आपको सुनाए। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है इस तरह से। जी हाँ।

लता जी और हेमंत कुमार जी, ये दोनों मिल के ये शानदार द्वैत आपको सुनाए हैं ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप भी सुन रहे हैं। और आपके धन्यवाद, एक दो लोग जो ऐप किए कार्यक्रम सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन वो अपना नाम नहीं बताना चाहता है। बहरहाल वे लोग जान गए हैं, आपका हृदय से स्वागत है। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है रफ़ी साहब का, ये गीत सुनिए। ये गीत है फिल्म बेरहम का, जी हाँ, बहुत प्यारा गीत है। नेगेटिव तख्त का ये फिल्म है और बहुत प्यारा गीत है, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साथ पर रफ़ी साहब की आवाज़ में। ये गीत में बहुत सा ज्ञान भरा हुआ, इसे ध्यान से सुनिए, अगर समय मिले तो सुनिए अवश्य। और अगर आज बिजी हो गए तो काम करते रहिए, लेकिन ये गीत सुनिए, इनकी शब्दों पर ध्यान दीजिए।

पेशानी पे जो लिखा है वो पेश आएगा, मालिक ने जो लिख दिया है वो बदल ना पाएगा। पता है सही है या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये भी गाया गया है कि भागवत भगवान की आरती पापियों के पाप से है तारती, लेकिन पता नहीं। बहरहाल ये गीत हम आपको सुनाए, निखती तख्त का ये गीत है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर। हमने कहा इन गीत इसलिए कहा कि वर्मा मालिक के लिखे हुए गीत हम आपको सुनाएं कि कितने प्यारे शब्द है इस गीत में। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो है माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस। इंद्रिय संयुक्त कहानी किस्मत की टाइटल सॉन्ग।

कहानी किस्मत की मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाइए ये शानदार गीत ओफर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, देखते हैं महेंद्र कपूर। महेंद्र कपूर जी की आवाज़ में हम आपको सुनाते हैं ये शानदार गीत, इस तरह से आ रहा है।

महेंद्र कपूर जी और हेमंत कुमार जी की आवाज़ में ओपी नैयर के साथ पर फिल्म संबंध में से निकाल कर ये गीत हम आपको सुनाए ऊपर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए एक ही गीत और हम आपको सुनाते हैं, उसके बाद फिर हम आगे कार्यक्रम लेकर बढ़ेंगे। ये गीत इस तरह से है।

हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए, ये शानदार गीत चला लता जी और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में हमने पेश की www.fm.nl पर। आप चुने जो लोग चुन के मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है। या शाम के कार्यक्रम में तो लीजिए हम आपको सुनाते हैं ये शानदार गीत इस तरह से आ रहा है।

आई लव यू, ये शानदार द्वेत हमने पेश की ऊपर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप सुन रहे हैं ओम मैं चला रहा हूँ, इस तरह से हमने पेश की ये गीत। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं और वो ये है, इस तरह से आ रहा है।

देखो बिना सावन बरस रही बदली, और ये शानदार गीत हमने पेश की रफ़ी साहब की आवाज़ में निकती निघ्न फैफ्तक का ये गीत हंसराज बहल के साज पर। जो लोग चुन के मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है फोन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में जो दिन हाक शहर से प्रसारित हो रहा है। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, और क्या ख्याल है, फिल्म फिल्म फिल्म फिल्म होली आयरे में से निकाले नेगेटिव सेफ इंतख का ये गीत है मैथ मुकेश, इस तरह से

माइट मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए, ये शानदार गीत हमने पेश की फॉर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। हमने प्लेयर में तीन गाने रखे हैं, जी हाँ तीन गाने, चार गाने रखे हैं। अब सोचता आया, सोचता ये हूँ कहाँ शुरू करूँ, चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। रफ़ी साहब की आवाज़ में गीत आप सुनिए, फिल्म दो बदन में से है।

ये पखेरू प्यार के संसार के, अब कभी मिलकर बिछड़ सकते।

नैनों में बदरा छाए, ये गीत हमने निकाले हैं मदन मोहन के साज पर मेरा साया में से, और हमने पेश की ओफर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। एक गीत हमने और प्लेयर में रखे हैं, ये सुबह के लाली के जिक्र कर रहा है। अब ये मुझे पता नहीं है कि सुबह ये गीत चलाना चाहिए या शाम को या दोपहर को या रात को, ये पता नहीं है, क्योंकि ये गीत मेरे दिमाग से निकल गया। इसका धुन कैसे है, बात कैसी है, आशा जी एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुना रहे हैं। फिल्म है अभी तो ये, अभी तो जीले में से निकाल रहे हैं निकती सीफ न सीफ तक, चलो सुनते हैं। चलो एक बार मैं भी बेवक्त के शहनाई बजा दूँ।

तू लाली है सवेरे वाली फिल्म है अभी तो जी ले नेगती सैफन सैफन तक आशा जी और एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए। दरअसल में ये गीत हमने पहली बार चलाया, पता नहीं धुप्पल में कैसे मिल गया। इसका म्यूजिक डायरेक्टर है जगमोहन बख्शी और सपन सेन गुप्ता। मुझे इस फिल्म के बारे में बिल्कुल कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अब जब हमने सुन लिए, देख लिए और जान लिए, तब ढूंढेंगे ये फिल्म कि कैसा फिल्म है ये। अभी तो जी लेने नेगती सैफन सैफन तक ये गीत हम आपको सुनाए ओ फॉर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो।

है इसी में प्यार की आबरू, मदन मोहन के साज पर लता जी की आवाज़ में हम आपको सुनाए। मैं भी एक गीत बैठ के बहुत दिनों बाद सुन रहे थे, बहुत अच्छा लगा। इतने खो गए थे इस गीत में कि हमने भूल गए ये गीत भी चून करने को कि ये गीत कैसा है। चलिए हम आपको सुनाते हैं, मुझे भी नहीं पता कैसा गीत है।

बस महालक्ष्मी की आवाज़ में हम आपको सुनाए ये शानदार गीत ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। जी हाँ, आप चुन है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर, आप सबको हृदय से स्वागत है। आपका स्वागत करते हुए चलिए हम आपको सुना रहे हैं ये शानदार गीत, इस तरह से आ रहा है।

गीता राय जी और आशा जी मिलके आपको सुनाएं ये शानदार गीत हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। और गीत हमने निकाले हैं निकली फेहे फेफ तक से ओपी नैयर के साज पर और पेश किए ये शानदार गीत। आपको एक बात बता दूं, शायद आपको अच्छा लगे या ना अच्छा लगे, लेकिन फिर बता देते हैं। उस समय मैं 7 साल का था, जिंदगी में पहली बार ये फिल्म हमने देखे हैं थिएटर में। वैसे तो रे करे 80 साल में देखे हैं, लेकिन थिएटर में पहली बार गए हैं थिएटर लुक्सोर में गए ये फिल्म को देखने। बहुत अच्छा लगा था थिएटर में बैठ के, एक कुर्सी पर अच्छा लगा था। वैसे तो बांगी पर बैठ कर देखते थे। बहरहाल ये गीत हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो।

लता जी और मैं तू मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए हैं फिल्म सुनहरा संसार में से निकाल कर 1975 का ये गीत नौशाद अली के साज पर हमने चलाए हैं। चलिए अगला गीत क्या ख्याल है, शाम का वक्त है तो लीजिए इस तरह से।

देखती हूँ जिधर आशा जी। जी हाँ, आशा जी फिल्म हांगकांग में से निकाले हैं निगेटिन ट्विन सस्तक और ओपेन नैयर के साथ पर हमने चलाए हैं। चलिए हम आपको ये गीत सुनाते हैं, जब आप भी हैं और मैं भी हूँ तो क्या ख्याल है।

कैसे हो मुकेश जी और लता जी मिलके आपको सुनाए मदन मोहन के साज पर। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो है क्या ख्याल है अगर जो मैं आपको ये सुनाऊं। महेंद्र कपूर जी, फिल्म का नाम है सम्राट, संगीत सम्राट तानसेन। जी हाँ, फिल्म का नाम है संगीत सम्राट तानसेन। फिल्म का नाम है निगेटिव ट्विन, शस्त्र से हम निकाले हैं। इस तरह से हम आपको सुनाते हैं।

दुनिया है मेरी, महेंद्र कपूर जी और लता जी आपको सुनाए ये शानदार गीत। और फिल्म निकली तू ऐसे कहा देखते हैं संगीत सम्राट तानसेन के साज फिल्म संगीत सम्राट तानसेन में से निकाल कर हमने पेश किए कल्याण जी आनंद जी के साज पर ये गीत था। चलिए अगला गीत है हम चलाने वाले हैं आपके लिए, बस आप ही हैं मैं भी हूँ, आप सुन रहे हैं मैं चला रहा हूँ, तो क्या ख्याल अगर ये आपको ये सुनाऊँ इस तरह से। अच्छा जी और रफी

इजाजत हो तो सुना दूं, ये गीत चला ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, आशा जी और रफ़ी जी ने आपको मिलके सुनाए हैं। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, देखते हैं द मैन विद द गोल्डन वॉइस, द मैन विद द गोल्डन वॉइस क्या ख्याल है।

एवरग्रीन, जी नहीं एवरग्रीन नहीं, लेकिन द मैन विद द गोल्डन वॉइस, तलत साहब ने आपको सुनाए ये शानदार गीत हमने पेश किए। जब आप भी हैं या मैं भी हूँ तो क्या ख्याल है, ये गीत तो आप बहुत बार सुन चुके हैं, लेकिन आज के कार्यक्रम में फिर भी मैं चला रहा हूँ फिलिप अनुपमा में से निकाल कर नेक तीन सेशन सेस्तक और हेमंत कुमार के साज है लता जी है।

0: फिर
1: उठो ना, गाओ।
0: चलो मुंह हाथ धो लो, याद नहीं आज दावत पे जाना
1: है। अभी तो बहुत वक्त है, उम्मीद से ज्यादा मिल जाए तो ऐसा मालूम होता है

दिले बेकरार फिल्म अनुपमा में से निकाले हैं। हेमंत कुमार के साथ पर लता जी ने पेश की और निगेटिव सेंसेस का ये फिल्म 1966 का ये फिल्म है। चलिए जहाँ आप भी हैं मैं भी हूँ तो आपको हम क्या सुनाते हैं। ये गीत हमने चुन की है लेकिन हमने सुना नहीं, किशोर कुमार जी आपको सुना रहा है। फिल्म है देखते हैं संसार में से निकालते हैं चित्रगुप्त के साज पर। क्या ख्याल है एवरग्रीन किशोर कुमार?

हाँ, हाथों में किताब, बालों में गुलाब, जबरदस्ती की प्यार, हम आपको सुनाए हैं ये चटपटा चुटकुला गीत, एवरग्रीन किशोर कुमार ने आपको सुनाए हैं ओफर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। अगर ये आपको किसी से प्यार है और आप उनके आँखों की तारीफ करना चाहते हो और आपको नहीं पता है कि उनकी आँखों की तारीफ कैसे किया जाए, तो चलिए हम आपको सुनाते हैं, मैं आपको सुनाता हूँ, रफ़ी साहब सुनाता है आपको इस तरह से। मदन मोहन के चार साज पर फिल्म चिराग में से निकाल कर निगति निघ्न शस्त्र 1969 का ये गीत।

तेरी आंखों के सिवा इस दुनिया में रखा किया है। रफ़ी साहब की आवाज़ में लता जी भी साथी और हम आपको सुनाए उफरफाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं। ये बंदा जैसे रफ़ी साहब कभी शराब नहीं पीता था, तो जहाँ तक मेरा ख्याल है किशोर कुमार जी भी शराब नहीं पीता था, लेकिन मुझे पता नहीं पक्का, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल वो भी शराब नहीं पीता था। लेकिन जिस तरह से उन्होंने ये गीत गाए हैं, एवरग्रीन किशोर कुमार, फिल्म कटी पतंग में से हम आपको सुना रहे हैं।

खेले टूटे अगर सागर नहीं।

एवरग्रीन किशोर कुमार ने आपको सुनाए हैं, ये शानदार गीत हमने पेश किए। ओ परफॉर्मिंग स्थानीय रेडियो, जी हाँ, फिल्म कटी पतंग में से निकाल कर। चलिए, माइत मुकेश, द हार्ट ऑफ मिलियंस, इस तरह से।

0: वाह क्या बात है लता जी, और माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए हैं फिल्म झूला में से निकाल कर, ये शानदार गीत हमने पेश किए ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप सुन रहे हैं और मैं भी सुन रहा हूँ और आप मैं चला रहा हूँ आप सुन रहे हैं, आप चुन है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर।
1: शांति सांसारिक साधनों में नहीं, अपने सत्यता और सत्य स्वरूप को पहचानने में है।

दोस्तों, पक्का इरादा रखने का मतलब है कि आपके मन में कोई ऐसा विचार ना हो जिसमें कमजोरी हो या ताकत की कमी हो। मित्रों, सिर्फ सही विचार और जीत के विचार जो आप खुद से कहते हैं पक्का है। जो आप खुद से कहते हैं और दृढ़ विचार हो मित्रों, लिफ मैंसन फर्स्ट बरादन जैन बतेकन खीन एंकल खदख्त है बन दी ज्वक्त ऑफ करख्त लोज है मैं जख्मे ब्रेंट अलेन अलेन पॉजिटिव खदख्तन एंड खदख्तन फन ओवरविनिंग दी ये जेल्फ फोर हाउट जैन जीकर। दिस blijf altijd positief, beste mensen, blijf altijd positief. Bhai behno, विश्वास और प्रार्थना दोनों दिखाई नहीं देते, लेकिन वे नामुमकिन चीजों को मुमकिन बना देते हैं। Geloof en gebed zijn beide onzichtbaar, maar ze maken onmogelijke dingen mogelijk. Houd dat geloof en die overtuiging levend, beste mensen. Houd het levend. Mitro, kabhi samjhao mat. Suniye, kabhi samjhao mat. Tumhare doston ko iski jarurat nahi hai. Aur tumhare dushman is par यकीन नहीं करेंगे। तुम्हारे दुश्मन नहीं करेंगे आपके बात पे, आपके समझाने पर। मित्रों, तो बेस्ट मेंशन गीफ नोइट आउटलेग योर फ्रेंडन हैबन हैट नीट नोडिग गीफ नोइट ongevraagd आउटलेग वंस ze hebben dat niet nodig en je vijanden zullen het toch niet geloven. Ze zullen het toch niet geloven, beste mensen.

दोस्तों, एक बच्चा एक बड़े को तीन बातें सिखा सकता है। तीन बात: बिना किसी वजह के खुश रहना, हमेशा किसी न किसी काम में बिजी रहना, लगे रहना मित्रों, और जो वो चाहता है

और मित्रों, आपके पास जो है उसके लिए शुक्र गुजार रहे हैं मित्रों, और आपके पास और भी होगा। अपने कामों पर भरोसा रखें, वो मायने नहीं रखते हैं मित्रों। मेहनत करो, एक लक्ष्य बनाओ और उसी पे चल पड़ो। लिफ मैनसन वेज दंग बार फॉर वॉच ए हैप एंड ये जो मेर करेगन हैप फॉर थ्रोवन इन ये दादन The talent well degelijk mee, beste mensen.

दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चीज़ों को करते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चीज़ों को होते हुए देखते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि क्या हुआ, का होइगे। मित्रों, और सफल होने के लिए आपको ऐसा इंसान बनना होगा जो चीज़ों को करता है, मेहनत करता है, सही रूप से करता होगा। मित्रों, तभी आप आगे बढ़ेंगे। और हाथ बटोर कर झलुआ में सूतल करियो मित्रों, तो कुछ ना बनी और बीमार भी हो जाइयो। हाँ, बेस्ट मैंसन एरजेन मैंसन दी दिंगन फोर एलकार करेकन एन एरजेन मैंसन दी तू कैकन हु दिंगन खबेरन एन एरजेन मैंसन दी जिख अफराखन वत एर इस खबेर। Lieve mensen, om succesvol te zijn, moet je iemand zijn die dingen voor elkaar krijgt, moeite doet, vooruitstrevend is, heeft een doel. Dus blijf je best doen en het lukt wel. Het zal zeker lukken. Maar nu ook blij lesie man en je wil iets groots worden, rijk worden, veel bereiken. Dat je lesie lek wang, zeker een pad toe. Pas op, hè. En wanneer we aan dat neer opkomen. Mitron, ik zonder dress. Hamare lok ko beter banati hai. Lekin, zonder vyavhaar me hamari zindagi badalne ki chamta hoti hai. Kapda se lok kahenge wa moi moi moi moi. है? मगर तुम्हारा व्यवहार कैसे है, दैट इज बलांगर एग। ओ मेंस अनमोय यूरोप फॉर बेहतर ओंस अतरलक क्लियर माक द मन लाइटन स्प्रेक वो दिस अनमोय यूरोप फॉर बेहतर ओंस अतरलक मार मोय खदराख कान ओंस लीफन फरांदरन। फिंच दिट नीत मोय, is dit niet mooi dat jouw leven verandert? Helemaal mooi.

भाई बहनों, जिंदगी एक सफर है जिसमें समस्याएं हल करनी है, प्रॉब्लेमन को हल करनी है, ऑप्लोस करनी है मित्रों, और सबक सीखना है इस जीवन की यात्रा में। लेकिन सबसे ज़्यादा अनुभव बतलाना है, एरफारिंग जो आपको मिला है वो बतलाओ, शेयर करने और एंजॉय करने हैं मित्रों, मज़ा लेना है, दूसरों को भी बताओ सही सही बात। फ्रिंदन, हैथ लीफ इस न रेस मेट प्रॉब्लेमन ओम ऑप्टोलोसन एंड लेसन ओम तुलेरन मार बोफनल एरफारिंग एन ओम तेलन एंड फन तनीतन। ये पॉजिटिव एरफारिंग मुझे मैं मेंसे देलन बेस्ट मेंसन। और साथियों, हमारे घरों में सही टेम्परेचर हमारे गर्म दिल और ठंडे दिमाग से बना रहता है मित्रों, हितकारक और एयर कंडीशनर से नहीं, दिमाग ठंडा होना चाहिए। बुरे बुरे विचार निकालो खोपड़ियाँ में से वगैरह वगैरह, तब दिमाग ठंडा रहेगा। अन्यथा आप एयरको में बैठे हो मगर दुनिया भर के कचरा खोपड़ियाँ में है, तो कैसे ठंडा रहेगा दिमाग। आर्द खमैंसन द यस्त टेम्परेचर इन ऑन्ज हाइजन वर्ड खहंत हाफ दोर ऑन्ज वर्म हार्टन एंड कूल हेस्टन नीट दोर फॉर वार्मिंग एन एयर कंडीशनर नहीं, ये मुझे फरस्तान कूल हाउदन नुक्तर जैन, ये मुझ नीत नहीं कहती बेसिक जैन तो कहें वेल इन एन एयर को काम और सेतन मद हैप्पी टॉकनिक सन। दोस्तों, हालात समय और लोग किताब से बेहतर सबक सीखते हैं समस्याओं से, एरफारिंग से आपको और ज़्यादा ज्ञान मिले हैं मित्रों। ओके मैंसन सिटिवासिस टेट एंड मैंसन लेर ऑन्स बेटर लेसन दान एन बुक मैंसन मैथ फेल एरफारिंग एंड दी कन योर मेयर फॉर टैलन दान वॉट आर इन एन बुक की स्टार्ट बेस्ट मैंसन।

मित्रों, सुंदर विचार और अच्छे लोगों की संगीत एक संत आत्मा को पोषण है। मित्रों, मोये खदाख्तन एन हेट गजेलस्काप फन फेन मैंसन फूदन एन फ्रेड गजील। भाई बहनों, जिंदगी इस बात से नहीं मापी जाती कि हमारे पास क्या है, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि हम कितना प्यार देते हैं, कितनी दया दिखाते हैं और कितनी यादें बनाते हैं। मित्रों, ये है मायनी। बेस्ट मेंशन हेट लीफन वोर्ड नीत खमेतन दोर वत बजेतन मार door de liefde die we geven, de vriendelijkheid die we tonen en de herinneringen die we maken. Dat is belangrijk, beste mensen. Mitron, toota hua bharosa, dhyan karna. Toota hua bharosa, pighli hui chocolate ki tarah hai, chocolate ki tarah hai. To चाहे आप इनसे कितना भी जमाने की कोशिश कर लें, फ्रीजर में घुसेर दे ठंडा होने के लिए, जमने के लिए, तो ये कभी भी अपने असली आकार में वापस नहीं आएंगी। तो इसीलिए आप अपने रिश्ता को, अपने जो बांध हैं किसी से अच्छे अच्छे रिश्ता, उसे बिगाड़ो मत, फिर बनेगा नहीं, ठीक नहीं होगा। मित्रों, बेस्ट मेंशन gebroken vertrouwen is als gesmolten chocolade, hoe je het ook probeert te bevriezen. Het zal nooit meer zijn oorspronkelijke vorm aannemen. Het kan niet, bestaat niet, beste mensen.

मित्रों, खूबसूरत रत्न विनम्रता है। खूबसूरत रत्न विनम्रता है। सबसे बड़ा धन ज्ञान है और सबसे शक्तिशाली हथियार धैर्य है। धैर्य मतलब खदेल थे। और सबसे अच्छी निश्चयता विश्वास है। और सबसे अच्छी दवा यानी मेडिसिन, सबसे अच्छी दवा हंसी है। खूब हंसा करो दोस्तों, खूब हंसो। दूसरों को चिढ़ाने के लिए नहीं, मगर अच्छी बात पर, हंसी वाले बात पर खूब हंसो। शरीर के लिए ठीक है। मैं से हैत मोइस्ट सी रात इस नीदर है, द ख्रूस्त रेगोम इस वैस है, हैत क्रख्तस्त वापन इस खदुल्त, एंड बेस्त जेकर है इस खलोव, हैत बेस्त मेडिसाइन इस लाखन, फ्लिंक लाखन, हार्ट लाखन, maar niet om een ander pijn te doen of te treiteren, dat niet, maar gewoon gezond lachen, beste mensen. Ey prani, kal ki koi garantie nahi hoti hai, isliye aaj apne jeevan mein logon ke liye pyar aur prashansa rakhein. Jeevan ka saar sabhi ke saath अच्छा व्यवहार करें, यही है कर्म जो जिसके द्वारा आप सुखी हो सकते हो। लिफा मैंसन मोरखन इस नोइ खरान देख दिस हैप फंदाख लिव द एन वर्देरिंग फॉर द मैंसन इन ये लेफन द बतेकन इस फनत लेफन वेस खुद फॉर इदरें ongeacht geloof, cultuur, rang enzovoort enzovoort. Wees vriendelijk met iedereen, wees behulpzaam. Dat is wat de natuur van jou verwacht, beste mensen.

वक्रतुंडा महाकाया सूर्यकोटी संप्रभा निर्विधिनम कुरु मे देवा सर्वकार्यषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् पारब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः माता पिता चरणं नमः विद्या प्रदायकं दीक्षं मंत्रं गुरु वंदे वंदे गुरु पद पुनम पुनम।

देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। सुनने वालों, सभी को हार्दिक से अभिनंदन करते हुए मैं संजय जो आपके साथ जुड़ गए हैं, कुछ समय तक आपके साथ व्यतीत करूंगा और कुछ सुंदर सुंदर भजनों के साथ।

जो बीमार है भगवान से यही विनती प्रार्थना किया जाता है कि आपके स्वास्थ्य में परिवर्तन आवे। जिसके घर पे एक नया शिशु ने जन्म लिया है उन्हें बहुत सा बधाई दिया जाता है। जिनका आज सालगिरह है उन्हें बहुत सा हैप्पी बर्थडे। जो अपने तैयारी कर रहे हैं कुछ शिक्षा दीक्षा लेने और देने को, तो उनको भी माता सरस्वती को ओर से शुभकामनाएं प्रस्तुत है। जो अपना तैयारी कर रहे हैं नौकरी के ओर, तो उनको ओर से ये कहना चाहूंगा, हर बार की तरह की गांधी जी को भूलना नहीं। ये मत सोचना कि हमारा देश हमारे लिए क्या कर सकते हैं, ये सोच कि हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। अगर ये सोच जा आपको रहेंगे तो ये, अगर मैं आपसे ज्यादा ना कह दूं तो ये जरूर स्पर्श है कि आप अपना समय पे पेंशन को प्राप्त कर सकेंगे।

सुनो लो, गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक सुंदर सा दोहा हम सबके लिए लिख गए हैं। और तुलसीदास कह गए हैं कि काम क्रोध मद लोभ की जो लो मन में खान, तो लो पंडित मूर्ख तुलसी एक समान। कहते हैं कि काम क्रोध मद लोभ की जो लो मन में खान, तो लो पंडित मूर्ख तुलसी एक समान।

इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ यही है कि जब तक मनुष्य के मन में काम, क्रोध, अहंकार और लालच भरे हुए है, तब तक एक ज्ञानी पंडित और एक मूर्ख में कोई अंतर नहीं होता है। दोनों समान होते हैं।

सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत करते हूँ और एक सुंदर सा भजन की ओर बढ़ेंगे।

स्वस्ति माहौल के हवास में ये सुंदर सा भजन हम सब सुने। ये फाउन हिंदुस्तानी रेडियो है और हमारे सभी कर्मचारियों जो हमारे सभी कोलेग खास होते हैं उनके ओर से एक सुंदर सा भजन के ओर बढ़ेंगे। भजन का बोल दो तीन है जिंदगी।

आई जगत में काई करो, यानी कहने के तात्पर्य ये है, हम जगत में आए हैं तो कुछ ऐसा काम करके जाए जिसे हमें कोई बाद में कुछ बातचीत करके, ऐसा ना हो कि हमारा जो कर्म किए हमने वो कर्म ऐसा है जिसके बारे में लोग नेगेटिव बात करते रहे। दोस्तों सुन लो वालों, बातचीत, बातचीत ये दो शब्द ही है, पर की जाए तो दिलों को कई मैल धुल जाते हैं। एक सुंदर सा भजन और हम चलाने वाले हैं जो हमारे स्टूडियो यानी फाउन रेडियो का सभी कोलेगास की ओर से।

स्वस्ति मिश्रा के आवाज़ में ये सुंदर सा भजन कि तेरी शुक्रिया है सुबह की पहली प्रणाम कि हे ईश्वर आपकी कृपा से एक नया सुबह देखने का सौभाग्य मिला है। आपकी आभार हूँ मेरे सभी मित्रों और सभी संबंधियों, सुखी रहे, स्वस्थ रहे और दीर्घ आयु को प्राप्त करे। अगला भजन की ओर हम बढ़ने वाले हैं सुनने वालों, और ये भजन भी सभी को खास हमारे डायरेक्टर कुमार घिराव जी के ओर से, जॉनी सुरजबाली जी के ओर से, शांता खेमाई, रजेश बदलू, राजन द्वारका, प्रदीप फेराई, विजंती नाथू, रोसिता गिरजा सिंह, सुरेन भगवान दीन, बबली आसरा, रोमियो हाउस, संजय भगवंत, गंगा चंद्र जी और यूसुफ सितु, बीबी साहिबा रहीमक्स जी, श्याम पूरन, अनुराधा चंद्र जी और राजेंद्र सिंह हैन और अनिल सरजुग जी के ओर से ये सुंदर सा भजन।

जब कुछ समझ में ना आए तो सीताराम गाइए, और यही संदेश, जो सुंदर सा संदेश हमारे फाहुन का सभी कोलेगास की ओर से रखा गया, और एक मैसेज जो उत्तम नगर भारत से आया है, ईश्वर सिंह जी ने ये संदेश को भेजा है, और संदेश ये है कि उन लोगों के जीवन में आनंद और शांति कई गुना बढ़ जाती है जिन्होंने प्रशंसा और निंदा दोनों में एक जैसा रहना सीख लिया है। तो ये सुंदर सा संदेश भाई ईश्वर जी जो उत्तम नगर भारत से और ये संदेश को भेजे है, एक बार और उसे दोहरा दिया जाता है कि उन लोगों के जीवन में आनंद और शांति कई गुना बढ़ जाती है जिन्होंने प्रशंसा और निंदा दोनों में एक जैसा रहना सीख लिया है। एक और सुंदर सा भजन की ओर बढ़ेंगे सुनने वालों।

होगा वही जो राम ने लिखा है। ये सुंदर सा भजन हम सब सुने अजय तिवारी के आवाज में। सुनो वालो, हमारे पास मोहन गार्डन भारत से भी एक और मैसेज आए है कि गुजरी हुई जिंदगी को तू कभी याद ना कर, तकदीर में जो लिखा होगा उसकी फरियाद ना कर, जो होगा वो होकर रहेगा, तू कल की फिक्र में आज की हंसी बर्बाद ना कर। ये सुंदर सा मैसेज श्रीमती सुनील जी जो मोहन गार्डन से भेजे है। बहुत खुशी के कार्यक्रम को अन्य और स्थानों पे भी सुना जाता है। सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ और एक और सुंदर सा भजन के ओर बढ़ रहे हैं।

जय किशोरी और सोनू निगम के आवाज में ये सुंदर सा भजन हम सब सुने जो हमारे देश में सफर करने को आए हैं। हार्दिक से स्वागत किया जाता है और कहना ये चाहूँगा कि हमारे देश में हॉलैंड में कितने मंदिरों हैं, जैसे कि डेन हाग में राधे कृष्ण मंदिर, देव मंदिर जो हर रविवार को और लगाया जाता है शाम में 2 बजे से 5 बजे तक, मंगलवार को राधे कृष्ण मंदिर जो 6 बजे से 8 बजे तक लगाया जाता है, सेवाधाम मंदिर जो डेन हाग शहर में वो भी शाम को लगाया जाता है हर रविवार को, और इसी प्रकार से सुतमेर शहर में लक्ष्मी नारायण मंदिर जो कि हर मंगलवार को लगाया जाता है 6 बजे से 8 बजे तक, दमेरन शहर उत्तराखंड में गणेश मंदिर जो भी हर मंगलवार को 4 बजे से 8 बजे तक लगाया जाता है, इसी तरह से अलमेर में विष्णु मंदिर जिसे हम गोल्डन टेंपल के नाम से जानते हैं वो भी हर रविवार को 2 बजे से 5 बजे तक लगाया जाता है। ऐसे भी हम लोग के देश में जो सुंदर सुंदर मंदिरों का स्थान है जहाँ पर हम सब जाकर के सत्संग आदि कर सकते हैं और कथन वहाँ हर अलग मंदिर दिन पे कथा को और जो व्यास भगवान का प्रार्थना पूजन आराधना किया जाता है संदेश को रखा जाता है। रोटरडम शहर में शिव मंदिर और शिव मंदिर अरनहेम में भी हर रविवार को जो सुबह में रोटरडम में और सुबह से 9 बजे से 12 बजे तक, और अरनहेम में जो कि 2 बजे से 5 बजे तक लगाया जाता है। हम एक और भजन की ओर बढ़ेंगे, राधा रानी का चरण जो कि चित्रलेखा जी के आवाज में रखने वाले हैं।

राधा रानी के चरण प्यारी प्यारी चित्रलेखा जी के आवाज में ये सुंदर सा भजन हम सबको सुनने को प्राप्त हुआ। दोस्तों, हम एक और मैसेज जो प्रदीप जी जो उत्तम नगर से हमारे लिए भेजे हैं, और ये मैसेज का बोल ये है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि समय और सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या ना दे, लेकिन स्वभाव और समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। तो भाई प्रदीप जी को बहुत सा और नमन करता हूँ, और ये सुंदर सा संदेश रेडियो पर रख दिया गया। हम एक और सुंदर से भजन की ओर बढ़ेंगे। सुनने वालों, जया किशोरी जी के आवाज में ये सुंदर सा भजन।

जय किशोरी जी के आवाज़ में ये सुंदर सा भजन हम सबको सुनने को प्राप्त हुआ। मेरे श्याम तेरा नाम ही काफ़ी है मेरी हर मुस्कान के लिए। यहाँ तक जो सुबह का भजन का कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, मैं आपका सेवक संजय आशा यही रखता हूँ कि कुछ न कुछ आपको जरूर अच्छा लगे होंगे। आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ और कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा, रूह कुछ बदल दिया जाएगा। सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत है।

सुनने वालों, मैं संजय आपके साथ जुड़े हुए और ये दावा के साथ कह रहा हूं कि आप चुने फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पे। सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत करते हूं। एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूं संजय, क्योंकि पुलिंग स्त्रीलिंग में तो कभी गलती भी हो जाता है। विश यू अ वेरी गुड डे।

अगर आपका दिन एक शुभ दिन हो, यही आशा लेकर हम सब कुछ सुंदर सुंदर गीतों के साथ जुड़ गए हैं।

धुरंधर फिल्म से निकाला गया कि दिल ही ना माने ये, और कहते हैं कि ज्यादा अच्छा होना भी गुना है, ज्यादा अच्छा ही होना भी गुना है, पता नहीं चलता लोग इज्जत कर रहे हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों, एक और सुंदर सा गीत के ओर हम बढ़ेंगे और इसी प्रकार से नए नए न्यू सॉन्ग्स के ओर हम आज बढ़ चले हैं। देखते हैं क्या और नया गीत हमारे लिए है।

चुनरी चुनरी, ये सुंदर सा गीत जो कि एक न्यू यश में रखा गया। और दोस्तों सुनने वालों, भाषा शरीर का एक ऐसा अदृश्य अंग है जिसमें इंसान का सब कुछ दिखाई देते हैं, तो बस इस पे थोड़ा से ध्यान देना। आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ और सुंदर दिवस आपको रहे। Een hele vreugdige en gelukkige dag toegewenst.

स्टूडियो में तो थोड़ा बटन ज्यादा लेफ्ट की ओर घुमा दिया था या राइट की ओर पता नहीं, पर लाल जल रहा था। आप अपना रेडियो का बटन किस ओर घुमा रहे हैं, बस ये मैं आप पे छोड़ देता हूँ।

सुंदर स्वागत जो निकाला गया एक फिल्म जो 2025 में रिलीज हुआ। कहते हैं कि जिंदगी बहुत आसान हो जाता है, जिंदगी बहुत आसान हो जाता है जब परखने वाले नहीं समझने वाला मिल जाते हैं। एक और नया सा गीत के ओर हम बढ़ेंगे सुनने वालों, और आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ। मौसम पता नहीं कैसे है, गर्मी है या सर्दी है, पर जरूर अपना चलने का व्यवस्था आज का भूलना नहीं, क्योंकि कहा गया है कि रोज हमें कम से कम 6 दर्शन स्थापन तो करना ही है, तो उस पे जरूर ध्यान देना। और यहाँ से फाहुन से हम सब कुछ सुंदर सुंदर गीतों के साथ आपके साथ जुड़े रहेंगे। किस किस?

0: वेलकम टू द जंगल, ये फिल्म जो 2026 में है और इसमें से ये निकाला गया ये सुंदर सा गीत जो भोजपुरी में गाया गया है। और कहते हैं कि कुछ पंजाबी गीतों जो फिल्मों में चलाया जाता है आजकल, देखो भोजपुरी भी खूब जोर तोर से सहयोग दे रहा है बॉलीवुड के फिल्म इंडस्ट्री में। भोजपुरी जो सुरिनामी हमारे सुरिनाम भाषा से ज्यादा मिलते जुलते है।
1: अंदर एक लड़की को रखना जिसे 78 ईयर से देखा तक नहीं है।

वापस आऊंगा। कहते हैं दोस्तों सुनने वालों की देखकर दूसरों की आनंदित होना स्वस्थ मन की पहचान है। देखकर दूसरों की आनंदित होना भी स्वस्थ मन की पहचान है। ये सुंदर सा संदेश रखने वाले ईश्वर सिंह जो भारत से हमारे लिए ये मैसेज को भेजा और आपके तक पहुंचा दिया गया।

एक फिल्म जिसमें आयुष्मान और भूमि जी ने अपना कला सा प्रदर्शन दिए। दोस्तों कहते भी कि समय पर समय देने वाला व्यक्ति समय पर मिल जाए तो समय को अच्छा होने में समय नहीं लगता है। एक और सुंदर सा गीत को मैंने प्लेयर पर चुन करके रखे हुए है।

ग्रेट सॉन्ग हल्लो, जिसमें काम किए रामचरण, बुच्ची बाबू, श्रुति हसन और जानवी कपूर ने। तो ये बात कहा जाता है कि समय और बचपन दोनों ही यादों में सबसे सुंदर लगते हैं। तो क्यों ना हम एक और सुंदर सा सॉन्ग की ओर बढ़ते हैं।

आर्यन खान और राशमिका मधाना अपना कला से प्रदर्शन दिया। ये सुंदर सा गीत जो निकाला गया न्यू सॉन्ग 2026 रोमांटिक सॉन्ग जो कि निकाला गया दिल पे तेरा नाम। दोस्तों सुनने वालों, हम इसी तरह से और भी सुंदर सुंदर गीतों के साथ आपके साथ जुड़े हुए हैं। और भारत मोहन गार्डन से भाई ईश्वर सिंह जी ने ये संदेश को भेजा है कि दुनिया में दो ही पौधे ऐसा है जो कभी मुरझाते नहीं। पहला जो निस्वार्थ प्रेम से रहे और दूसरा जो अटूट विश्वास

तृप्ति डिमरी और शाहिद कपूर ने ये फिल्म में काम किए। दोस्तों सुनने वालों, मैं आपके साथ कुछ समय तक और व्यतीत करूंगा। एक और सुंदर सा गीत मैंने प्लेयर पर चुन करके रखे हुए है, क्यों ना उस ओर बढ़ते हैं कि मुझको तुमसे प्यार हुआ।

0: ने दियो धोखो रणथावा उसको ठोको ही ठोको।
1: I will not give you that मौको। अभी तो कुछ दिनों में मेहंदी संगीत एंड रोको।

0: यार ये बानी और प्रीत का आमना सामना ना हो जाए यार।
1: अरे लंदन है लंदन यार, दादर स्टेशन थोड़ी है कि बानी और प्रीत एक दूसरे से टकरा जाएंगे।
2: तुम यहाँ क्या कर रहे हो?

द टाइटल भी आप सुन रहे थे, है जवानी तो इश्क होना है। इसी फिल्म से कुछ और गीत हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते, चुनरी चुनरी।

जवानी तो इश्क होना है, इसी फिल्म से हमने पेश की है आ जाना चुले मेरी चुनरी सनम। पति पत्नी और वो है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं रूपनी रानी।

पति पत्नी और वो इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं रूप देरानी। भूत बंगला है फिल्म का नाम और इसी फिल्म से आप सुनेंगे ओ सुंदरी।

फ्रॉम द मूवी भूत बंगला से हमने पेश किए हैं ओ सुंदरी। स्टेबिन बेन और जुनिता गांधी की आवाज में आप सुनेंगे तेरा हो जाओ। फ्रॉम द मूवी है जवानी तो इश्क होना है।

है जवानी तो इश्क होना है, इसी फिल्म से हमने पेश किया है तेरा हो जाऊं। आपको सुनाने वाले थे जुनीता गांधी और स्टेविन। चलिए इस बार हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते फ्रॉम द मूवी वेलकम टू द जंगल, ऊंचा लंबा कट फॉरएवर।

अभी आप सुन रहे थे ऊंचा लंबा गुड फॉरएवर। है जवानी तो इश्क होना है, इसी फिल्म से एक और गीत हम पेश करते हैं, व्याह करवा दो जी।

0: फ्रॉम द मूवी है जवानी तो इश्क होना है, इसी फिल्म से हमने पेश किए है व्याकर वादो जी। प्यार करके पछताए फ्रॉम द मूवी पति पत्नी, और वो से आप सुनेंगे।
1: चंचल कुमारी बनारस से यहाँ आई है।

0: अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी बिजुरिया हमने पेश की है आप सभी के वास्ते। संजू राठौर और ईशा मौलविया की आवाज में आप सुनेंगे शेके।
1: किस्मत में गुलाम लिखे हुए रानी गुलाम में नहीं राजा ने मिले करे।

0: किंग, ओ माझे किंग.
1: मी
0: घरी नाही जायचं का? मी तुझी गर्ल, जाने जी गर्ल, मी छम्मा छलो, तू माझा किंग किंग किंग किंग.
2: अभी आप सुन रहे थे शेकी, संजू राठौर और मौविया की आवाज में हमने पेश किए हैं. परम सुंदरी है फिल्म का नाम. इसी फिल्म से हम पेश करते हैं डेंजर.
3: अरे डांस करना है ना.
4: अरे तेरे

अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी परम सुंदरी से हमने पेश किए हैं डेंजर। गुलाबी साड़ी आपको सुनाने वाले हैं संजू राठौर।

अभी आप सुन रहे थे गुलाबी साड़ी संजोत राठौर की आवाज में। मेरे रहनुमा आप सुनेंगे

अभी आप सुन रहे थे मेरे रहनुमा। हम बढ़ चलते हैं ये सॉन्ग की ओर, 2026 का जादू।

अभी आप सुन रहे थे 20-26 का जादू, हमने पेश किए हैं आप सभी के वास्ते।

मर के भी हजारों को याद आएंगे, मर के भी हजारों को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। सुनने वालों की सेवा में विजयंती नाथू का प्यार भरा नमस्कार। आपका जन्मदिन है, आपके घर पर एक नई मेहमान आए हैं, यानी एक बेटा या तो एक बेटी ने जन्म लिया है या तो कोई जश्न आपके घर पर है, तो आप सभी को बधाइयां पेश कर रहे हैं। जो बीमार है या लाचार है तो भगवान से तंदुरुस्ती के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। जिसके घर पर विपत पड़ी है भगवान उन्हें सहन शक्ति प्रदान करे। जो हमारे देश में मेहमान बनकर आए हैं हम आपको हृदय से स्वागत करते हैं, और जो विदेश जाने वाले हैं हम आप सभी को एक शुभ यात्रा पेश कर रहे हैं। जहाँ पर भी आप हैं, जिस हाल में भी आप हैं, आप सभी को भी हम याद करते हैं। और जो लोग इंटरनेट द्वारा हमारे प्रोग्राम को विदेश में सुन रहे हैं, आप सभी को भी हम याद करते हैं।

अभी आप सुन रहे थे पर्वतों से आज मैं टकरा गया, तुमने दी आवाज, लो मैं आ गया, आप बुलाए और मैं ना आऊं, ये तो हो ही नहीं सकता। दिल जो भी कहेगा मानेंगे, दुनिया में हमारा दिल ही तो है। फ्रॉम द मूवी दिल ही तो है, इसी फिल्म से द टाइटल हम पेश करेंगे, द माइटी मुकेश आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे दिल जो भी कहेगा मानेंगे, दुनिया में हमारा दिल ही तो है। मोहम्मद रफी जी आ रहे हैं प्रोग्राम में। जब भी ये दिल उदास होता है, जाने कौन आस पास होता है।

अभी आप सुन रहे थे जब ये दिल उदास होता है जाने कौन आसपास होता है, मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले थे। जाने कहाँ गए वो दिन, द माइटी मुकेश जी प्रोग्राम में आ रहे हैं फ्रॉम द मूवी मेरा नाम जोकर।

फ्रॉम द मूवी मेरा नाम जोकर से हमने पेश की यानी पेश किए हैं जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ। सुनने वालों दमायती मुकेश जी अगर वो जिंदा होते तो कल शनिवार 1 अगस्त को वो 103 साल के होते, तो उसी की याद में हम कुछ गीते चलाएंगे या कुछ गाने हम चलाएंगे आप सभी के वास्ते। दर्पण को देखा तूने जब जब किया सिंगार,

अभी आप सुन रहे थे दर्पण को देखा तूने जब जब किया सिंगार। नमाइती मुकेश जी की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे और उनका भरपूर नाम यार पूरा नाम है मुकेश चंद्र माथुर जी। तो मुकेश चंद्र माथुर जी लाइफ इन कॉन्सर्ट भी दिए हैं सूरीनाम देश में और वो थे इस साल में यानी 1969 में। और कहाँ पर उन्होंने ये कॉन्सर्ट दिए हैं तो वो जगह है तियातर सावित्री जहाँ पर मेरे पापा काम करते थे और रात को वो बकरे में काम करते थे और ऑपरेटर भी थे तो दोनों काम वहाँ पर करते थे मेरे पापा जी। तो उन्होंने उनका कॉन्सर्ट जो है वो लाइव देखे हैं और सुने हैं। तो चलिए ये गीत हम पेश करते हैं द माइटी मुकेश जी की आवाज़ में द मैन विद द गोल्डन वॉइस।

अभी आप सुन रहे थे नैन का चैन चुरा कर ले गई, कर गई नींद हराम, चंद्रमा सा मुख था उसका, चंद्रमुखी था नाम। फ्रॉम द मूवी चंद्रमुखी से हमने पेश किए हैं द मायती मुकेश जी की आवाज में। याहूदी है फिल्म का नाम, उसी फिल्म से हम पेश करते हैं ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का शुरू, तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कुसूर।

फ्रॉम द मूवी यहूदी से हमने पेश किए हैं ये मेरा दीवानापन है, द मैन विद द गोल्डन वॉइस, मुकेश जी आपको सुनाने वाले थे। सहेली है फिल्म का नाम, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं जिस दिल में बसा था प्यार तेरा।

सुनने वालों, अभी आप सुन रहे थे जिस दिल में बसा था प्यार तेरा, उस दिल को कभी का तोड़ दिया, दमाई थी मुकेश जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे। उन्होंने बहुत सारे गाने गाए हैं और यानी मनोज कुमार के लिए उन्होंने गाने गाए, दिलीप कुमार जी के लिए भी गाने गाए, बहुत सारे यानी अमिताभ बच्चन जी के लिए भी गाने गाए हैं, बहुत सारे एक्टर के लिए वो गाए हैं और इनमें से एक ये गीत है, सबसे बड़ा नादान वही है। फ्रॉम द मूवी पहचान से हम पेश करते हैं द टाइटल, आप सुनेंगे। सबसे

अभी आप सुन रहे थे सबसे बड़ा नादान वही है जो समझे नादान मुझे। मुकेश की यादें हम पेश करते हैं। सुनने वालों क्षमा करना, मैंने अभी कहा कि उनके यानी बर्थडे थे 1 अगस्त का, लेकिन ये सच नहीं है। सुनने वालों, सच ये है कि उनका जन्मदिन होते थे 22 जुलाई को, और अगर वो होते तो 22 जुलाई को वो 103 साल के होते, और जिनकर मृत्यु हुई 27 अगस्त को, वो भी 1976 में, और उनके पूरे नाम थे मुकेश चंद माथुर जी। तो चलिए ये गीत हम पेश करते हैं उन्हीं की याद में। होठों पे सच्चाई रहती है।

अभी आप सुन रहे थे जिस देश में गंगा बहती है द टाइटल द माइटी मुकेश जी की आवाज़ में। ये प्रोग्राम मैं क्यों चला रही हूँ सुनने वालों, क्योंकि कल मैं वहाँ पर भी थी जहाँ पर मुकेश की यादें का प्रोग्राम किया गया और वो थे सरा साहब देखे वारुंग चित्रा। जी हाँ, वारुंग चित्रा जो है हंतल प्लान नंबर एक पर वातरिंग में देनहाग में जो है वहाँ पर एक प्रोग्राम था मुकेश की यादें और बहुत सारे लोग वहाँ पर थे और भाग लिए हैं, जैसे सूरज रामयाद जी और बहुत से और। तो एक बहुत हसीन रात थी वहाँ पर, उसमें मैंने भी भाग लिए, मैंने कुछ सुना दिए भी। तो चलिए ये गीत हो जाए पूरब और पश्चिम से हम पेश करते हैं, है प्रीत जहाँ की रीत सदा।

राम इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं है प्रीत, जहाँ की रीत सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। उपकार है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं दीवानों से ये मत पूछो दीवानों पे क्या गुजरी है।

0: फ्रॉम द मूवी उपकार से हमने पेश किए हैं दीवानों से ये मत पूछो दीवानों पे क्या गुजरी है। अभी आप सुन रहे थे द माइती मुकेश जी की आवाज़ में। सुनने वालों समय हो गया है विज्ञापन का, चलिए मिलकर सुनते हैं विज्ञापन, उसके बाद मैं आप सभी से फिर मिलने वाली हूँ।
1: हर काम के लिए हर अफर्टेंसी के लिए मौत के समाचार फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 0703652747।

0: 21, 22 en 23 augustus. Voor meer informatie www.minimsummerfestival.nl.
1: सुनने वालों, यहाँ तक आपने सुने हैं इश्तिहारे और प्रोग्राम को हम आगे में बढ़ाने वाले हैं। मत हो उदास, मैं हूँ तेरे पास हमेशा हमेशा। ये सॉन्ग हम पेश करते हैं आप सभी प्यारे प्यारे सुनने वालों के लिए, और आपको सुनाने वाले हैं शान जी।

मत हो उदास, मैं हूँ तेरे पास हमेशा हमेशा। भी आप सुन रहे थे शान जी की आवाज़ में। बड़ी उदास है जिंदगी, कोई तो साथी चाहिए। फ्रॉम द मूवी कसूर से हम पेश करते हैं कुमार सानू, आपको सुनाने वाले हैं।

फ्रॉम द मूवी कसूर से हमने पेश किए है बड़ी उदास है जिंदगी कोई तो साथी चाहिए, कुमार शानू आपको सुनाने वाले थे। फ्रॉम द मूवी खूबसूरत से हम पेश करते हैं सुनने वालों कुमार शानू और कविता कृष्णमूर्ति आपको सुनाने वाले हैं। मेरा एक सपना है कि देखो तुझे सपनों में

कुमार शानू और कविता कृष्णमूर्ति के आवाज़ में भी आप सुन रहे थे मेरा एक सपना है कि देखो तुझे सपनों में तू माने या माने है तू ही मेरे अपनों में। जमाना दीवाना है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं, क्या पेश करने वाला है बताओ, क्या नहीं बताने वाली आप खुद सुन लीजिएगा।

One of my favorite song अभी आप सुन रहे थे, मैं अगर प्यार करूंगी किसी से, It will be कसम से, Forever and ever and ever भी आप सुन रहे थे, From the movie जमाना दीवाना से हमने पेश किए हैं। अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है, जीत है फिल्म का नाम, सोनू निगम और अलका याग्निक आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज में, अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है कि तुम मेरे बाहों में हो। एक और सुंदर सा गीत हम पेश करने वाले हैं आप सभी के वास्ते, और जरा सा हम देखें तो ये गीत खास करके हम पेश करते हैं शर्ली जी के लिए। और शर्ली जी जबकि हमारे प्रोग्राम को भी सुन रही है तो वो क्या कहती है, खुद मोर खसात प्रख्तख मोये लीचिस प्रख्तख मोये लीचिस और एक सित लेकर इरफान त खनीतन एन द रादी उस्ताद हारदान। तो शर्ली जी आप ही के नाम ये सुंदर सा गीत हम पेश करते हैं, कोई मेरे दिल में है जो भी है वो अपना सा है।

वे सुन रहे थे द टाइटल फ्रॉम द मूवी कोई मेरे दिल में है। आपको सुनाने वाले थे कुमार सानू के साथ में अनुराधा पौडवाल जी, और ये गीत हमने पेश किए हैं शिवली जी के नाम, जबकि शिवली जी हमारे प्रोग्राम को सुन रही है। फिजा है फिल्म का नाम, इसी फिल्म से आप सुनेंगे दिल मेरे ना और इंतजार कर।

फ्रॉम द मूवी फिजा से हमने पेश किए है उदित नारायण के साथ में अलका यकनिक आपको सुनाने वाले थे दिल मेरे ना और इंतजार कर। अलका यकनिक और बाबू सुप्रियो मिलकर के आपको सुनाने वाले हैं मेरी तरह तुम भी कभी प्यार करके देखो ना। फ्रॉम द मूवी क्या यही प्यार है।

अभी आप सुन रहे थे मेरी तरह तुम भी कभी प्यार करके देखो ना, फ्रॉम द मूवी क्या यही प्यार है। इसी फिल्म से हमने पेश की है अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो की आवाज़ में चुपके से कोई आएगा, फ्रॉम द मूवी हेलो ब्रदर से आप सुनेंगे।

जी हाँ सुनने वालों, नया गीत हम पेश करने वाले हैं और गीत का बोल है रिहा कर दे। चलिए मिलकर सुनते हैं।

अभी आप सुन रहे थे रिहा कर दे। अरिजीत सिंह प्रोग्राम में आ रहे हैं सुनने वालों, और गीत का बोल है तुझको, फ्रॉम द मूवी कॉकटेल। तू से आप सुनेंगे।

अभिजीत की आवाज में अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी कॉकटेल तू से तुझको। राणा जी चलिए मिलकर सुनते हैं।

अभी आप सुन रहे थे मुझको राणा जी माफ़ करना, गलती मारे से हो गई। प्रोग्राम को हम आगे में बढ़ाते हैं सुनने वालों, और एक बहुत सा सुंदर गीत हम चुन कर रखे हैं आप सभी के वास्ते। गीत का बोल है इश्क करते हैं सनम।

अभी आप सुन रहे थे इश्क करते हैं सनम। अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं फ्रॉम द मूवी सत्यमेव जयते से आप सुनेंगे तनिष्क भी, नेहा कक्कर और एका ध्वानी आपको सुनाने वाले हैं दिलबर।

अभी आप सुन रहे थे दिलबर दिलबर, और दिलबर दिलबर के बाद हम पेश करते हैं चुनरी चुनरी।

फिल्म का नाम है जवानी तो इश्क होना है। इसी फिल्म से अभी आप सुन रहे थे चुनरी चुनरी। मेरा पिया घर आया।

अभी आप सुन रहे थे मेरा पिया घर आया ओ राम जी। है जवानी तो इश्क होना है, इसी फिल्म से ये सॉन्ग हो जाए आप सभी के वास्ते।

अभी आप सुन रहे थे वाव फ्रॉम द मूवी है जवानी तो इश्क होना है। सेल्फी है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते मैं खिलाड़ी।

फ्रॉम द मूवी सेल्फी से हमने पेश किए हैं मैं खिलाड़ी तू अनारी स्त्री तू है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम आपको सुनाने वाले हैं आज की रात।

फ्रॉम द मूवी स्त्री टू से हमने पेश किए हैं आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए तेरी दीवानगी।

0: अभी आप सुन रहे थे तेरी दीवानगी, आंखों से तूने फ्रॉम द मूवी भाई तेरा स्टार है, इस फिल्म से आप सुनेंगे।
1: अरे सर, हर गाने का रीमिक्स क्यों कर देते हैं सर? सर, हमारी जनरेशन को ये सब समझ नहीं आता। नहीं आएगा कुछ, बोलो यार, छोड़ो यार सर, मेरे को
2: गाने का रिकॉल वैल्यू है।
1: अरे कोई कॉल नहीं करेगा भैया गाना।
3: अगर तू समझ नहीं रहा है ये हिट गाना है, तेरे को नहीं करना है, तू मत कर, मैं जा रहा हूँ।

फ्रॉम द मूवी भाई तेरा स्टार है। इसी फिल्म से हमने पेश किए है आंखों से तूने ये क्या कह दिया। जरा सा हम देखे तो ये सॉन्ग हो जाए आप सभी के वास्ते, प्यार हो जाएगा।

सुनने वालों, यहाँ तक आपने सुनी हमारे हिस्से का प्रोग्राम जो समाप्त होने पर आया। जिस तरह से हमने अपने हिस्से के प्रोग्राम पेश किए हैं, हमें आशा है कि प्रोग्राम आप लोगों को जरूर पसंद आए हुए होंगे। अगर जिंदगी बाकी रहा तो आने वाले रविवार को हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए हमारी प्यार भरी, राम राम नमस्कार, खुदा हाफिज, हैव अ नाइस संडे एंड अ ब्लेस्ड संडे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ टिल नेक्स्ट टाइम।

Kala na jaane unch neech, kala na jaane jaat, Saraswati Mata dijiye humko apni azirma de. तमाम रेडियो फोन के सुनने वालों को हमारा राम राम नमस्कार प्यार भरी नाम सत श्री अकाल। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम, आज का देश और विदेश का समाचार सुनाना है हमारा काम, यही है हमारा मोहब्बत भरी प्यार की पैगाम। चुके हैं हमारे प्यारे प्यारे जनता, मीठा मीठा जनता, स्वीटी स्वीटी जनता, आज भी हम फेसबुक के माध्यम से लाइव है अपना प्रोग्राम में, और आज भी आप लोग को हम दुनिया की शेयर कराएंगे रेडियो फाउन के माध्यम से, और जाकर भारत में सूरीनाम के भी शेयर कराएंगे। तो हमारे नानी लोन, आजा लोन, आजी लोन, आप जहां भी हो बड़ों के प्रणाम, बच्चों के आशीर्वाद, और दोस्तों के, हमारे दोस्तों के सलाम दुआ प्यार नमस्कार सब सब भैया। तो यहां से हम तुरंत चलते हैं और जाते हैं अपना देश सूरीनाम की ओर, और फेसबुक के माध्यम पे आ गया है इसरी, जाने के धर्मेंद्र इसरी आ गया है, तो आपको हम स्वागत करते हैं धर्मेंद्र। तो धर्मेंद्र बातचीत ये हो रहा है, सूरीनाम के भैया दुई परानी बोले बड़ा प्रेम से रहतरा, बोलिए जॉनी झगड़वा हुई के ना ना ना ना ना, ये दूसरा बातचीत है। दुई प्राणी के बातचीत हुए है, दुई प्राणी के सिपाही पकड़ी से, तो ये दोनों के देर तक यूली के पकड़ी से ऑफ डीलिंग जोन मां सीईई के एगो अक्टन ट्वेल तक यार के एफएस एगो फैफन देर तक यार के, तो इस सब के कैसे पकड़ी से भैया क्यूबान के, क्यूबान के औरत रहा भैया, क्यूबान लोग के औरत लोग के समोकल करके लावत रहा देशवा में। तो लोग जानो है आदमी ड्रग स्मोकल करे है, सौदा पानी स्मोकल करे, अबे बतावे कितना तमाकू सब स्मोकल करी से, और इस सब मेंस हंडल करत रहा भैया। फरमुड लोग आइट बेटिंग फन फॉर नाम लोग का क्यूबान से व्रावन एंड हील मोये व्रावन और हमार भैया लोन हुआ पे बनैया लोन है सूरीनाम में, हमसे बोले है जॉनी, बोले बड़ा सुंदर सुंदर क्यूबान के औरतियां है, तो वही के मारे तो एक के सबन क्यूबा के औरत लोग के स्मोकल करके लावे है। तो हम ना बोले ला तो लोग के जइयो देखिए यो मां हम बताए ला तोरिया कैसे है। तो हिया बड फ्रॉ फरक्लार्ड बोले हैगा जोन के पकड़ी से ऑन द सुक कम खांग नदर फॉर मूड लक स्लाख्त ऑफर एगो क्यूबान के औरत स्लाख्त ऑफर हाथ गेल है बतावे है, बोले हैगा दैट से हर अन कम्स इन सूरीनाम, बोले जैसे हम आइली बोले सबन हमार पासपोर्ट ले लेइस है, पासपोर्ट ले लेइस है। तो जब पासपोर्ट ले लेइस है

वीरमान नो दे जाए चकलस करे हूँ वहाँ पे जाए के बैठाए दे इसे और पासपोर्ट की बान के छोड़ी के माई के और कस पासपोर्ट ले ले इसे और ले जाए के बोले अब चल तू अपन सेक्स वर्क के काम शुरू कर नाइट क्लब में। तो हमारा बहन अर्शिला भग्गू समझ भी अलगमान से आकर हमारे प्रोग्राम में जुड़ गए हैं, तो आपको हम स्वागत करते हैं। तो यहां बताए गए हैं कि पासपोर्ट लेके जाए के खदोंगन उम सेक्स वरक्त फरिश्तन और ना खाली एगो फर्स्ट केलंद क्लब में ले जाए वहां पे और बदमाशी करत रहा। हाँ और बदमाशी करवावत रहा द नाश खाफ से आन द शेख मेर्दर फ्रोवन फंड क्यूबांस ऑफ कॉम्स ऑफ द ओपन लोकासी माया दाम है हमें तो पता न है और ये कमोवैनक है हंसुक है आपको तो पता होगा कि माया दाम कमोवैन में कहाँ है। तो कमोवैन में माया दाम में भैया हुआ पे ले जाए औरतियन के जैसे महासैन में धरत रहा यहाँ पे और क्यूबा के औरत के मंगाई और ले जाए माया दाम में आम खवावत रहा का भैया। और बताए गए है ऑफ कॉम्स्ट क्यूबा ऑन फॉर ना मुदलक फॉल्स फॉर वेन सेलन फॉर सुरीनाम ही व्लाद इन ओवर गोमन और बोले फॉर सेक्स वर्क मींस इन पासपोर्ट वर्ड इन कोनोमर आस अंडर पंत से अक्टर को होदल वार्डोर से अफंकलिक ब्लीव फॉर द फरदाख्तन। तो जो ने पासपोर्ट वाले ले तब तो अपू जोन बोली तो उन तो के करे के परिगा और मोई मोई बार बोल के चल तो के सरनाम में हम बकुआ खवाबे मोई मोई काम देबे और हिया लाई के एके और क्यूबा के औरत लोग के और लाए हौसल करवावत रहा पासपोर्ट पासपोर्ट ले रहा। तो लेडी सेफ बी से हमारा एक बहन और आ गया है चित्रा अवतार आपको बहुत प्यार से और स्वागत करते हैं अपना प्रोग्राम में। तो ये बात हो चुका भैया तुम तो जानो है क्वेक क्वेक जाने जो सुनवा वाला चीज हुआ है तो क्वेक के बात है। तो क्वेक के तरह चोरी भैला हो तो हम कई रोज से बोली ला बकी सरमक्का के रीवा में भैया सरमक्का के रीवा में बेनलांग के रीवा में मछरी मर मर सब उतरान है इरमा राम तहल सिंह आपको हम स्वागत करते हैं। मछरी सरिनाम में सरमक्का में और बेनलांग में मछरी मर मर सब उतरान है भाई फरखेफ भैले हुआ के पानी। तो लांटी बोले है बोले तू लोग के रीवा के मछरी पकड़ के ना चाहे खाई के और ना पानी चाहे पिए के बोले ऊपर खिफ्तक है। तो अब अनमी लोग के बारा दुख है भैया जो अनमी बेनलांत में रहे हैं वो रीवा के पानी से बनावे खा है और मछली बनाई के खा है अपन जीवन चलावे है जब तो रीवा फर खिफ्तक हो गए है तो अनमी भला अपन जीवन कैसे जाई चलावे। तो लांटी का बोले है शांति गुरुओं के दुर्पू में शर्मा का रिवीर में बोले हुआ पे शांति गुरु में ले जाए अब उस सबके पकेता देवे भैया पकेता देवे है हिया बतावे है बोले सिचुवासी ही द सिचुवासी ही खलेत और मसाले फिस्टर्फ्ट एन ओंत रीखल्ट दाखल के लिए इन खतरों गमेंशाप के बातचीत हो रहा है। तो बताए गए हैगा कि अब ले जाए वो कैप्टन है जिसका नाम बा एथार प्लेन शांति ग्रोम के बोले हैगा 10 बवून द हेल्प वार देरन वार देर करे हैं मां बोले फिर भी फुसर पर कहता हम लोग के लगे आवे है दौरस हो बोले है मां बोले हम लोग के बोले कैप्टन बोले हैगा पिकिंग पोइका के प्लेट फॉर फर्दर हेल्प से स्टिल दैट द पकेन फील बतीकन फॉर द बमोज मार दैट द ऑफ वॉल्केनो साकलिक ब्लेव सो लॉन्ग द रिवीर वाटर ऑन ब्रेक बार

Blijf mensen te panieken hoe een bara probleem hebben de kopen. Ja, bolle re Cuba ke aurat ke irma. Cuba ke aurat ke sarma. Me se ben smokkel kerke lawe de suwa me. Paspoort wa leke or le jai ke nachtclub me. Protos twee sekswerk ke kaam karwawe he. To hiya pe bataye gaye he. Na khali Cuba ke auratien ke bhaiya. 1700 इलाखाल तमाकू निकेरी में सबन स्मोकल करी जरे कोई कोकाई न स्मोकल करे है कोई भैया तमाकू हो स्मोकल करे कोई औरत स्मोकल करे है तो यहाँ अब तमाकू के बारी है 1700 पाकी और जाए के स्मोकल भइल है ये बातचीत हुए वो जगह के नाम बा करापा हुक लान निकेरी के बातचीत है तो करापा हुक लान निकेरी में एगो बहुत बड़का परताई तमाकू मिलल है और बोले एगो 50 बरिस के आदमी के सपन पकड़ ले छेगा तमाकू के साथ में और ओके जबरदस्त बूटू मारी से और रमिया के भका भक चाहे तमाकू पिए के भैया जब तू तमाकू स्मोकल कर लेते तो के चाहे तमाकू पिए के ये बात है सूरीनाम के हमारे प्यारे प्यारे जनता तो यहां पर बताए गए है पता है और हमारे उस्तादों के उस्ताद महा उस्ताद भैया सुंदर हीरा लौंडा के नाच बिरहा के नाच के गुरु भी हमारा प्रोग्राम में आकर और जुट गए हैं तो हमारा उस्ताद के हम यहां से हृदय से स्वागत करते हैं तो भैया हीरा जी बातचीत हुए भैया इतना रोफ हुए सूरीनाम में का बोली भाई और हमार हनीस मनोरथ बोले बोले चिजुअन बोले बड़ा मोई हुई के दसवा तू रिश्ता के बोला अब देखो भैया खवा पंद ऊपर फाल भैले बालकोन में रमिया बैठ के अपन ठंडा ठंडा हवा लेवतरा ठंडा ठंडा हवा लेवतरा एगो सीनियर बुरखर यहाँ और खुमोई से अपन घर में बालकोन में बैठ के हवा लेवत रहा भैया ई सब बातचीत हुए है एगो रास्ता के नाम है मुरई स्ट्राट भैया खाए वाला मुरई पूजतियात करे तो जान जइयो मुरई स्ट्राट के है ते बालकोन में अपन बैठ के खूब ठंडा ठंडा हवा लेवत रहा और सोना के केती पहिर के भैया उतरे में दुई गो ना एगो दुई गो आदमी यंग ब्राउन फिश पे ओकर ब्राउन फिश पे रुकल है और ब्राउन फिश लेके रुकल है भैया और आई के बोले हैगा एगो बोले हैगा रेक्स ट्रेस ओकर बालकोन में घुसल है बिना एक को वार्स क्यूएं के निकारी से पिस्टोल भैया और ये बयारदा मन के 18 करात के सोना के केती गटई में से लेके चल गए हैं और फॉर्म फॉर 11 कॉप और हंगरवा रहा जैसे को बाघ के मूड़ी के तू जाने सबन हंगर बनाए रहे तो भगवा के मूड़ी के और फॉर फॉल्क रहने तिरुकना ब्रॉम्फिस तो दोस्तों कोई जमाना में बहुतर्स बोले रहा बोले हम पोलतिकुआ में बोले यहाँ पर ऐसी डेंथ होबे बड़कुआ हो जाबे तब बोले जितना आदमी के घर में लोहा लगल है बोले लोहा ना हुफ्त लगावे इतना फैलक हो जाई दसवा मेरे भगवान घरवा में आदमी के आजकल अपन बालकोन में लगावे के परे ले भैया कि बालकोन में लोहा लगावे के परे वन बालकोनवा में तो के डर है हम तो लगाए बाटी भैया बालकोन में लोहा और ओमा लोहा बन करके जैसे भैया जल में बैठियो तीन ताला लगाई के झलवा में बैठ के बहरे तकियो कि जल में से जैसे कोई बहरे ताके है तो ये बात है हमारा सूरीनाम के प्यारे प्यारे जनता की बालकोन में भी आदमी लोग के और चोरी हो जाए रोफ हो जाए ये बातचीत है हमारा सूरीनाम के हमारे प्यारे प्यारे मीठा मीठा जनता तो हम जाए भैया हम लोग के जो फोर्थ सेटर है और फोर्थ सेटर है असेंबली के और वो है अश्विन अधीन फोर्थ सेटर फॉर नेशनल अश्विन अधीन बोले है दोनों दाख के और फरखादरिंग में बोले बपाल तैत फरदाखन फॉर लीडर वास का बसेट ऑफ द ग्रंथ वेटलक फरांत वर्ड लग के बारे में
अधीर बोले, अबे आप लोग के और बात हम बताएंगे कि क्या हुआ सूरीनाम में। आप लोग जानो हैं फिया पियर पार्लियामेंटारी रहेगा सिद्रिक फान जमजोन है। हाँ तो टोनी अब भी आ गया है, तो आपको हम स्वागत करते हैं टोनी इसरी को भी। तो टोनी बात ऐसे है कि सेड्रिक सैमसन हैगा फिर यहाँ पे एक पार्लियामेंटारियर है और दोंदर दाख के भैया ओके सभन असेंबली में बड़ा जबर एनडीपी के औरत लो लपेटी से भाए, जो लपटाई लपेटी से ओके इतना लपेटी से कि एनडीपी के औरत सब पार्लियामेंट छोड़ के बहरे चल गए है। बोले है कि सैमसन बोले तू रेडियो हॉलैंड के गो रेडियो है, बोले तू वहाँ इंटरव्यू पे बोले बाटे कि औरत ना चाहे सरनाम में प्रेसिडेंट होए के, बोले हम लोग वही मारे डेमोस्ट्रेट करे, बोले तू कह चाहे सॉरी मांगे के वन, बोले तू कैसे बोल सके कि औरत के नाम आखेगा सूरीनाम में प्रेसिडेंट होए के, और बोले तो के ए बोले फ्रॉल के प्रेसिडेंट मुझे बन अस क्रिटिक ऑफ हर बलई तेजस वर्क कोपल अन इट फेट दैट से अन फ्रॉ इज दी फॉरमेंड स्प्राक स्कूटर मेरे नाम बिना फ्रॉल के एनडीपी पार्लियामेंटारियस सैमसन बोले हम थोरो सब औरत के बुल्ली बाटी। सैमसन बोले है बोले हम बुल्ली बाटी कि सीबोन के कभी ना चाहिए प्रेसिडेंट हुए, एक बार हम लोग इतना फ्रॉक तेल करीला का बोले हैगा पार्लियामेंट में सीमोंस आईबे न करे है, तो बोले ऐसा औरत प्रेसिडेंट लाइक ना है, बोले ये बतिया हम बोली है, बोले हम थोड़ो बोली एक को औरत के नाम आके प्रेसिडेंट हुए के, बोले हम लोग कितना फ्रॉक स्टेल कर ली है कि जैसे स्कूतू को पॉलिसी ब्यूरो में से इतना क्विक क्लास हो गए है, इतना स्कूतू लोन यहाँ रोतसोई करे है, यहाँ चोरी हुए, अब बोले प्रेसिडेंट के चाहे आए के फरकलार करे के, अब बोले आईबे न करे मई तो ओक मेन से tijdens de regering van NDP, je bouwt als president, en trouwens was het ook dezelfde probleem, die presidenten bouwt komt die awe hega DNA mee. Toen je baat he, van Samson reageerde later met de schriftelijke verklaring waarin hij stelde dat zijn uitspraken uit het interview volledig uit de context zijn gehaald. Volgens hem was het nooit zijn bedoeling om vrouwen te discrimineren of hun geschiktheid voor de presidentschap in twijfel trekken. Hij benadrukte dat bestuurders moeten worden beoordeeld op hun functioneren, integriteit en bereidheid van de verantwoording af te leggen, ongeacht hoe jij ouder hoe jij mrad hoe of aanbloeien jano bhaiya jun samay pe verkiezing periode raha us samay pe Tony bolat raha NDP kadamien bole uno one no one kuli as president jano hai batiya, बोले हम लोग कुली के नाम मांगे ला देशवा के प्रेसिडेंट कभी ना हुई, तो उस समय पे आदमी लोन मुना कोलत्रा की भी डिस्क्रिमिनेशन है, और यहाँ सैमसन के समान पहले है, और सब बोले ओके चाहेगा फौत अपन लेवे के, लेकिन अब तक सैमसन बोले कुछ फौत न कर ली, तो बोले कैसे भला हम अपन फौज जाबे माफी मांगे, बोले दत खात नीत खबर तो हम जाई तरी मारोको के ओर भैया। हाँ सेफनन दर तक दैसन ना एगो भैया सेफनन दर तक दैसन मिनी ख्रांतन फान आउट खुता तुरखकेर नान मारोको 17,000 मारोकान है जो गैला खिता में और है वो स्पांस जगह है स्पाइन में फ्रेंच वन स्पांस है एक्सक्लेव बोले हुआ पसे हबड़ा होत रहा, बोले हैगा ओफर स्टाकन से अलमेर दन सेवन दर तक दैसन मारोकान से मीनी ख्रांतन Migranten inmiddels teruggekeerd naar Marokko. Bolle dat meldt de Spaanse minister van de Binnenlandse Zaken. Or bolle hega.
बोले 57 मेंशन बोले जोन बूढ़ के मर गए भी है। एक बार रिस्पांस क्रांत बोले है, बोले हैगा स्टर्क तू नाम फन मिक्रांत वेर इन खुटा अनोच सिचुएशन आउटग्रुपन बोले क्रिटिक हैगा इटालिया फिनलैंड फ्रांकरेक डचलैंड के शरीफन अंडर मेयर ऑफ ग्रेंस कंट्रोल तब बोले कुछ मरको के बारे में आप लोग को हम बता देते हैं दोस्तों। हाँ, गर्मी के मौसम है तो पानी तो पीना चाहिए हमारे दोस्तों। पानी पीने में खिलवाड़ तो आ गया है, सार्थ आ गया है, शारदा भी आ गया है, तो आपको हम स्वागत करते हैं हमारे शार्थ के। तो हम चलते हैं और अगला समाचार की ओर। हमारी जनता पुलिस चीफ हम जाला श्रीलंका के ओर दोस्तों। बहुत जनता है हमारा हिंदुस्तानी जगह देखी से श्रीलंका में जाई के फ्रांसी से तो बोली तो श्रीलंका के न्यूज भी हम तरी बतावल कर भैया हीरा। तो श्रीलंका में भैया हुआ मौत के सजा मिलल है श्रीलंका में, मौत के सजा मिलल और के मिलल है एगो फॉर्मल का पॉलिसी शेफ के मौत के समाचार मिलल है। ई का कल रहा 2019 में ट्वी दैस नेहन तीन में एगो दौड़ल के बम अनस्लाख कल रहा देसुआ में। हाँ, जहाँ पे 2007 तक आदमी मर गया रहा श्रीलंका में, अंदर भी तीन गो नीदरलैंडर भी वही में रहा जो मर गया रहा। एगो पॉलिसी शेफ ई चीज कर ले रहा और बोले एकर बारे में बोले हो बरूप गए ला सकवा हो बरूप गए ला 2020 तक में बोले। और पॉलिसी शेफ ओकर नाम बा जया सुंदरा और बोले एंड तुन मालक मिनिस्टर फॉर डिमेंसी डिफेंसी हेमा सीरी फेर्नांडो नॉक्स एंड फ्राई गस्प्रोकन मेंसे और इस 66 यारक पुलिसी शेफ जो रहा हो बरूप कर ले रहा हो खरेफ्ट ऑफ में श्रीलंका ही सिंस 67 तक हुआ दो स्ट्राफ आउटफुर कर दी से। कितना आदमी बोले सूरीनाम में भी जाही करे के भैया जो ने सूरीनाम में दो स्ट्राफ है बाकी हुआ पे सब वर्किंग में ना लावे है बोले ना माखे। और जो एगो दुगो जो हुआ जो आदमी लोग के मौत करे है रूफ करे हैगा एगो दुगो जो दो स्ट्राफ मिले भैया 10% फन द क्रिमिनलिटी फॉर लास्ट वर्ड। मैं या खुद इन सूरीनाम दून से नहीं मैं सिंस दाल से श्रीलंका का हैव खदान में से इस एटलांट फील बीटर खवर्ड क्वाड क्रिमिनलिटी तो ही बतावे हैगा द स्ट्राफ ऑन वर्ड डोर खास ओमखसेट इन लीफस लंगे गेवंगेन स्ट्राफ 1976 में। मर इंडियंसर इन लिखते दिस बोले 4 तारीख अप्रैल के 2019 में अल गवारस्किर फॉर मोगलक सेल्फमोर्ड आंसला डोर इस्लामिस टेररिस्टन द अथॉरिटीज सोन टू हिन एक्शन हैवन गनोमन द आंसला कर वर्ड प्लेस ऑफ 21 अप्रैल 2019 बोले हैगा जहां पे तीन गो केर की तीन गो होटल में 279 तक आदमी मरल रहा और 500 आदमी चोटाइए रहा। तो ये बात है दोस्तों श्रीलंका रेख बांग श्रीलंका ही फॉर्मल का पुलिस शेफ तर दौड़ फुट और दिल उम्दत है इन 2019 दौड़ लक बम बम आंसलागन इन इट लैंड नीट ही वेटन टू फोरकोमन और बोले दारबे क्वामन 279 जीवन एक मेंशन ओम हेट लीवन बोले उन ना बचाई पा रहा उकर बारे में बोले यहाँ पे दोस्तों ओम तो फोर कोमन और उच्च युवा ऐसे भले पुलिस चेफ के बारे में है हमारे प्यारे प्यारे मीठा मीठा जनता हमारे नानी लोन हमारे प्यारे प्यारे भौजी लोन। अभी आप लोग को हम और आगे के समाचार यहाँ पे बताते चले हैं बातचीत भैया। जब देखो पहले भी रहा भैया सूरीनाम के जल भर गए दिलब बद्धू आ गया है। हाँ दिलब आपको भी हम स्वागत करते हैं राजा सांतो बोमा ओफर लोथ हो गया भैया जहलिया से अब लंटी के पैसा ना रहेगे सबन के खवावे के बुद्धू
खवावे के भैया अब हुआ पे अरेस्टांत बहुत ढेर हुई गए अब ले फ्रांसीर के लांटी पैसा 6 महीना हुई गए ना भरी अब घास खाइयो जहल के बान चीटे पॉलिसी ब्यूरो के और ले फ्रांसीर जो खाई ले यात्रा देवे उस सब बोले हम लोग 6 महीना से पैसा ना पैली है तो बोले जब पैसा ना पैली है मैं बोले तो हम लोग जहलीवन के सोची ला बोले हम लोग कर्जा ले ले बोले हम लोग जाएला जहलीवन के खवावे भैया और बोले हम लोग कर्जा ले ले हम लोग जाएला जहलीवन के खवावे और लंटी 6 महीना से बोले हम लोग के पैसा ना भरी से हमारा सूरीनाम के लंटी काहे ना जहलीवे से तरकारी बोवाई के खाई पकवावे रे भैया मोई से इस सब जा है और जाए के सबके रूफ कर कर चोरी कर कर अशांत बोमा में बैठ के जैसे होटल में बैठ के खाई के गोरे है और कैचरे जाए जाए खाई बराई बराई देवे है तो इस सबके हम बताई है लांटी के चाहिए वही कम कर्तवन से खेती बारी करवाओ तरकारी बोवाओ और वही तरकारी ले के चलो अपने तुलो बनाओ शांतो बोमा में और बनाए बनाए अपन मेड जहलीवन के खवाओ ऐसे चीज आ जा हमारे भले ही फंसरी नाम सवेल सवेल द लिक्स हैब में से मस हैब खेन खेल्ट तो गीता सिगुलाम भी आकर हमारा हमारा प्रोग्राम में जुड़ गया है तो वेले से सेल्फ इन द खफानिस वेले से द लिक्स लीव खान खान फोरसेट में से एंड इट कॉन ही द ऑन द नेम इज टेलन दस ए कॉस्टन फॉर कुड ट्रांसपोर्ट पर्सनल और बोलेगा महीने से लांटी पैसे ना भरी से तो एक बारे में मिनिस्टर फंजुसियन पुलिसी ने गए तो बोले एडमिनिस्ट्रेटिव फॉल्ट बोलो हुआ अंदेल फन ली फ्रांसिस फलोपक दोरखान एड फ्रांसवलेकाई कफूल एंड एड फ्रेड फन मस्कापले कफॉल्गन ग्रुई द ऑनसीकर है सोंदर स्नेल ऑप्लोसिंग ड्रेग द फोसल फोर्सिंग फन अरेस्टांस अस नो फॉलीडे फास्ट लोपन तो ये हमारा जहली उन कहते भैया लोन जहल में हुई हो तो बोलियो ये जोनिया बोले तुम आगे हम जाए वहाँ खेती करी अरे मिया मोटाई ऐली बाटी खूब खाए ऐली बाटी जो रे हम अपन जहली वह काट के जाए के चिनवन हिंदुस्तानियन के घरवन में फिर रोफ करी और रोफ करके पैसा जितना मांग बनाए बना ले पकड़ा जाबे फिर आबे यहाँ होटल में हम आइए हमें तो लोग कमाई के खाओ जहलीवन बोले है और हमारा रखे रिंग श्री नाम के सदुन ही लमा निक्स एनमी में से ब्लाइफ मादी में से फुदर से ब्लाइफ मादी में से फुदर एंड दिस अब देखो सेग ना एक चीज के बाद जितना है 100,000 एसआरडी के बात है भैया 100,000 एसआरडी के बातचीत है जो लुटेरा जाए के हाँ लुटेरा जाए के एगो रास्ता के नाम बा खेराल स्ट्रात सरनाम में 27 तारीख जुली के और बताई गई है गा 27 जुली एंड 29 जुली पलाफोन तूर के घर के पलाफोन तूर के और जाए के घुस के एक और एगो द्रियन फेफ तक यारक अनमी घरवा में रहा और ओके का बोलेगा 100,000 पैसा चुरा ले और इद्रिय से इवन तक यार का नमिया घरवा में रहत रहा और घरवा जो रहा ओकर भाई के रहा और बैतल लांत मेरा भैया ई भैया हुआ रहत रहा और ओकर एखनार जोन घर के रहा ओकर भाई बैतल लांत मेरा भैया कितना आदमी जो सूरीनाम देश में भैया सुंदर घर बनाए के छोड़ देवे हैं अपन सास के ने अपन माई के ने अपन भाई के बोले तू ही घर में रहो तो के ना हो तो कुछ रह के चिराग पानी भरिए हम आवे तो घरों में प्रेम से रहबे और कुछ पैसा भी छोड़ दे है लेकिन चोरन ओह जाए के मार दे भैया होंदत दैसन ऐसे दी मारी से एक दो इसी से ना मारी से भैया बहुत बड़का पैसा है जो नन्मी पसीना से पैसा कमा है ओके तो मालूम है कि कितना मेहनत से पैसा आवे है अब देखो कोर्स हैगा सूरीनाम के और वो है एरो है ट्वेयम फिर तक ए
euro 42,20. SRD 1 euro toerio. Tapayo 42,20 SRD. Oja yo kine euro. Tabhario 43 SRD ke 1 euro bhariyot utra payo ego euro euro amerikan dala hai 37.50 ka upar se adhin ka bole hai bole Suriname mein jitna dukan hai bole sab paisa turave kine hai euro dollar bole uchi yuva ban kare bole sab chahi central bank se kare re bhai jab admi handelare je paisa na paiga dollar aur euro jese wo apan saman kin sake deswa chalai sake apan dukan chalai sake to u zarur kini bhaiya oke paiswa nok dakhega to yahan pe aap log ko bataye de koers is 42.20 dat gaat het mensen tahmuli aap log ko batate hi rahenge taja खबर तो हमारे जनता हमारे प्यारे प्यारे जनता यहां बताए गए हैं क्षेत्र के बारे में आप लोग को तो बता चुके हैं कुछ नया न्यूज आप लोग को हम बताएंगे हमारे जनता मथुरा की ओर हम जाए ना फिर यहाँ पे यार है आप लोग जानो कमिश्नर फॉर पुलिस रहा फिर मिनिस्टर फॉर डिफेंस ही हुई रहा इन द टाइम फॉर फिर यहाँ पे यार रखिए ना फिर यहाँ पर ये ब्रिंसवेग मथुरा का बोले हैं भैया मथुरा फिन की एनडीपी नीट कॉन्सिक्वेंट इस बोले जब एनडीपी बोले मेन हेले खसेन बोले हमार हेले खसेन के बोले तू लोग क्रिमिनल बाटे बोले नीमा था दस्तान फिन खनुमन मथुरा फिन एनडीपी नीच कॉन्सिक्वेंस तुम द एनडीपी में एंड मेन हेले खसेन क्रिमिनलाइजेर दे हिव नीमा अस्तान फिन इन खनुमन बोले है बोले बाकी अब बोले वनेर की अब एनडीपी निस्वार प्रोटेस्टेर तेगन मीडिया अस्पराक जो फिर यहाँ पे के पार्लियामेंटरी है चेदरिक फान सैमसन बोली सेगा कि एक औरत के प्रेसिडेंट न चाहिए हो मतलब सीमोन के न चाहिए बहर हो के तो एनडीपी के भैया चारों बगल से गरम गरम हवा लगे लगल है हाँ जहाँ न चाहिए हवा लगे के हूँ हवा लग गए भैया औरत जितना एनडीपी के रहा सब निकर निकर बहरे चल गए तब यहाँ पे काबले कृष्णा प्रसाद और काबले मथुरा बोले है जो समय पे हम रखेरिंग में रही एनडीपी के आदमी हम बोले रहा हम क्रिमिनल हमार हेला क्रिमिनल तब बोले उस समय पे कोई अवस्थान नहीं ला बोले आप ही सबके गरम गरम हवा लगे तू जाने हिंदुस्तान में कहीं और कुछ लग जा हम में कौन काम है बोले के उस सब मीठा मीठा बोलिया चलो तो समझदार है हम कहा बोले मांगिला वन ईयर द एनडीपी सेक्स शुल्क हार द वार्डन तब बोले दान खा एक शखन बोले कि उस अब इर लगना है बोले 2015 में बोले हैगा मेन एंट्री द डेट इन द पॉलिटिक और बोले जस्ट बोले जे एनडीपी बोले हमें बोले रहा हम बहुत बड़का क्रिमिनल बाटी बोले हमार हेल हसन बोले हमार आदमी हमार बेटवा बोले सब क्रिमिनल है बोले एकर बारे बोले फॉर द रेक्टर ले गली बाटी और बोले रसी दुखी के ले गली बाटी रेक्टर ही तुन फोनस आइज कस्टेल फॉर हिर पार्लियामेंटारी रसी दुखी एनडीपीर के तुन हे निमान फन एनडीपी enige standpunt daarin genomen. Het was onder huidige president die toen voorzitter was van het parlement. Men is nooit kritisch geweest naar de eigen collega door te zeggen dat ze dat niet hadden moeten zeggen. Wanneer het iemand van hen is, dan zie je dat het met mantel der liefde wordt bedekt en er geen consequent bedrag is erbij. Mathura bole heiga. Aur tulun jano bhaiya NDP mein hamara nikeri ke सेठ रहा उस समय पे रसीद दुखी अब रसीद दुखी एनडीपी के पार्लियामेंट में ना बैठे तो बोले ये आदमी अपन घर द्वार ना चलाई पाई पैसा ऐत ना आई पाई तो बोले आई हमसे पूछे कैसे ऐत आई पाई तो पहले भैया
लूटो खाओ और दोनों जैसे बोली कहां से अब हम लाई। तो ये बात है हमारा सूरीनाम के यारो, हमारे प्यारे प्यारे जनता एक लाश एक लाइक मिलल है। हाँ वो बात बता दी भैया, एगो लाइक मिलल सूरीनाम में और वो लाइक वासन में से इन ऑन बिंडिंग आन खतरोफन ये बात हुए फैमिली लेट बोले लीड ओवर लीड ने और बोले हैगा फॉर आल्स नॉक सेन गीन अनवेशिंग की कोई ओके मारी से और एक बारे में अंदरसुक हुए कैसे है फ्लोरा के सिपाही एक बारे में खोजे है ते एगो घर में एगो लाइक मिलल है दोस्तों लेखा फॉर अन फेयर खान द स्टार फॉर ऑन बिल्डिंग अन प्रॉफिट इन एन वोनिंग इन एन अनबाउ अबे घरवा बनत रहा जिस कंप्लीट घरवा ना रहा क्लार भइला मा मालूम ना है उ घरवा कैसे रहा और कैसे ना रहा। हमारे जनता हम सोचेला तो लोग के एगो हम स्पंगाना सुना दे और यह नाचे नाचे। हाँ शारदा तरी नाच लियो तू तरी नाच लियो गनवा पे स्पंग स्पंग आना तू जाने हरदम चलाइला तो पलंग सगवन के भैया केसरी जी के है।

राजा दी बोले पलंगिया पे का हुए भैया, अच्छा टूट जाए तो देखल जाए, दूसर बेदी की ना भैया, दूसर बेदी की ना टूट जाए तो ये बात है। भोजपुरी सॉन्ग के बाद में हम जानते हैं हमारे जनता, हम जानते हैं और वो कहाँ है, हम जानते हैं भैया सूरीनाम में तो जानो चारों बगल जाए के आदमी पेन कर सके। हाँ सोशल मीडिया पे रखा हुआ आदमी ई जाए खेल मतमाद ना है, एकवा में जा है ना है, एकवा में ना है, आदमी बोले हम दौड़त दौड़त कहने के तरह तेल जाए जाले भाई खेल औतमान में पैसा ना है तो बिगड़ल है तो ई है फलान ढकान काम ना करे पैसा ना देवे। तो यहाँ पे बताए गए है कि आती है मशीन से सूरीनाम देश में हमारी जनता, आप लोग को पता है, तो आप लोग को तो पता है सूरीनाम में आती है मशीन से गा, और बताइए गए कंस्यूमेंटन कॉन्फ्रेंटेट वार्डन आती है मशीन से फाक लीक ऑफ बेटन वर्कर में पैसे में ना रहे, और ये पैसा ना रहे भैया तो टूटल रहे तो जानो है तो एक बारे में एगो बंक कंसलेंट है गा और वह का ट्रेंस कॉनेस गोनेस बोली से गा दैट हैड फील हेल कॉस ओम आरटीएम नेटवर्क द अंडर हाउडन मशीनिया अंडर हाउड करे के बोले बहुत ढेर पैसा हम लोग के लगे है, बोले एकर बारे में बोले बहुत ढेर इन्वेस्टेर करे पड़ेगा, बोले टेक्नोलॉजी ओम बेट लाइफ में द ट्रेंड एंड ऑनट्विकलिंग आती है बोले है नेटवर्क सूरीनाम के, बोले है बखरेदार व्यवहार फॉर हुकिंग नो साकलक वारन तो उसे मांगेगा कॉस्ट फॉर हुक करे भाई opzichte van de internationale markt de kosten redelijk laag tegelijkertijd weet hij de samenleving to up to je je paisa aisa pen karo bhaiya to aur jada paisa lagi wahan bolo sabke kost bahut jabar hai to lo jano to ap oi mare ja budhiya paranian huwa pe paisa ja paave hai aao fe aave hai to ladkan ke bole hai beta je ye sab paiswa hamar nikar liye कारण की अब बुढ़ियन पुरानी थोड़ा बेर बेर जाए ऑटोमैट खोजे देशवा भर में, एगो में जाए टैक्सी भर के लड़कों को बोली बेटा एकवा जा तो उस सब ऋषि को ना मांग लेवे तो एक दाय में सब आओ फी के पैसा निकाल के जो घर में धरे हैं तो अब उधर भैया बोले जहाँ शुक्रु है वहाँ चूटी है और जहाँ पैसा है वहाँ चोर है, तो बूढ़ी वन के जाए जाए वही रूफ करे हैगा चोरवन भाई ओमदात हम लोग के ऊपर है अपन ऑनट्विकलिंग फॉर द फेल खेत में इन्वेस्टियर न करे है। तो सुनील दीप गजरी भी आ गया है, आपको हम स्वागत करते हैं। अगर जो ऑफर है जितना ऑटोमात सब में पैसा धल्ले रहत हर एक भीड़ में कुछ न कुछ मुखल खेत कर ले रहे तो आदमी ना रहत के एक दाय में जाए के सब पैसा निकाल के घर में धरत वट ओके जब ब्रेड कीने कुछ कीने कहेगा तो बेचारा कहाँ जाएगा पैसा लेवे, तो सब पैसों निकाल के घर में धरे भैया तो कोई बेरी के नीचे लुको आवे कोई यहाँ लुको आवे कोई हुआ लुको आवे है तब चोर जाए के लपेट देवे भाई। दिस इज इन फॉन द ग्रोस्ट प्रॉब्लम इन इट लॉन्ग दी नीट इन्वेस्टेड फॉर इन द ICT in de ontwikkeling, de technologie van ons land. Mensen, bijna heel veel mensen hebben hun bankpas, dat ze daarmee ook kunnen betalen. Maar heel veel winkeltjes die namen hoe mogelijkheid na hebben. Hier toch bij jou, deel Albert Heijn mee, dat 10 donnieke breed hem scan kerke lela. Ik heb bijna nooit geld. Er zijn heel veel mensen, ik werk hier mensen, op mijn werk, waar ik werk zelf, daar komen mensen hele dag geld. Betaling, ik zit in het betalingsverkeer ergens mensen. Bij mij kan je geen contant geld. John Dean hem ook internet na, hij je koets hoege he. Dat zijn mensen in een probleem, want ze hebben geen geld. En naki छोटा मोटा आदमी बड़का बड़का आदमी लो भैया वो सब टेलीफोन लेके खाली चले हैं और टेलीफोन से स्कैन करके दिन भर उसे अपन बताल फरकेर करे हैं अपन पास करे हैं आलस खास फिया ऑनलाइन में से। तो वो रमिया के जब तू चोरी करियो पड़ते मैंने या कुछ चोरी करियो तब तो के रोवे के परिवार ओमा खाली अल्बर्ट हैन एक्शन के बॉन घुसेर घुसेर धरल ले जैसे हमार जब चोरी करियो तो के रोवे के परिवार बोले कौन चीज उठा ले लिए वहां जैसे नोइट हेल्प देने में से दस सोट ऑनट्विकलिंग मुत इन सूरीनाम गबेरे दस सोट ऑनट्विकलिंग ये मुत अलेन में जे पास लोपे एंड मेयर नीट
चोरी कमती हुई आदमी जो सौ सौ हजार पैसा घर में धरे बा ऊ सब पैसा तो के ना हो धरे के आलस मुदना द बंक फरकेर कान अमा बंकवा शर्फी जन ना दे पाए जनता के ओवर है तो खरंसिया ना दे पाए दत ये 24 uur kan geld krijgen wanneer je nodig hebt, gaat deze probleem nooit opgelost worden. Heina bija sunil der gajri. Zo is het toch. Dus ons land is nog hoeveel jaren achter. Ik heb het over Suriname mensen. Abham jai bija Rusland, Polen ke oorha. Wolle Polen heeft Russische ambassadeur ontboden. Polen Russische ambassadeur ha. Oké, wolle to laudja. To laudja appendees wolle hem to kena mangela om uitleg te geven om de neergestorte raket in de nacht van woensdag, donderdag ego raket gerala. Premier Donald Tusk jonba na Trump Donald Tusk jonba wolle hij zei al snel vermoeden ki Rusland kego raket wolle hamar des me giral hai. बोले एक बारे में अंबसादक बोले ली बाटी पूछे के बोले हाथ ओम द ऋषि से कहा हों इन रकेट गिर रहा एक बारे में दोंदर तक के रेडियो से बोले क्राइस रकेट गिर रहा और बोले खफालक ओम करण कोपर रहा तक से आल में तीन कि पोलन बोले कि है दूल वेट वास फान एन अनफाल बोले द क्रैश फोन प्लास से इस नाक इन अ स्वार रशिस लुक अनफाल ऑफ उक्रेन बोले जोन से में पे रशलैंड बोले एन उक्रेन को पर कर रहा बोले उप उ काबल क्रैश से कर हमार देश में गिरल है बोले ऑनगेफ 90 किलोमीटर फान द ग्रेंस फान उक्रेन एन राक्ट नीवान गोन दोर द गफोंडन ब्रॉकस्टिकन कोन वर्डन वेल फास्टस्टेल अतुलंजानो भैया पोलन is EU. Polen is NAVO. Als Rusland één van de NAVO-landen gaan aanvallen, gaat de hele NAVO erop, mensen. En dan moet Rusland voorzichtig zijn. Je kan alles doen, maar ga geen NAVO-land aanvallen, want dan gaat hele NAVO hem beschermen. En als dat gebeurt, dan wordt het niet een kleine oorlog, maar een mega grote oorlog. तसा नाम के कोकोआ तरी से कमती है भैया सब कराका में जराई से भैया जितना कोकोइन मिले है मैं मालूम ना कोकोइन जराई से के पुरी जराई से पिसान जराई से भैया सोशल मीडिया पे बहुत चीज हुए है तो संगीता महेश भी आ गया है और वो है अलमेरा शहर से आपको हम स्वागत करते हैं संगीता जी तो फिर तक यार के एगो आदमी भैया बताए गए हैगा फॉर ब्लाइफ पास रहा ओके मंगलवार के नीदरलैंड में तिलबुर्ग में मिलल है पकड़ान है रोटरडम के सिपाही पकड़ी से तिलबुर्ग में जाए के को फिर फिर तक यार का मान के जे के फास्ट वो जगह ना रहा एड्रेस एड्रेस ना रहा बोले हैगा बतरोकन है इन बेड फॉर बरेडिंग फन दुई को ऑनफोरिंग बाय ला क्रिमिनल सर्किट में द अरेस्टेशन फन प्लास इन द कार ऑफ ग्रोथ ऑन ना द इंटरनेशनल कोकेन हैंडल जो साउथ अमेरिका में भईले हमारा नाम भी साउथ अमेरिका में आप लोग तो जानो है शुक्रवार के रेक्टर कमिसारस इरेमिया के दो हफ्ता के दो वीक इन द सेल ब्लेड सेक्टर ओएम बोले चार गो आदमी मा पकड़ान है 26 तारीख ऑगस्टस के एकर बारे में उपमार सिटिंग है और बताए गए हैगा इन ऑपड्राफ्ट फ्रॉम दो गो हॉलैंड नीदरलैंड एगो 47 यार आउट बोले फरवरी में बोले इन कोलंबिया से गारास्टेर कोलंबिया में पकड़ान है फॉर द ड्रग्स हैंडल इन मई पकते द पुलिस इन कोलंबिया नोख न नीलंदर ओप दिस हमारा हॉलैंडर वन भैया पाएगे कोकेन के मजा तो इस सब के जाए के पकड़ी सेगा कोलंबिया में हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों हमारे जनता आप लोगों ने जानो भैया यहां बताए गए हैगा ट्वी तो द्री तेरो रिस्म फरदख्तन मंगलवार के बुधवार के यहां बताए गए है नीदरलैंड में फॉर ओर डील भले फॉर टेररिज्म अबले दर्द फरदख्त जो हैगा वीकर फॉर डिंगन फॉर टेररिज्म अबले जोनी इसे का कर ले रहा तो बातचीत होएगा तीनों टेररिस्ट फरदख्तन इसे दो हफ्ता के पकड़ के
Johan Kees in Rotterdam. Een derde waar ik zoek gelegen commissaris. Ik ga Sora Bariske. En ik ga Onees Bariske Londa. Raad Kees in Valkees in Rotterdam. Eindhoven met Alagmar met jij kies heb gepakken. We willen wel invallen, werden geen wapens aangetroffen. Wel zijn enkele gegevens dragen in beslag genomen. Er is concreet doelwit of moment voor aanslag in beeld. Toe je bent Nederland, je bent het, hamare janta. Jo aapko batana, hamara kaam hai. Batana kaam hai. Ab deko bhaiya, admi ek mila auto leke rustig se jaai. Suriname ke baat chit hai bhaiya. लतूर वेख के बातचीत है अब देखे एक मिला मांगे हबड़ा होए से बड़ा पात पे तो अब यो तो हुआ ओके रोकी जो ने अनमिया हबड़ा हो जाए ये बात हुए है क्रॉसिंग लतूर के और फ्रैंकलिन वेख के तो हुआ रैम करी सेगा जो ने अदमिया हबड़ा हो जाए मा ओकर पछुआ एगो ओतो रहा हमें जना ओके हास रहा तो वो तो हुआ नगे लेकर पीछे अगोरे उ इनहाल करके जाए के फूत कांगवा का मारी से भैया मुँह फूत खांगर के मार के अपरे पेल भागल है थोड़ा देर बाद फिन लौट के आयल है ब्लैक बेल एगो स्कौतुरा 25 बरिस के भाए स्कौतुरा ओके सिपाही पकड़ के बंद करी से बोले फूत कांगर्स के तू फरेड कर ले बटे वाना दा खेन ता एके अब्स कमिसारस में गए ले फॉर द रेक्टर गए ले है तो कमिसारस एक फ्राई कर दी सेगा बफेस्तक करे से उपमार मिनिस्टर अब बोलिए जॉनी कैसे हुई से कई चीज हुआ तो एक बारे में बताई गई है बोले बे आन कॉम्स्ट्रोफन वेस्ट दिनार है स्लाख्तोफर आन दात खेन टेकर फन लीवर में फर्दून मर गए रहा बोले अन इंस के स्काकल बताए इसकी मर गए है और बोले आई थिंक अंडरसुक इज कंप्लीकन दैट द ऑटोबस टू द कोर फन आर रीडिंग ओवर द लातूर वेग रेड हे कम फन इन द रिक्टिंग फन Martin Luther Kingweg, Martin Luther Kingweg से richting Indira Gandhi weg जाता रहा दोस्तों और बताया गया है कि the police believe नहीं दारू पी ले रहा बकन of under बदवेलम द मिडलन उनका रेबेस वेट आहांगन दें अनुसूक इन गफोर्डेड है लेखा फन स्लाख्तोफर इस नतुले इन बरसलाख नोमे अब एक बारे में अनुसूक हुई का हुई का ना हुई तो ऐसे बिचारा मर गए भैया अरे दिंग से ये बात है हमारी जनता प्यारे प्यारे जनता बको भैया बारा चकल्लस भाई जो ही रखे रिंग में आवे भैया मिनिस्टर फॉर मेनी लांस बेनी लांस साके में बोले कम करतन लांटी लोन के कितना आदमी है अमतनार जो दुबल सलारस पावे है भाई तो मिनिस्टर ने आउट फोर्स इधर फंस असेंबली मनी ने इसमें भी बोले हैगा बोले फिर तीन होंदत आठों फिर तक आदमी के बोले सलारस हमने उन ब्लॉक हेयर कर दे ली बाटी हाँ बिशक मिनिस्टर बोले है बोले हैगा फंड 2004 फे उन फिन बारह अमतनार जो सब न पावे है बोले फन 1253 तक आदमी के बोले हम लोग ब्लॉकेयर कर दे ली तो कहे ना 800 हुआ के और करे है बतावे है तो नीतू हेवन स्लैक नहीं न देर तक आदमी बोले हम लोग के उतरा ढेर में से अनमेल द करी से बोले टोटल ओवर है इस ब्रीड अफकलोपर मानदक में 1400 और 48 सलालस बोले ब्लॉकेयर कर ली बाटी बोले को ट्रायक्ट रहा फंड सलालस ब्लॉकेयरिंग के बारे में बोले हों द ट्वीन सिवे सलालस हैं ओ को ब्लॉकेयर बाकी भैया ब्लॉकेयर तो तू कर ले है बाकी अरमियन के जो देवत सलालस पावे है ओके तरीक वेर हैं द क्रैक से ना भर भैये जो उन तरह पैसा पाई से भैया यहाँ बतावे करे कि हम लोग के रखेरे 200 मिलियन एसर दी पर यार ओकर पैसा पानी में चल जाता रहा रखेरिंग की और बताई गई हैगा बोले हैगा द वेस मान फॉर द आन दैट इट बलाई नीच गस्टूल इज ऑफ पॉपुलिज्म वार्डोर इंफॉर्मेशन पास द सामलेविंग वर्ड गदील वनेर दैट नोडिक इज और बोले यू कैन इंडरडार ब्लॉकेरन मार दन फर्लिश यू जो अ रेक्सा यू मुड द प्रोसीड्यूर इन अख नेमर एंड दैट डून वे ऑल दिस मिनिस्टर फन बिशा और वो है मनीरस फन बी आउट फोर्सिटर फॉन उनसे DNA के बारे में हमारी जनता भैया जो नदमी पयाल पे बैठे हैं पटवन वानी का हम लोग बोली ला अब बोले इंदिरा गांधी वे
और वो परफॉर्म अनिका के बोले है तुलों जाने पे यार बिशुन भैया बाइसिकली जहाँ चले वो पर से नहाल करे है नानी बड़ी चकल से एक बारे में ओमदार फीलर है परफॉर्म अनिका हरदम और बेशफेर मांगे पैसा कमाए भैया तो बेशफेर का करे फील वो न मांगे रहे तो बगलिया में फिचपात है भैया फिचपत वापस से चलाए गए नहाल करे है रुक लो उस रे खतरा खरफान बेशफेर के बारे में तो एक बारे में मिनिस्टर फॉर ट्रांसपोर्ट बोले हैगा बोले बारात से ओवर फर्दर मात्रेगल ऑफ द रुकलोसर रे खतरागन फॉर बेशफेर अफ तो स्ट्राफन अब तुझे ये स्ट्राफ करे इच युआ तो बड़ी दिन से हुए कैसे बोले है हिराम बोले आज द कुफर ड्रंकन इज देम एंड द पूर एंड दैट इज ऑन सलान सुरीनाम लाती के सब चीजों करे अरे जब तू प्रॉब्लम कंसंट्रेट पहले बाटे तब तो के चाहिए ओपाप देखो भैया दुई वो कफरी के आंखी हिया बन कर ले बा फ्रेड ब्यूरोक्रेसी के बांचित हुए हमारे जनता बुधवार के और नईस एगो है और एगो हैगा 29 बरिस के दुई गो लंडन भैया फ्रेड ब्यूरोक्रेसी आमे ये सब घुसल है और जाएगा दिवताल करीसेगा ओवर खंडराखा ने रिसर्च और बतावे हैगा एंड द पुलिस चीफ आंखकेवन की सब लातर मोमेंट पे जबर एन बिसोंदर ओवर द साग वैकेंसी रिवॉर्डन खमाक तब बताएगा काम भइले और काना भइले लातरी के बारे में सब हम बताएगा हमारे जनता हम तो लोग के बोलीला हमारे तैतवा फिन होई गए है हां तजय तैतवा होई गए है तो हम में चाही गाना का बोले हैगा रोकी के तो

0: informatie www.minnesummerfestival.nl.
1: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.
2: और क्या होगा क्या नहीं होगा प्रोग्राम में आज सुनते रहो प्यार भरी गीतों का बहार। प्रोग्राम यहां से हम शुरुआत करते हैं।

आओ शो मी दे ठुमका, शो मी दे ठुमका, तू झूठी मैं मक्कार, रणधीर का। उसके बाद हम चलते हैं नौटंकी कोड इंस्पेक्टर अविनाश के ओर हम चलते हैं। और नौटंकी में क्या होता है दोस्तों, आओ सुना जाए तू।

और सैयां जब मुझे बुलाएंगे तो कैसे हम नहीं जाएंगे, मैंने भी रान रखी है, तू झूठी है, तू मक्कार है, रणबीर शारदा प्रीतम सीरिया बता रहे हैं देविया का अमिताभ के साथ।

0: और हम भी यहाँ पर पानी पी रखी है। हमारे यारो क्या लोगो तुम, हम चलते गीत को जिसमें अक्षय कुमार ने काम किया है।
1: चलो चलो चलो चलो,

और मेरे जिंदगी में आने को क्या लेंगे तुम। ये गीत गलत गाया गया है कि मेरे जिंदगी में जाने को क्या लोगे, और हकीकत में है उसको कहते हैं कि मेरे जिंदगी में आने को क्या लोगे। तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों कि हमारा जिंदगी में आना है तो आपके फॉरवर्ड क्या है। फॉरवर्ड के बातचीत यहाँ पे हो रहा है दोस्तों, तो आपको हम बता देना थे। तो इसके बाद हम जाते हैं चुनरिया के ओर, भैया बीबी नंबर 1 के ओर हम जाते हैं।

और चुनरिया उड़ गया, अगर चुनरिया उड़ गया तो क्या देखने की मिलेगा, आपके ऊपर हम छोड़ देते हैं। और चुनरिया के बाद हम चलते हैं, अच्छा सिला दिया है तूने मेरी प्यार के, जब कभी किसी ने किसी को प्यार में धोखा दिया है तो उस सब के लिए इस गीत को यहाँ से हम चलाते हैं। तो हम यही कहते हैं दोस्तों, दुनिया में धोखा तो कभी देना नहीं चाहिए, लेकिन जिस जिसको आप बहुत चाहते हैं, जिसके आप बहुत चाहते हैं खास करके, उसको कभी धोखा नहीं देना चाहिए। सच्चाई से रहना, झूठ मत बोलना, उपकर्तस्पेलमेंस से, और उसमें आपको जीत होगा। जिस दिन आप सच्चाई से सामना करने को तांगत रखेंगे, और उस दिन आपसे जबर किसी नहीं होएंगे, कभी तुझसे जबर किसी नहीं हो सकता है। इसीलिए कहते हैं कि सच्चाई पे रहना और अपने चाहने वालों को कभी धोखा मत देना, यानी कि धोखा देना अच्छा बात नहीं है। कभी कभी दिल में इतना चोट लग जाता है, उसको कुछ दवा दारू उसको ठीक नहीं कर सकता है, और अगर कर सकता है तो फिर से प्यार ही ओके अच्छा कर सकता है। दोस्तों तो हम चलते हैं, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का।

और अच्छा सिला दिया है तूने और दिया है मेरे प्यार को। अगर जब किसी को धोखा देगे प्यार में दोस्तों, तो उसको ये गीत सुनना पड़ेगा। अगर धोखा दिया है तो ये गीत सुनना पड़ेगा। दार इस हेलमाल खीन एक्सक्यूज से फोर फोर दैट ये आज निमांत फोर द खेक हैव खाओदा अपन धोखा ना दे लो है तो कि उस पे आपको क्या डर है। चोरी करना डर है, चोरी ना करो किसका डर है। इसके बाद हम चलते हैं मिलने के तुम कोशिश जरूर करना। मिलने की कोशिश तुमको जरूर करना है। कुमार शानू आशा जी गीत को आप लोग को सुनाएंगे।

टूट जाता है, लेकिन कोशिश करना हमारे यारों कि वादा ना टूटे, वादा टूटना नहीं चाहिए, और खास करके प्यार के वादा। उसके बाद हम चलते हैं झूमे जो पठान, और वो है शाहरुख खान। झूमे जो पठान, वो है शाहरुख खान और दीपिका।

कौन गीत हम चलाते हैं, अगर जो किसी के दीवाना हो गया है तो उस दीवानी के लिए ये गीत हम चलाते हैं, अगर जो किसी के ऊपर दीवाना हो गया है तो सब लॉफर्स के लिए ये गीत हम यहाँ से चलाते हैं।

और ऐसी दीवानगी किसको होता है? उसी को होता है जो दीवाना हो जाता है। तो उसी के लिए इस गीत है कि ऐसे दीवानगी देखी नहीं कहीं। और फिल्म के नाम है दीवाना, जिसमें शाहरुख खान, देविया भारती ने काम किए है। एन बेस्ट मैन से वही खान दौर मत ओन से मोय प्रोग्रामा। और लठ लग गए है, जिसमें सैफ अली खान ने काम किए है।

0: ईश कला न जाने जात सरस्वती माता दीजिए हमको अपनी आजीरमा दे
1: मैं तेरी शायरी।
0: तमाम रेडियो फाहुन की सुनने वालों को हमारा राम राम नमस्कार प्यार भरिए नाम सत श्री अकाल। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम। आज का देश और विदेश का समाचार सुनाना है हमारा काम। यही है हमारा मोहब्बत भरी प्यार की पैगाम। चुके हैं तो हमारे प्यारे प्यारे जनता, मीठा मीठा जनता, स्वीटी स्वीटी जनता, आज भी हम फेसबुक के माध्यम से लाइव है अपना प्रोग्राम में। और आज भी आप लोग को हम दुनिया की शेयर कराएंगे रेडियो फाहुन के माध्यम से और जाकर भारत में सूरीनाम के भी शेयर कराएंगे। तो हमारे नानी लोन, आजा लोन, आजी लोन, आप जहां भी हो बड़ों के प्रणाम, बच्चों के आशीर्वाद और दोस्तों के, हमारे दोस्तों के सलाम दुआ प्यार नमस्कार सब सब भैया। तो यहां से हम तुरंत चलते हैं और जाते हैं अपना देश सूरीनाम की ओर। और फेसबुक के माध्यम पे आ गया है इसरी, जाने के धर्मेंद्र इसरी आ गया है। तो आपको हम स्वागत करते हैं धर्मेंद्र। तो धर्मेंद्र बातचीत ये हो रहा है, सूरीनाम के भैया दुई परानी बोले बड़ा प्रेम से रहत रहा, बोलिए जॉनी झगड़वा हो गया, ना ना ना ना ना ना, ये दूसरा बातचीत है। दुई प्राणी के बातचीत हुए है, दुई प्राणी के सिपाही पकड़ी से, तो ये दोनों के देर तक यूली के पकड़ी से ऑफ डीलिंग जोन मा सीईई के एगो अक्टन ट्वेल तक यार के एफ एस एगो फैफन देर तक यार के, तो ये सब के कैसे पकड़ी से भैया क्यूबान के, क्यूबान के औरत रहा भैया, क्यूबान लोग के औरत लोग के समोकल करके लावत रहा देशवा में। तो लोग जानो है आदमी दृक स्मोकल करे है, सौदा पानी स्मोकल करे, अबे बतावे कितना तमाकू सब स्मोकल करी से, और ये सब मेंस हैंडल करत रहा भैया। फरमुड लोग आइट बेटिंग फॉर फॉर नाम लोग का क्यूबान से व्रावन एंड हील मोये व्रावन और भाई मेंस हमार भैया लोन हुआ पे बनैया लोन है सूरीनाम में, हमसे बोले है जॉनी, बोले बड़ा सुंदर सुंदर कोई पान के औरतियां है, तो वही के मारे तो एक के सबन क्यूबा के औरत लोग के स्मोकल करके लावे है। तो हम ना बोले ला तो लोग के जइयो देखिए यो मां हम बताए ला तोरिया कैसे है। तो यहां बड़ फ्रॉ फरक्लार्ड बोले हैगा और जो उनके पकड़ी से ऑन द सुकुम खांग नादर फॉर मुड लक स्लाख्त ऑफर एगो क्यूबान के औरत स्लाख्त ऑफर हाथ गेल है बतावे है, बोले हैगा दैट से हर अन कम्स इन सूरीनाम, बोले जैसे हम आइली बोले सबन हमार पासपोर्ट ले लेइस है, पासपोर्ट ले लेइस है। तो ये पासपोर्ट ले लेइस है तो अब बोलिए कि अब तो अभी कहीं जा ही ना पाए ये पासपोर्ट वाले आएंगे, तो इंदर दात में से अब एकर पासपोर्ट लेके, एकर पासपोर्ट लेके और का करी से गए जाए के बैठा दे से भैया, हाँ बैठा दे से गए प्रोस्टुई में नाना, हाँ जहाँ पे हमारे हमार बिरमान लोन जा है चकलस करे हुआ पे जाए के बैठा दे से, और पासपोर्ट क्यूबान के छोड़ी के माई के और कस पासपोर्ट ले ले से और ले जाए के बोले अब तू चल, अब चल तू अपन सेक्स वर्क के काम शुरू कर नाइट क्लब में। तो हमारा बहन अर्शिला भग्गू समुझ भी अलगमान से आकर हमारे प्रोग्राम में जुड़ गए हैं, तो आपको हम स्वागत करते हैं। तो यहाँ बताए गए हैं, बताए गए हैगा कि पासपोर्ट लेके जाए के खदोंगन उम सेक्स वेरक्त फरिश्तन और ना खाली एगो फर्स्ट केलंद क्लब में ले आए ले जाए वहाँ पे और बदमाशी करत रहा हाँ और बदमाशी करवावत रहा द नाश खाव से आन द सिख मेर्दर फ्रोवन फन क्यूबांस अफकोम्स ऑफ द अपन लोकासीन कॉम अवे न कॉम अवे न मन हंसू में भैया ले जाए ले जाए औरत के धल्ले रहा कॉम अवे न में भाई स्मोकल कर कर बड़ी ढेर और कॉम अवे न में एगो रास्ता के नाम बात उर्सिला तू तो जानत हो यो कॉम अवे न के बातचीत है एगो रास्ता के नाम बा माया माया दाम माया दाम है हमें तो पता ना है और जे कमोवेनक है हंसुक है आपको तो पता होगा कि माया दाम कमोवेन में कहाँ है तो कमोवेन में माया दाम में भैया हुआ पे ले जाए ले जाए औरतियन के जैसे महासैन में धरत रहा यहाँ पे और क्यूबा के औरत के मंगाई मंगाई और ले जाए ले जाए माया दाम में आम खवावत रहा का भैया और बताए गए हैगा ऑफ कॉम्स्ट एट क्यूबा ऑन फॉर ना मुदलक फॉल्स फॉर वेंसलन फॉर सुरीनाम ही व्लाद इन ओवर गोमन और बोले फॉर सेक्स वर्क मींस इन पासपोर्ट वर्ड इन कोनोमर आस ऑन पंत से achtergehouden waardoor zij afhankelijk bleven van de verdachten. Toen Johnny paspoort wel leed, heb de Abu John bolie toen toch ik kreeg periga. En mooi mooi baard bolke chal toch ik sarnaam me hem bakwa khawabe. Mooi mooi kaam debe. En hier laike ikke. En Cuba ke aurat lukke. En laai laai hossel karawawat ra paspoort asport lele raha. Toen leidin safe base hamara एक बहन और आ गया है चित्रा अवतार आपको बहुत प्यार से और स्वागत करते हैं अपना प्रोग्राम में। तो ये बात हो चुका भैया तुम जानो है क्वेक क्वेक जाने जो सुनवा वाला चीज हुआ है तो क्वेक के बात है तो क्वेक के तरह चोरी भैला हो तो हम कई रोज से बोले ला बाकी सरमक्का के रीवा में भैया सरमक्का के रीवा में बेनालांग के रीवा में मछरी मर मर सब उतरान है इरमा राम तहल सिंह आपको हम स्वागत करते हैं मछरी सरीनाम में सरमक्का में और बेनालांग में मछरी मर मर सब उतरान है भाई फरखेफ भैले हुआ के पानी तो लांटी बोले है बोले तू लोग के रीवा के मछरी पकड़ के ना चाहे खाई के और ना पानी चाहे पिए के बोले ऊपर खिफ्तक है तो अब अनमी लोग के बारा दुख है भैया जो अनमी बेनालांत में रहे हैं वो रीवा के पानी से बनावे खा है और मछली बनाई के खा है अपन जीवन चलावे है जब तो रीवा फर खिफ्तक हो गए है तो अनमी भला अपन जीवन कैसे जाई चलावे तो लांटी का बोले है शांति गुरुओं के दुर्पू में शर्मा का रिवीर में बोले हुआ पे शांति गुरु में ले जाए ले जाए अब उस सबके पकेता देवे भैया पकेता देवे है हिया बतावे है बोले सिचुवासी ही द सिचुवासी ही कलेटर मसाले फिस्टर्फ्ट एन ओंत्रीगल्ट दागलिक लीवन इन गेट्रोफन गमेनशाप के बातचीत हो रहा है तो बताए गए हैगा कि अब ले जाए वो कैप्टन है जिसका नाम बा एथार प्लेन शांति ग्रोम के बोले हैगा 10 बवोनर्स हेल्प वर देरन वार देर करे हैं मां बोले फिर भी फुसर पर कहता हम लोग के लगे आवे है दौरव सो बोले है मां बोले हम लोग के बोले कैप्टन बोले हैगा पिकिंग पोइका के प्लेट फॉर फर्दर हेल्प से स्टिल दैट द पकेन फील बतीकन फॉर द बमोज मार दैट द ऑफवर्क नो साकलिक ब्लेव सो लंग द रिवीर वाटर ऑन ब्रेक बार ब्लेव मींस तो पानी के हुआ बड़ा प्रॉब्लम अब देखो भैया बोले रही क्यूबा के औरत के इरमा क्यूबा के औरत के शर्मा में से बन स्मोकल करके लावे दिसुआ में पासपोर्ट वा लेके और ले जाए के नाख क्लब में प्रोटेस्टवे सेक्स वर्क के काम करवावे हैं तो यहाँ पे बताए गए हैं ना खाली क्यूबा के औरतियन के भैया 1700 इलखाल तमाकू निकेरी में सबन स्मोकल करी जरे कोई कोका ही न स्मोकल करे है कोई भैया तमाकू हो स्मोकल करे कोई औरत स्मोकल करे है तो यहाँ अब तमाकू के बारी है 1700 पाकी और जाए के स्मोकल भइल है ई बातचीत हुए वो जगह के नाम बा करापा हुक लान निकेरी के बातचीत है तो करापा हुक लान निकेरी में एगो बहुत बड़का परताई तमाकू मिलल है और बोले एगो 50 बरिस के आदमी के सपन पकड़ ले सेगा तमाकू के साथ में और ओके जबरदस्त बूटू मारी से और रमिया के भका फक चाहे तमाकू पिए के भैया जब तू तमाकू स्मोकल कर लेते तो कह चाहे तमाकू पिए के ये बात है सूरीनाम के हमारे प्यारे प्यारे जनता तो यहां पर बताए गए है पता है और हमारे उस्तादों के उस्ताद महा उस्ताद भैया सुंदर हीरा लौंडा के नाच भी रहा के नाच के गुरु भी हमारा प्रोग्राम में आकर और जुट गए हैं तो हमारा उस्ताद के हम यहां से हृदय से स्वागत करते हैं तो भैया हीरा जी बातचीत हुए भैया इतना रोफ हुए सूरीनाम में का बोली भाई और हमार हनीस मनोरथ बोले बोले चिजुअन बोले बड़ा मोई हुई के दसवा तू रिश्ता के बोला अब देखो भैया खवा पंद ऊपर फाल भैले बालकोन में रमिया बैठ के अपन ठंडा ठंडा हवा लेवतरा ठंडा ठंडा हवा लेवतरा एगो सीनियर बुरखर यहाँ और खुमोई से अपन

go anmi young bronfish pe okar bronfish pe rukal hai aur bronfish leke rukal hai bhaiya aur aai ke bole hega ego bole hega rex trace okar balkon mein khusal hai bina ekko wash kiwen ke nikari se pistol bhaiya और ये बयारदा मन के अठारह क्रात के सोना के केती गटई में से ले के चल गए हैं और फॉर्म फॉर लेवन कॉप हंगरवा रहा जैसे को बाघ के मूड़ी के तु जाने सबन हंगर बनाए रहे तो भगवा के मूड़ी के और फॉर फॉल्क तुरखना ब्रोमफिस। तो दोस्तों कोई जमाना में बहुतर्स बोले रहा बोले हम बोले तिकुआ में बोले ये हम पर ऐसी डेंथ होबे बड़कुआ हो जाबे तब बोले जितना अनमी के घर में लोहा लगल है बोले लोहा ना हुफ्त लगावे इतना फैलक हो जाई दसवा मेरे भगवान घरवा न अनमी के आजकल अपन बालकोन में लगावे के परे ले भैया कि बालकोन में लोहा लगावे के परे वन बालकोनवा में तो के डर है हम तो लगाए बाटी भैया बालकोन में लोहा और ओमा लोहा बन करके जैसे भैया जल में बैठियो तीन ताला लगाई के झलवा में बैठ के बहरे तकियो कि जल में से जैसे कोई बहरे ताके है। तो ये बात है हमारा सूरीनाम के प्यारे प्यारे जनता की बालकोन में भी अनमी लोग के और चोरी हो जाए रोफ हो जाए ये बातचीत है हमारा सूरीनाम के हमारे प्यारे प्यारे मीठा मीठा जनता। तो हम जाए भैया हम लोग के जो फोर्थ सेटर है और फोर्थ सेटर है आसाम ब्ले के और वो है अश्विन अधीन फोर्थ सेटर फाइनल नेशनल अश्विन अधीन बोले है दोनों दाख के और फरखादरिंग में बोले बपाल तेईत फरदाखन फॉर लीडर वास का बसेर ऑफ द ग्रंथवेटलक फरांतवोर्डलक हैत के बारे में। तो अधीन बोले अबे आप लोग के और बात हम बताएंगे कि क्या हुआ सूरीनाम में। आप लोग जानो हैं फिहा पियर पार्लियामेंटारी रहेगा सिद्रिक फान जमजोन है। हाँ तो टोनी अब भी आ गया है तो आपको हम स्वागत करते हैं टोनी इसरी को भी। तो टोनी बात ऐसे है कि सिद्रिक सैमसन हैगा फिर यहाँ पे एक पार्लियामेंटारियर है और दोंदर दाख के भैया ओके सभन आसाम ब्ले में बड़ा जबर एनडीपी के औरत लो लपेटी से भाए जो लपटाई लपेटी से ओके इतना लपेटी से गा कि एनडीपी के औरत सब पार्लियामेंट छोड़ के बहरे चल गए है। बोले है कि सैमसन बोले तू रेडियो हलान के गो रेडियो है बोले तू वहां इंटरव्यू पे बोले बाटे कि औरत न चाहे सरनाम में प्रेसिडेंट होए के बोले हम लोग वही मारे डेमोस्ट्रेट करे बोले तो चाहे सॉरी मांगे के वन बोले तू कैसे बोल सके कि औरत के नाम आखेगा सूरीनाम में प्रेसिडेंट होए के और बोले तो के ए बोले फ्रॉलक प्रेसिडेंट मुद हैवन अस क्रिटिक ऑफ हर बलाई तेजस वर्क कोपल एंड इट फेट दैट से एन फ्रॉ इज दी फरमेंड स्प्राक स्कूटर मेरे नाम में फ्रॉलक एनडीपी पार्लियामेंटारियस सैमसन बोले हम थोरो सब औरत के बुल्ली बाटी सैमसन बोले है बोले हम बोली बाटे कि सीमोन के कभी न चाहे प्रेसिडेंट हो एक बार हम लोग इतना फ्राक तेल करी ला का बोले हैगा पार्लियामेंट में सीमोन आईबे न करे है तो बोले ऐसा औरत प्रेसिडेंट लायक ना है बोले ई बतिया हम बोली है बोले हम थोड़ो बोली एक को औरत के नाम आके प्रेसिडेंट हो के बोले हम लोग कितना फ्राक यस तेल कर ली है कि जैसे स्कूतू को पॉलिसी ब्यूरो में से इतना क्विक क्लास हो गए है इतना स्कूतुलन यहाँ रोतसोई करे है यहाँ चोरी हुए अब बोले प्रेसिडेंट के चाहे आए के फरकलार करे के अब बोले आईबे न करे मावे वही तो ओक में से अने तय जैसे रखेरिंग फॉर एनडीपी ये बहुत उस प्रेसिडेंट ने तरावा से ओक सेल्फ प्रॉब्लम कि प्रेसिडेंट तो बहुत कमती आवे हैगा देना में। तो ये बात है फॉर सम सॉरी अकेड लातर में तो स्क्रिप्ट लग फरकलारे वारे ने स्टेल दैट्स एन आइस प्राकन आउट एन इंटरव्यू।

context zijn gehaald. Volgens hem was het nooit zijn bedoeling om vrouwen te discrimineren of hun geschiktheid voor de presidentskamp in twijfel trekken. Hij benadrukte dat bestuurders moeten worden beoordeeld op hun functioneren, integriteit en bereidheid van de verantwoording af te leggen. Ongeacht kiootje hij ouderd hoi, oudje hij marad hoi, oude aanbloen jano bhaiya, joon samen op verkiezing prioriteer haan. Oes samen pe toni, bolat raan, NDP kademien, bole unowan noan, kuli als president. Jano hoi batia, bole hamlun kuli ke namangila deswa ke president kabhina hoi, de oes samen pe admiloon, Muna kolatraki bhi discriminatie hai aur yahan Samson ke saman pehle hai aur sab mul uk chahega fault apan leve ke lekin ab tak Samson bole kuch fault na kar li to bole kaise bhala hum apan fault ja mein maafi mange bole dat khat nit khabira to hum jai tari Marokko ke oor bhaiya ha 37,000 na ego bhaiya 37,000 migranten vanuit Ghouta teruggekeerd naar Marokko 17,000 Marokkanen jon gaila Ghouta mein au hai go Spaanse jaga hai Spanje mein grens van de Spaanse exclave Exclave, bole huwa pas se habra hot raha, bole hega overstaken zijn al meer dan 37,000 Marokkaanse migranten inmiddels teruggekeerd naar Marokko. Bole dat meldt de Spaanse minister van de Binnenlandse Zaken, or bole hega, bole 57 mensen, bole jon burke marge bhiye. Ik heb een Spaanse krant bolehega sterke toename van migranten werd in Ghouta een noodsituatie uitgeroepen. Bole kritiek hega Italië, Finland, Frankrijk en Duitsland. Ze riepen onder meer op grenscontrole. Dan wil ik ook Marokko ke bare mein aap log ko hum बता देते हैं दोस्तों हाँ गर्मी के मौसम है तो पानी तो पीना चाहिए हमारे दोस्तों पानी पीने में खिलवाड़ तो आ गया है सासार्थ आ गया है शारदा भी आ गया है तो आपको हम स्वागत करते हैं हमारे सासार्थ के तो हम चलते हैं और अगला समाचार की ओर हमारी जनता पुलिस चीफ हम जाला श्रीलंका के ओर दोस्तों बहुत जनता है हमारा हिंदुस्तानी जगह देखी से श्रीलंका में जाई के फकलांसी से बोली तो श्रीलंका के न्यूज भी हम तरी बतावल कर भैया हीरा तो श्रीलंका में भैया हुआ मौत के सजा मिलल है श्रीलंका में मौत के समा सजा मिला और के मिलल है एगो फॉर्मल का पॉलिसी शेफ के मौत के समाचार मिलल है ई का कल रहा 2019 में 2019 में एगो दौल के का बम आंसलाग कल रहा देसवा में हां जहां पे 279 आदमी मर गए श्रीलंका में अंदर भी तीन गो नीदरलैंडर भी उही में रहा जो मर गए रहा एगो पॉलिसी शेफ ई चीज कर ले रहा और बोले एकर बारे में बोले होख बरूप गैला सकवा होख बरूप गैला 2022 में बोले और पॉलिसी शेफ ओकर नाम बा जया सुंदरा और बोले एंड तुनमालक मिनिस्टर फॉर डिमेंसी डिफेंसी हेमा सिरी फर्नांडो नोक से फ्राई गस्प्रोके मेंसे और ये 66 यारखे पुलिस शेफ जो रहा होक बरूप कर ले रहा हो खरेफ तोख में श्रीलंका ही 76 मा
doodstraf uitvoer कर दी से कितना आदमी बोले सुरीनाम में भी जाही करे के भैया जो ने सुरीनाम में doodstraf है बकी हुआ पे सबन वर्किंग में ना लावे हैं बोले ना माखे और जे एगो दुगो जे हुआ जो आदमी लोग के मौत करे है रूफ करेगा एगो दुगो जे doodstraf मिलत भैया 10% van de criminaliteit verlaagd worden. Maar ja, goed, in Suriname doen ze niet. Maar sinds dat ze in Sri Lanka hebben gedaan, mensen, is het land veel beter geworden qua de criminaliteit. Toch ja, wat we hebben. De straffen worden doorgaans omgezet in levenslange gevangenisstraf. 1976 mee. Maar Indiaanse inlichtingendienst Bolef, Tjartarik Aprilke, 2019 mee al gewaarschuwd voor een mogelijke zelfmoordaanslag door islamische terroristen. De autoriteiten zouden toen geen actie hebben genomen. De aanslagen worden plaats op 21 april 2019. Bollega, je hebt 10 go keer, 10 go hotel mee. 279 admi marala. Op 500 admi chotayer ha. Toen je baat he, dosto. Sri Lanka rechtbank in Sri Lanka heeft voormalige politiechef ter dood veroordeeld omdat hij in 2019 dodelijke bomaanslagen in het land niet heeft weten te voorkomen. Obole, daarbij kwamen 279 mensen om het leven. Bole, na wat jij para ook erbare me bole, hier dosto, om te voorkomen. Oudertje, joa, aise bhele politiechef ke bare me he. Hamare, pyare, pyare, mitha, mitha, janta. Hamare, nani lon, hamare, pyare, pyare, bhau, ji lon. अभी आप लोग को हम और आगे के समाचार यहाँ पे बताते चले हैं बातचीत भैया जब देखो पहले भी रहा भैया सुरीनाम के जल भर गए दिलब बद्धू आ गया है हाँ दिलब आपको भी हम स्वागत करते हैं राजा सांतो बोमा ओफर लोथ हो गया भैया जहलिया से अब लंटी के पैसा ना रहेंगे सबन के खवावे के बुद्धू खवावे के भैया अब हुआ पे अरेस्टांत बहुत ढेर हो गए अब लीफरांसीर के लंटी पैसा 6 महीना हो गए ना भरी अब घास खाइयो हाँ जहल के मांची दे पुलिसी ब्यूरो के और ले फ्रांसिस जो खाई ले यात्रा देवे उस सब बोले हम लोग 6 महीना से पैसा ना पैली है तो बोले जब पैसा ना पैली है मां बोले तो हम लोग जहलीवन के सोची ला बोले हम लोग कर्जा ले ले बोले हम लोग जाएला जहलीवन के खवावे भैया और बोले हम लोग कर्जा ले हम लोग जाएला जहलीवन के खवावे और लंटी 6 महीना से बोले हम लोग के पैसा ना भरी से हमारा सुरीनाम के लंटी काहे ना जहलीवे से तरकारी बोवाई के खाई पकवावे रे भैया मोई से इस सब जा है और जाए के सबके रूफ कर कर चोरी कर कर अशांत बोमा में बैठ के जैसे होटल में बैठ के खाई के गोरे है और कैचरे जाए जाए खाई बनाई बनाई देवे है तो इस सबके हम बताई है लांटी के चाहे वही कम कर्तवन से खेती बारी करवाओ तरकारी बोवाओ और वही तरकारी ले के चलो अपने तुलो बनाओ शांतो बोमा में और बनाए बनाए अपन मेड जहलीवन के खवाओ ऐसे चीज आ जा मारे भलाई फंसरी नाम सवेल सवेल द लुक्स हैव में से मस हैव खेन खेल्ट तो गीता सिगुलाम भी आकर हमारा प्रोग्राम में जुड़ गया है तो वेले से सेल्फ इन द गवर्नेंस वेले से द लुक्स लीव गान फोरसेट में से इन दिस कैन नी द ऑनदरनेमर्स टेलन दैट से कॉस्टन फॉर फॉरगुड ट्रांसपोर्ट पर्सनल और बोलेगा महीने से लांटी पैसे ना भरी से तो एकर बारे में मिनिस्टर फंजुसियन पुलिस ने गेले तो बोले एडमिनिस्ट्रेटिव फॉल्ट बोले hoewel een deel van de leverancier voorlopig doorgaat, uit verantwoordelijkheid gevoel en uit vrees van de maatschappelijke gevolgen, groeit de onzekerheid zonder snelle oplossing, dreigt de voorstelvoorziening van de arrestanten alsnog volledig vast te lopen.
तो ई हमारा जहली उन कहते भैया लोन जहल में हुई हो तो बोलियो ये जोनिया बोले तू मांगे हम जाए वहाँ खेती करी। अरे मिया मोटाई ऐली बाटी खूब खाए ऐली बाटी जो रे हम अपन जहली हुआ काट के जाए के चिनवन हिंदुस्तानियन के घरवन में फिर रोफ करी और रोफ करके पैसा जितना मांग बनाए बना ले पकड़ा जाबे फिर आबे यहाँ होटल में हम आइए हमें तो लोग कमाई के खावाओ। ई जहली वन बोले है और हमारा रखेरिंग श्री नाम के सदुन ही लमाल निक्स एर्मी में से ब्लाइफ मादी में से फुदर से ब्लाइफ मादी में से फुदर एंड दिस इज अब देखो सेग ना एक चीज के बाद जितना है 100,000 एसआरडी के बात है भैया 100,000 एसआरडी के बातचीत है जो लुटेरा जाई के हाँ लुटेरा जाए के एगो रास्ता के नाम बा खेरास्त्रासर नाम में 27 जुलाई के और बताई गई हैगा 27 जुलाई और 29 जुलाई पलाफोन तूर के घर के पलाफोन तूर के और जाए के घुस के एक और एगो द्रियन फेफ तक यारक आदमी घरवा में रहा और ओके का बोलेगा 100,000 पैसा चुरा ले इस और इद्रिय से इवन तक यार का नमिया घरवा में रहत रहा और घरवा जो रहा ओकर भाई के रहा और बैतल लांत मेरा भैया ई भैया हुआ रहत रहा और ओकर एखनार जोन घर के रहा ओकर भाई बैतल लांत मेरा भैया कितना आदमी जो सूरीनाम देश में भैया सुंदर घर बनाए के छोड़ देवे हैं अपन सास के ने अपन माई के ने अपन भाई के बोले तू ही घर में रहो तो के ना हो तो कुछ रह के चिराग पानी भरिए हम आवे तो घरों में प्रेम से रहबे और कुछ पैसा भी छोड़ दे है लेकिन चोरन ओह जाए के मार दे भैया होंदत दैसन ऐसे दी मारी से एक दो इसी से ना मारी से भैया बहुत बड़का पैसा है जो नन्मी पसीना से पैसा कमा है ओके तो मालूम है कि कितना मेहनत से पैसा आवे है। अब देखो कोर्स हैगा सूरीनाम के और वो है एरो है ट्वेयम फिरतक एरो ट्वेयम फिरतक कोमा ट्वेंटक एसआरडी इन एरो तुरियो तपयो ट्वेयम फिरतक कोमा ट्वेंटक एसआरडी और जयो कीने एरो तभरियो द्रियन फिरतक द्रिय फिर तक एसआरडी के 1 euro भरियत उतरा पयो एगो एरो और अमेरिकन डाला है तक तक ऊपर से अधीन का बोले है बोले सूरीनाम में जितना दुकान है बोले सब पैसा तुरावे कीने है एरो डॉलर बोले चीजा बंद करे बोले सब चाहे संतराल बंश करे रे भाई जब आदमी हंदलारे जब पैसा ना पाएगा डॉलर और एरो जैसे वो अपन सामान कीन सके देशवा चला सके अपन दुकान चला सके तो वो जरूर कीनी भैया ओके पैसवा नुकद खेगा। तो यहाँ पे आप लोग को बताए द कोर्स स्टूडियो फिर तक 20 तक खाते मेन्से तो हम बोली आप लोग को बताते ही रहेंगे ताजा ताजा ताजा ताजा खबर। तो हमारे जनता हमारे प्यारे प्यारे जनता यहां बताए गए हैं सिद्रिक के बारे में आप लोग को तो बता चुके हैं कुछ नया न्यूज आप लोग को हम बताएंगे। हमारे जनता मथुरा का ओर हम जाए ना फिर यहाँ पेयर है आप लोग जानो कमिश्नर फंड पॉलिसी रहा फिर मिनिस्टर फंड डिफेंसी हुई रहा एंड टेट फंड फिर यहाँ पे रखिए ने फिर यहाँ पर ब्रिंसवेग मथुरा का बोले हैं भैया मथुरा फिन की एनडीपी नीट कॉन्सिक्वेंट इस बोले जब एनडीपी बोले मेन हेल खसेन बोले हमार हेल खसेन के बोले तू लोग क्रिमिनेला बाटे बोले नीमा था दस्तान फिन खनुमन मथुरा फिन एनडीपी नीच कॉन्सिक्वेंस तुंद एनडीपी में एंड मेन हेल खसेन क्रिमिनलाइजेर दे हिव नीमा अस्तान फिन इन खनुमन बोले है बोले बाकी अब
Bole wanneer je op NDP nu zwaar protesteert tegen de media uitspraken John VHP ke parlementariër Cedric van Samson bole zeggen ke go aurat ke president na chahi hoe ik matlab Simon ke na chahi beroe ke de NDP ke bhaiya charo bagal se garam garam hawa lage lagal hai ha jaan na chahi hawa lage ke huo hawa lage bhaiya aurat jitna NDP ke raha सब निकर निकर बहरे चल गए प्रोटेस्ट तब यहां पे काबले कृष्णा प्रसाद और काबले मथुरा बोले है जोन समय पे हम रखेरिंग में रही एनडीपी के आदमी हम बोले रहा हम क्रिमिनल हमार हीला क्रिमिनल तब उस समय पे कोई अवस्थान नहीं ला बोले आप ही सबके गरम गरम हवा लगे तू जाने हिंदुस्तान में कहीं और कुछ लग जा हम में कौन काम है बोले के उस सब मीठा मीठा बोलिया चलो तो समझदार है हम कहा बोले मांगिला वन ईयर द एनडीपी सेक्स शुल्का हार द वार्डन तब बोले दान खा एक शखन बोले कि उस अब इरलक ना है बोले 2015 में बोले है का मेन एंट्री द डेट इन द पॉलिटिक और बोले जस्ट बोले जे एनडीपी बोले हमें बोले रहा हम बहुत बड़का क्रिमिनल बाटी बोले हमार हेल हसन बोले हमार आदमी हमार बेटवा बोले सब क्रिमिनल है बोले एकर बारे बोले फॉर द रेक्टर ले गली बाटी और बोले रसी दुखी के ले गली बाटी रेक्टर ही तुन फोनस आइज कस्टेल फॉर हिर पार्लियामेंटारी रसी दुखी एनडीपीर के तुन हे निमान फन एनडीपी इन एक स्टैंडपॉइंट दारिन गनोमन इट वाज अंडर हुइडिक प्रेसिडेंट दी तुन फोरथेटर वाज फॉर द पार्लियामेंट मेन इज नॉट क्रिटिस गवेस्ट नादर एगन कोलीगा डोर टू सेगन दैट से दैट नीट हैडन मूटन सेगन Wanneer het iemand van hen is, dan zie je dat het met mantel der liefde wordt bedekt en er geen consequent bedrag is erbij. Mathura bole heiga. Aur tulun jano bhaiya NDP me hamara nikeri ke setra house me pe rasit dukhi. Ab rasit dukhi NDP ke parliament me na baithe ta bole ye admi अपन घर द्वार ना चलाई पाई पैसा ऐत ना आई पाई तो बोले आई हमसे पूछे कैसे ऐत आई पाई तो पहले भैया लूटो खाओ और दोन हो जाए तो बोली कहां से अब हम लाई तो ये बात है हमारा सूरीनाम के यारो हमारे प्यारे प्यारे जनता एक लाश एक लाइक मिलल है हाँ ओ बात बता दी भैया एगो लाइक मिलल सूरीनाम में और उ लाइक वासन में से इन ऑन बिंडिंग आन खतरोफन ये बात हुए एगो फैमिली लेट बोले लीड ओवर लीड ने और बोले हैगा फॉर आल्सनोक सेनर खीन अनवेशिकिंग की कोई ओके मारी से और एकर बारे में अंदरसुक हुए कैसे है फ्लोरा के सिपाही एकर बारे में खोजे है ते एगो घर में एगो लाइक मिलल है दोस्तों लेखाम फॉर अन फेयर खान द स्टार फॉर ऑन बिल्डिंग अनक्रोफर इन एन वोनिंग इन एन अनबाउ अबे घरवा बनत रहा जिस कंप्लीट घरवा ना रहा क्लार भइला म मालूम ना है उ घरवा कैसे रहा और कैसे ना रहा हमारे जनता हम सोचेला तो लोग के एगो हम स्पंगाना सुना दे और ये है नाचे नाचे हाँ शारदा तरी नाच लियो तू तरी नाच लियो गनवा पे स्पंग स्पंग आना तू जाने हरदम चलाइला तो पलंग सगवन के भैया केसरी जी के है।

बोले टूट जाई राजा दी, बोले पलंगिया पे का होए भैया। अच्छा टूट जाई तो देखल जाई, दूसर बेदी की नाई भैया, दूसर बेदी की नाई टूट जाई तो ये बात है। भोजपुरी सॉन्ग के बाद में हम जानते हैं हमारी जनता, हम जानते हैं और वो कहाँ है, हम जानते हैं भैया सूरीनाम में तो जानो चारों बगल जाए के आदमी पेन कर सके। हाँ सोशल मीडिया पे रखा हुआ आदमी ई जाए खेल और मतलब ना है एकवा में जा है ना है एकवा में ना है। आदमी बोले हम दौड़त दौड़त खाने के तरह तेल जाए जाए भाई खेल और दमान में पैसा ना है तो बिगड़ल है तो ई है फलान ढकान काम ना करे पैसा ना देवे। तो यहाँ पे बताए गए है कि ATM मशीन से सूरीनाम देश में हमारी जनता आप लोग को पता है, तो आप लोग को तो पता है सूरीनाम में ATM मशीन से गा और बताए गए कंस्यूमेंटन कॉन्फ्रेंटियर वार्डन ATM मशीन से फाक लीक ऑफ बेटन वर्कर में पैसे में ना रहे और ये पैसा ना रहे भैया तो टूटल रहे तो जानो है तो एक बारे में एगो बैंक कंसल्टेंट है गा और है का ट्रेंस कॉनेस गोनेस बोली से गा दैट हैड फील हेल्प कॉस ओम ATM नेटवर्क द अंडर होल्डन मशीनिया अंडर होल्ड करेंगे। बोले बहुत ढेर पैसा हम लोग के लगे है, बोले एकर बारे में बोले बहुत ढेर इन्वेस्टेर करे पड़ेगा, बोले टेक्नोलॉजी ओम बेट लाइफ में द ट्रेंड इन ऑनट्विकलिंग ATM बोले है नेटवर्क सूरीनाम के बोले है बखरेदार व्यवहार फॉर हुकिंग नो साकलक वारन तो उसे मांगेगा कॉस्ट फॉर हुक करे भाई opzichte van de internationale markt de kosten redelijk laag tegelijkertijd weet hij de samenleving to up to je yo paisa aisa pen karo bhaiya to aur jyada paisa lagi wahan bolo sabke cost bahut jabar hai to lo jano to ap koi mare ja budhiya paraniyan ho ape paisa ja paave hai aao fe aave hai to ladkan ke bole hai beta je ye sab paiswa hamar nikar laiye कारण की अप बुढ़ियन पुरनियन थोड़ो बेर बेर जाए ऑटोमैट खोजे देशवा भर में एगो में जाए टैक्सी भर के लड़कों को बोले बेटा एकवा जा तो उस सब ऋषि को ना मांगे लेवे तो एक दाय में सब आओ फी के पैसा निकाल के जे घर में धरे है तो अब उधर भैया बोले जहाँ सुकुरु है वहाँ चूटी है और जहाँ पैसा है वहाँ चोर है तो बूढ़ी वन के जाए जाए वही रूफ करे हैगा चोरवन भाई ओमदात हम लोग के ऊपर है अपन ऑनट्विकलिंग फॉर द फेल खेत में इन्वेस्टियर न करे है। तो सुनील दीप गजरी भी आ गया है आपको हम स्वागत करते हैं। अगर जो ऊपर है जितना ऑटोमात सब में पैसा धल्ले रहत हर एक भीड़ में कुछ न कुछ मुखला खेत कर ले रहे तो आदमी ना रह के एक दाई में जाए के सब पैसा निकाल के घर में धरत वन ओके ब्रेड कीने कुछ कीने कहेगा तो बेचारा कहाँ जाएगा पैसा लेवे तो सब पैसों निकाल के घर में धरे भैया तो कोई बेरी के नीचे लुको आवे कोई हियाँ लुको आवे कोई हुआ लुको आवे है तब चोर जाए के लपेट देवे भाई। दिस इज एन फंड ग्रोस्ट प्रॉब्लम इन इट लॉन्ग दी नीट इन्वेस्टेड फॉर इन द ICT in de ontwikkeling, de technologie van ons land. Mensen, bijna heel veel mensen hebben hun bankpas, dat ze daarmee ook kunnen betalen. Maar heel veel winkels, dus die namen, hoe mogelijkheid na hebben. Hier toch bij hem, de hele Albert Heijn, met 10 donnieke breed hem scan kerken lela. Ik heb bijna nooit geld. Er zijn heel veel mensen, ik werk hier mensen, op mijn werk, waar ik werk zelf, daar komen mensen hele dag geld. Betaling, ik zit in het betalingsverkeer ergens mensen. Bij mij kan je geen contant geld. Als John Dean hem op internet na hij je kuch hoige he. Dat zijn mensen in een probleem, want ze hebben geen geld. En naki छोटा मोटा आदमी बड़का बड़का आदमी लो भैया उस सब टेलीफोन लेके खाली चले हैं और टेलीफोन से स्कैन करके दिन भर उसे अपन बताल फकीर करे हैं अपन पास करे हैं आलस खाफिया ऑनलाइन में से। तो वो रमिया के जो तू चोरी करियो पड़ते मैंने या कुछ चोरी करियो तब तो के रोवे के परिवार ओमा खाली अल्बर्ट हैन एक्शन के बॉन घुसेर घुसेर धरल ले जैसे हमार जो चोरी करियो तो के रोवे के परि बोली कौन चीज उठा ले लिए वहां जैसे नोइट हेल्ड इन मेंस दैट सॉर्ट मूड दैट सॉर्ट ऑन द वीकलिंग मूड इन सूरीनाम गebeuren
dat zo'n ontwikkeling. Je moet alleen met je pas lopen en meer niet. Chori komt u hoe je het met je zo'n 1000 paisa ghar mee dharé ba. Oese paisa toch een hoofd dharé ke. Alles moet naar de bank verkeer gaan. Maar bank was je vijf na de paie jan take. Overheid toe garantie na de paie dat je 24 uur kan geld krijgen. Wanneer je nodig hebt, gaat deze probleem nooit opgelost worden. Hij na bij je zo'n heel dergadjeri. Zo is het toch. Dus ons land is nog hoeveel jaren achter. Ik heb het over Suriname mensen. Abham jij bij jou Rusland, Polen. Ke oorha. Bolle Polen heeft Russische ambassadeur ontboden. Polen. Russische ambassadeur. Ha. Oké, bolle to laude ja. To laude ja. Appendees bolle hem toke na Mangila. Om uitleg te geven om de neergestorte raket. In de nacht van woensdag, donderdag. Ik hoor raket geralha. Premier Donald Tusk. Jonwa na Trump, Donald Tusk Jonwa. Bolle hij zei al snel vermoeden. Ki Rusland ke go raket bolle hamar des mein giral hai. Bolle ekar bare mein ambassadak bolle li baati puche ke. Bolle er gaat om de Russische KH-101 raket giral ha. Ekar bare mein donderdag ke radio op zijn bolle go kruis raket giral ha. O bolle gevaarlijke om een kernkopper ha. Tusk zei al meteen ki Polen bolle ki het doelwit was van een aanval. Bolle de kruis van plaats tijdens een nacht in de zware Russische luchtaanvallen op Oekraïne. Bolle Johnson met Rusland, bolle een Oekraïne koeper, bolle kabel kruisraket, Hamardis met Gerel Heim, bolle ongeveer 90 kilometer van de grens van Oekraïne en raakte niemand gewoon door de gevonden brokstukken, kon worden wel vastgesteld, Atulonjano Bahia, Polen is EU. Polen is NAVO. Als Rusland één van de NAVO-landen gaan aanvallen, gaat de hele NAVO erop, mensen. En dan moet Rusland voorzichtig zijn. Je kan alles doen, maar ga geen NAVO-land aanvallen. Want dan gaat de hele NAVO hem beschermen. En als dat gebeurt, dan wordt het niet een kleine oorlog, maar een mega grote oorlog. तेरी बोली जोड़िया तू पूरी आके तोड़िया ना बताइले है को का तोरी तसा नाम के कोकोआ तेरी से कमती है भैया सब कराका में जराई से भैया जितना कोकोइन इन मिले ले मैं मालूम ना कोकोइन जराई से के पूरी जराई से एक पिसान जराई से भैया सोशल मीडिया पे बहुत चीज हुए है तो संगीता महेश भी आ गया है और वो है अलमेरा शहर से आपको हम स्वागत करते हैं संगीता जी तो फिर तक यार के एगो आदमी भैया बताए गए हैगा फरब्लाइव पास रहा ओके मंगलवार के नीदरलैंड में तिलबुर्ग में मिलल पकड़ान है रोटरडम के सिपाही पकड़ी से तिलबुर्ग में जाए के को फिर फिर तक यार का मन के जे के फास्ट वो जगह ना रहा एड्रेस एड्रेस ना रहा बोले हैगा बतरोकन है इन बे फॉरबरेडिंग फॉर डूइंग ऑन फूरिंग बाय ला क्रिमिनल सर्किट में द अरेस्टेशन फॉर प्लस in de kader van groot onderzoek naar de internationale cocaïnehandel. John Zuid-Amerika me bijle. Hamasa naam is Zuid-Amerika me. Apelen to jano he. Sukkerwaar ke rechtercommissaris. Ieremia ke dui hapta ke. Twee weken in de cel blijf. Zegt het OM. Bole chargo ademie ma pakraan he. 26 augustus ke. Ikerbare me. Openbare sitting he. O bataye gei hega. In opdracht van dui go Hollander Nederlander. Ego 42, 47 jaar oud. Bolle februari mee, bolle in Colombia zijn gearresteerd. Colombia me pakraan heen voor de drugshandel. In mei pakte de politie in Colombia nog een Nederlander op. Dus hamara Hollander, want een bhaiya paaige cocaïne ke maja. To is heb ke jai ke pakri sega. Colombia me hamare pyare pyare sunne walo hamare janta. Aap lo ne jano bhaiya. Nya bataye gaye hega 2 to 3 terrorism verdachten
मंगलवार के बुधवार के यहाँ बताई गई है नीदरलैंड में फॉर ओर दिल भले फॉर टेररिज्म अबले डर द फरदाख्त जो नहींगा वीकर फॉर देंगन फॉर टेररिज्म अबले जो नहीं इसे का कर ले रहा तो बातचीत ही होएगा तीनों टेररिस्ट फरदाख्त इसे दुई हफ्ता इसके पकड़ के बंद कैसे रोटरडम में और डर द वाला के सुख के लिए कमिश्नर एगो 16 बरिस के और एगो 19 बरिस के लुंडा है रात के हिसाब इन फाल के इस रोटरडम में Eindhoven में अलगमार में जाए किसी के पकड़ी से बोले बोले इन फालर वर्दन खेल वापस आंगत्रोफन वेल सेंड एंकले गेगेवंस ड्रागन इन बेस्लाग गनोमन एट इस कंक्रीट डूलवेट ऑफ मोमेंट फॉर आंस्लाग इन बील तो ये बात नीदरलैंड के बातचीत है हमारे जनता जो आपको बताना हमारा काम है बताना काम है अब देखो भैया आदमी एक मिला ओ तो लेकर रिस्टक से जाए सूरीनाम के बातचीत है भैया हीरा लतूर वेक के बातचीत है अब देखे एक मिला मांगे हबड़ा होए से बड़ा पात पे तो अब यो तो हुआ ओके रोकी जो ने अनमिया हबड़ा हो जाए ई बात हुए है क्रॉसिंग लतूर के और फ्रैंकलिन वेक के तो हुआ रैम करी सेगा जो ने अदमिया हबड़ा हो जाए मा ओकर पछुआ एगो ओ तो रहा हमें जना ओ के हास रहा तो वो तो हुआ नगे लेकर पीछे अगोरे उ इनहाल करके जाए के फूत कांगवा का मारी से भैया मु फूत खांगर के मार के अपरे पेल भागल है थोड़ा देर बाद फिर लौट के आयल है ब्लैक बेल एगो स्कौतुरा 25 बरिस के भाए स्कौतुरा ओके सिपाही पकड़ के बंद करी से बोले फूत कांगर के तू फरेद कल्ले बाटे वाना दा खेन ता एके अब कमिसारस में गए ले फॉर द रेक्टर गए ले तो कमिसारस एके फ्राई कर दी सेगा वो फेस्टक करे से उपमार मिनिस्टर अब बोलिए जॉनी कैसे हुई से कैसे जुआ तो एकर बारे में बताई गई है बोले बे अन कॉमस्ट्रोफर वेस्ट दिनार है स्लाख्टोफर अन दात खेन टेकन फन लीवर मीन फरदून मर गए रहा बोले अन इसके स्काकल बताई इसकी मर गए हैं और बोले एट इट अंडरसुक इसका ब्लेकन दात द ऑटोबस टू द कोर फन आर रेडिंग ओवर द लातूर वेग रेड हे क्वाम फन इन द रिक्टिंग फन मार्टिन लिटर कुशवेग मार्टिन लुथर किंगवेग से रिक्टिंग इंदिरा गांधी वेग जात रहा दोस्तों और बताया गया है द पुलिस ब्लिक नीत दारू पी ले रहा बकन ऑफ आंध्र बदवेलम द मिडलैंड ओकर रेप वेश्वर अहांगन दैट अंडरसुक इन गफोर्डर हे लेखा फन द स्लाख्टोफर इज नेचुरली इन बेस्लाग गनोमन अब एकर बारे में अंडरसुक होएगा का होई का ना होई तो ऐसे बेचारा मर गए भैया अरेडिंग से ये बात है हमारी जनता प्यारे प्यारे जनता बको भैया बारा चकल्लस भाई जो ही रखे रिंग में आवे भैया मिनिस्टर फॉर मेनी लांस बेनी लांस साक में बोले कम करतन लांटी लोन के कितना आदमी है अमतनार जो दुबल सलारस पावे है भाई तो मिनिस्टर ने आउट फोर्स से तरफ असेंबली मनी निश्वा भी बोले हैगा बोले फिर तीन होंदत आख्तम फिर तक आदमी के बोले सलारस हमने उन ब्लॉकेयर कर दे ली बाटी हाँ बिशक मिनिस्टर बोले है बोले हैगा फंड 2004 फे उन फिन 12 अमतनार जो सब न पावे है बोले फन 12 फन 35 तक आदमी के बोले हम लोग ब्लॉकेयर कर देली तो काहे ना 800 हुआ के और करे है बतावे है तो नी टू हेवन स्लैक नेगन दर तक आदमी बोले हम लोग के उतना ढेर में से अनमेल द करी से बोले टोटल ऊपर है इस ब्रीद आपको ऊपर मानदा में 1400 एंड 8 फेसेस लालस बोले ब्लॉकेयर कर ली बाटी बोले को ट्रायक तरह फन सलारस ब्लॉकेयरिंग के बारे में बोले हों द ट्वीन सिवे सलारस एंड ओक ब्लॉकेयर बाकी भैया ब्लॉकेयर तो तू कर ले है बाकी अरमियन के जो देव सलारस पावे है ओके तरीक वेरखंड क्रक से ना भरवइए जोन ओम तरह पैसा पाई से भैया यहां बतावे करे कि हम लोग के रखेरे 200 मिलियन एसआर दी
की पैरियार ओकर पैसा पानी में चल जात रहा रखेरिंग की और बताई गई हैगा बोले हैगा द वेस्ट मान फॉर द आन दैट इट बलै नीच कस्टूल इज ऑफ पॉपुलिज्म वार दोन इंफॉर्मेशन पास द सामलीविंग वर गदील वनेर दैट नोडिग इज और बोले यू कैन इनदर ब्लॉकेर मार दन फर्लिश ये जो रेक्सा ये मुद द प्रोसीजर इन अख नेमर एंड दैट डून वे ऑलदिस मिनिस्टर फान बिशा अरु है मनेरस फान बी oud voorzitter van onze DNA के बारे में हमारी जनता भैया जो नदमी पयाल बस पे बैठे हैं परफॉर्म वाणी का हम लोग बोली ला अब बोले इंदिरा गांधी वे और परफॉर्म वाणी का के बोले है तू लो जाने पयाल बसवन भैया बैसी गरी जहां चले वो पर से हाल करे है नानी बड़ी चकल से एकर बारे में ओमदार फीलर है परफॉर्म वाणी का हरदम और बेशफेर मांगे पैसा कमाए भैया तो बेशफेर का करे फिलोम न मांगे रहे तो बगलिया में फिच पाथ है भैया फिच पतवा पर से चलाए गए नहा करे हैं रुक लो से रे खतरा खरफान बेशफेर के बारे में तो एकर बारे में मिनिस्टर फॉर ट्रांसपोर्ट बोले हैगा बोले बारात से ऊपर फर्दर मात्रेगल ऑफ द रुक लो से रे खतरागन फॉर बेशफेर अफ द स्ट्राफन अब तुझे ये स्ट्राफ करे ईच युवा तो बड़ी दिन से हुए कैसे बोले है हीराम बोले आज द कूफर ड्रंकन इज देम एंड द पूर एंड दैट इज ऑन सलान सुरीनाम लाती के सब चीजों करे अरे जब तू प्रॉब्लम कंसंट्रेट पहले बाटे तब तो के चाहे ओप आप देखो भैया दुई वो कफरी के आंखी यहाँ बन कर ले बा फ्रेड ब्यूरोक्रेसी के बांचित हुए हमारे जनता बुधवार के और नईस एगो है और एगो हैगा 29 बरिस के दुई गो लंडन भैया फ्रेड ब्यूरोक्रेसी आमे ये सब घुसल है और जाएगा दिवताल करी सेगा ओवर खंडरा खान रिसर्च और बतावे हैगा एंड पुलिस चीफ आंखेकेवन की सब लातर मोमेंट पे जबर बिसोंदर ओवर द साग वैकेंसी वार्डन खमाक तब बताएगा काम भइले और काना भइले लातरी के बारे में सब हम बताएगा हमारे जनता हम तो लोग के बोली ला हमारे तैतवा फिन हो गए है हाँ तो जय तैतवा हो गए है तो हमें चाही गाना का बोले हैगा रोकी के तो

0: तो हमारी जनता, हमारा प्रोग्राम यहां से खत्म आने के हो रहा है और आप लोग को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हमारा प्रोग्राम सुनने को। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम और हमारा समाचार सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो हर शुक्रवार को 6 बजे हम शुरू करते हैं, मंगलवार को शाम को 6 बजे, सोमवार के दिन में 1 बजे हम हैर हाल करते हैं। बाय बाय, स्वाय स्वाय।
1: De beste Bollywood hits van toen en nu. Bij Fahon Hindustani Radio.

0: ध्यान रखना कि इनमें से कोई आगे ना। आई नो इट, लेकिन जहाँ टिकट सस्ती होती है वहाँ ये सब होता है। एनी वे चल होटल जाके डिस्कस करते हैं।
1: यार मैं अकेला रहना चाहता हूँ, कहीं दूर जाना चाहता हूँ मैं।
0: लेकिन मैं साथ में चलूँ तो प्रॉब्लम है तेरे को?
1: नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इस शोर से दूर जाना है मुझे।
0: शोर शोर अब है ही कहाँ। इट्स ऑलमोस्ट ओवर राहुल, लंदन न्यूयॉर्क ऑस्ट्रेलिया हर जगह शोज करने के बाद आज ऐसे दिन आ गए हैं कि तेरे पास ज्यादा काम नहीं है, कोई काम ही नहीं करना चाहता तेरे साथ। पास
2: राहुल जयकर को बेस्ट मेल सिंगर अवार्ड से नवाजा गया।
3: आरजे द मोस्ट पॉपुलर इंडियन सिंगर अक्रॉस द ग्लोब। आरजे का नया गाना

स्थिता नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः। हरिओम। एक ही दम भैया बीरबल के स्टाइल में कैसे रह लो आप लोग साथियों। पाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज का दुनिया के दोस्तों, स्वीकार कीजिए हम लोगों का सागर सा भरा हुआ प्यार, नमस्कार और साथ ही साथ कबूल हो फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का मोहब्बत से भरी हुई सलाम को। और आप सभी को भी हरिओम हरि बोल सत श्री अकाल। मैं हूं आप लोगों का सेवक खिदमतगार सुरेन कृष्णादत्त भगवान दीन, जिसे आप ढेर सारे श्रोतागणों आकाशवाणी के दोस्तों भैया बीरबल के नाम से भी जानते हैं। रविवार का शाम का प्रोग्राम 2 अगस्त 2020 का ये हसीन शाम और रात्रि का प्रोग्राम आप श्रोताओं के सामने लाइव ब्रॉडकास्ट है। साप्ताहिक प्रोग्राम हमारे संगीत प्रेमियों के लिए सरनामी संगीत और कुछ सरनाम के कलाकारें, कुछ हॉलैंडीज के कलाकारें खलिंग में सुरनामन तिलक मातृभूमि हॉलैंडीज के संगीत आप सुनिए। अपने लोग है जिसपे हमें नाज है, गर्व है और होना भी चाहिए। तो जहाँ पर भी हो, जिस हाल में हो, घर पे हो या तो मोटर कार में सफर कर रहे हो या तो काम कर रहे हो, दुनिया के

जो भी कुन में कार्यक्रम आप सुन रहे हैं फाहुनी हिंदुस्तानी रेडियो के फुल टीम की तरफ से आप सभी को एक हैप्पी हैप्पी संडे हैप्पी हैप्पी वीकेंड पेश है। मैं थेल्फी लाइस्टर प्लेजियर के साथ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो इस्तेबलाइस्ट्रफिया इंटरनेट के लहरों द्वारा faunfm.nl पर आप लोग दुनिया के छोटे छोटे कोने में भी 24 घंटे रोजाना लगातार फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुन सकते हो। तो जो भी रेडियो का काम आप फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान करना चाहते हो, इश्तियारे जरूरी खबरें एच सी तरह तो जरूर आप तार करें फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के दफ्तर में van maandag tot vrijdag tijdens kantooruren op de volgende telefoonnummers: kantoor 070-365-2247, oude studio Katarka nummer 070-362-2077. Quality guaranteed service के साथ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के काम आप लोगों के लिए बेचैनी से करने के लिए इंतजार में रहते हैं साथियों। En niet te vergeten, hè, onze kwaliteit is altijd uw garantie. En natuurlijk vindt u zich altijd lekkerder bij Faun Hindustani Radio, toch? En ze pijlen aan Sultan en Katien zonder programma ko sunajo amloka teamleider, de one and only maestro Johnny number one, aan Sultan ke sewa me peshki. तौर तरीक से भाई रॉय आप श्रोताओं को सदियों से सेवा करते आ रहे हैं। ये अच्छा उम्मीद है कि उनका पेश किया हुआ प्रोग्राम आप श्रोताओं को जरूर पसंद आया हुआ होगा। क्यों नहीं, उसका स्टाइल अलग है। आज के लिए तय दिल से धन्यवाद भाई रॉय जी फुल टीम की तरफ से, और आपको भी एक शुभ शाम शुभ रात्रि हैप्पी हैप्पी वीकेंड पेश है। अगर आपके घर पे खुशी का दिन मनाया जा रहा है, हो सकता है कि आपके घर पे एक बेटा या तो एक बेटी ने जन्म लिया होगा, या तो किसी के जन्मदिन आप सभी धूमधाम से मिलकर मना रहे हैं। विवाह संस्कार तो बीत चुका होगा ना, कंगन भी शायद छूट चुका होगा। जो भी खुशी के दिन आप सभी मना रहे हैं, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के फुल टीम की तरफ से आप सभी को ढेर सारे बधाइयाँ खुशियाँ ही खुशियाँ प्यार मोहब्बत के साथ पेश है। परम पिता परमेश्वर से हम सब मिलकर विनती दुआ करते हैं कि आप सभी के नेक मनोकामनाएं नेक इरादे सभी पूर्ण होते जाए। आपके घर पे दुख का घड़ी आन पड़ा है, आप एक मातम में हो गमी में, तो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो अपनी फुल टीम के साथ आपके दुख में उपस्थित है, मातम में शरीक है। औ परम पिता परमेश्वर से हम सब मिलकर विनती दुआ करते हैं कि आप सभी को सहन शक्ति और शांति प्रदान करते रहे। हिल फील्स डायरेक्ट मैं सिचुआस जो बीमार लाचार है, आपके तंदुरुस्ती के लिए हम सब मिलकर विनती दुआ करते हैं कि आप जल्द से जल्द तंदुरुस्त जाए, बेहतर हो जाए, चंगा हो जाए। नितिफ रखीत हैं, जिंदगी का मजा रोजाना लेते रहना बंधु, और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो को भी सुनते रहना, और हो सके ना तो हम लोगों के बारे में ज़रूर थोड़ा बहुत चर्चा करते रहना। फन हार्ट बीट शॉप कामयाब हुए तो हमारे फुल टीम की तरफ से आपको तहे दिल से बधाइयां ही बधाइयां। और हो सकता है कि आप कल या परसों कामयाब नहीं हुए हो, तो चिंता के कोई बात नहीं है बंधु, मोर्ख इस तकवीर दाख है। इसी तरह अपने आप पर विश्वास भरोसा यकीन सेल्फ ट्रो रोजाना जोर से जोर बढ़ाते रहना, साथ ही साथ कोशिश भी जारी रखना, तो हो सकता है ना कि कामयाबी भी जल्द से जल्द आपके कदमों को भी आकर चूम सकते हैं। देखो मेहनत तो है दौलत का यारी बंधु, नो इतब opgeven hebben we toch geleerd, hè? Thuis, op school, op je werk, overal. Never give up. Brada Nangasisa, so lobby lobby and blessings to all of you. En natuurlijk bedankt voor het luisteren. Satyo, program आगे जारी करने से पहले आप सभी को जो हमारे देश में फकांसी आया मनाने के लिए आप सभी को सुस्वागतम फेन फकांसी खनित फन नीदरलैंड एंड अलसी फॉर इट ईयर्स बैंत है मोए प्लेक ऑम टू सीन लेकर वेर फेन फकांसी। और हो सकता है कि आप विदेश यात्रा पे जा रहे हैं, वॉन्ट दिस न्यू हेलमाल फकांसी इन इट लॉन्ड फील मैं सेम वेक, तो आपको भी एक फेन फकांसी शुभ यात्रा नतीर्लक हैप्पी हैप्पी हॉलीडेज। और लोगों को कहना है कि हम लोग फकांसी एड्रेस पे तुरंत के सुनते रह ली और सुनत रहिला,
तो आप भी सुनिए फाउन हिंदुस्तानी रेडियो को अपनी फकांसी एड्रेस इंटरनेट के लहरों द्वारा इस इट मोगलिक दैट यू ओम्स कुंट लुस्तर ऑफ यू टैबलेट स्मार्टफोन ऑफ लैपटॉप. तो आप भी सुनिए हम लोगों को, सो बैंत यू एन ब्लाइव टू ऑफ अलस ऑफ द होगते फन अलस ऑफ द होगते हैं फन यू फाफोरी रेडियो स्टेशन एंड दैट इज नट्यूल हमारे दैन हाँ शेर का दवान एंड ओनली फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो 24 आवर्स एट योर सर्विस मिगुदू. साथियों प्रोग्राम का शुरुआत तो मैं सदियों से करते आ रहा हूँ वही शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान के साथ फ्रॉम द मूवी ललकार कंपोज बाय द ब्रदर्स कल्याण जी आनंद जी और हमेशा की तरह आप सभी को सुनाने को जा रहे हैं सुरों का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी कि आज गालो मुस्कुरालो महफिल सजा लो क्या जाने कल कोई साथी छूट जाएगा जीवन के डोर तो बड़ी कमजोर है यारो ये कब टूट जाएगा ये कब समाप्त हो जाएगा ये तो सिर्फ ऊपर वाले को मालूम है ना. इसलिए हम लोग तो आप सभी से सदियों से यहाँ से कहते रहते हैं और सदा कहते ही रहेंगे कि हैव टू नस्ट ऑल दैट लीफ एंड मेंस फ्रेंड फैमिलीज अंदर एलकार कंधे से कंधे मिलाकर भिड़ाकर लगाकर आगे को बढ़ना है साथियों खुद को आगे को बढ़ाना है देश को भी आगे को बढ़ाना है को भी आगे को बढ़ाना है. तो ये शिक्षा सबक से भरा हुआ बयान के बाद आप सुनेंगे साप्ताहिक प्रोग्राम हमारे सरनामी संगीत का. पहला अध्याय में कुछ बैठक गाना, दूसरा अध्याय में कुछ सरनामी इंडियन पॉप म्यूजिक और तीसरा अध्याय में ओनली सुपर हिट सॉन्ग्स फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री कुछ नए नए सॉन्ग्स. तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना. बीच में कुछ ज्ञान के बातें है शेर शायरी भी है. तो कुल मिलाकर हमारा और आपका साथ तकरीबन 8 बजे रात्रि तक चलेगा. तो जहां पर भी जिस साल में प्रोग्राम को जरूर सुनते रहना मजे लेते रहना. स्टूडियो की तरफ जब मैं आ रहा था तो तापमान जबरदस्त है बहुत ही मधुर है दैन हाक्षर का तकरीबन 26 डिग्री के दरमियान है. तो लेकर वेर है और शाम है जाम भी है आप भी है तो जबरदस्त प्रोग्राम लेकर आया हूँ. अपने लोग है इस सरनामी संगीत से एंजॉय कीजिए. लेकिन उससे पहले रफी साहब हमेशा की तरह

मुस्कुरा लो, महफिलें सजा लो, हमेशा की तरह प्रोग्राम का शुरुआत रफी साहब जी के मधुर आवाज में। तो साथियों, आज का इस हसीन शाम जो आप सभी के नाम पे है, मैं शुरुआत करने वाला हूँ हमारे सुरिनाम देश का इंटरनेशनल कलाकार, बैठक गाना का महा महा गुरु, द वन एंड ओनली मैस्ट्रो रॉबी उदित राम जी के ब्यूटीफुल आवाज में आप सुनिए प्रीत के रीत न जान सकी।

उस्तादों का उस्ताद और हमारे सुरीनाम देश का इंटरनेशनल कलाकार बैठक गाना का महा महा गुरु द वन एंड ओनली उस्तादों का उस्ताद माएस्ट्रो रॉबी उदित राम जी। 16 मिनट गुजर चुका है 5:07 और रविवार का शाम का साप्ताहिक प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और आप चुन हैं डैन हाशर का फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर। अगला बयान एक जबरदस्त सॉन्ग है खौव ओवर ओरिजिनल सॉन्ग डोर मैस्ट्रो उस्तारो का उस्ताद श्री रामदेव चैतू जी एनाख सॉन्ग डोर या द वन एंड ओनली द लायन ऑफ बाइट गाना फ्रॉम द हेग मैस्ट्रो देवेंद्र सिंह शिवनाथ जी रोज देखिला। Enjoy it!

एकदम शाबाश शाबाश शाबाश उस्तादों का उस्ताद मैस्ट्रो देवेंद्र सिंह द लायन ऑफ बैठ गाना फ्रॉम द हेग सिटी के ब्यूटीफुल वॉइस में आप सुन रहे थे। 20 मिनट गुजर चुका है साथियों, 5 बजकर और आप चून है आप ही का मनचाहा रेडियो स्टेशन पर हमारे दैनाक्षर का फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो तबलाइस्त्रफिया इंटरनेट के लहरों द्वारा फाहुन FM.NL पर। अगला बयान एक और जबरदस्त गाना है, खास करके जो सीजन चल रहा है विवाह संस्कारों का, तो ये नगमा आप सुनिए और खास करके सभी दुल्हनियन के लिए।

शाबाश शाबाश मशहूर गाने वाली हमारे श्रीनामदेस ऑल इंडीज के उस्तादीन बैठक गाना और चटनीस का दवान डोली बिजावती चैतू जी के ब्यूटीफुल आवाज में ये शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान आप श्रोताओं सुन रहे थे। 4 मिनट रह गया है साथियों 5:30 रविवार का शाम का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं जोर तोर से सरनामी संगीत कुछ बैठक गाना।

प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं साथियों, और देखा जाए एक और जबरदस्त गायक को लाते हैं प्रोग्राम में, जो काफी दिनों काम कर रहे थे रेडियो अमोर में, ओकन गोगार नातिलक रॉबी गोगार। एक जबरदस्त गायक है हमारे सुरीनाम देश हॉलैंड देश का, और एक जबरदस्त ओम रूपर भी है साथ ही साथ। तो उन्हीं का उन्हीं के ब्यूटीफुल आवाज में आप सुनिए मेरे नैना, खुशामदोर माएस्ट्रो रॉबी गोगार।

Wijsje Den Haag circa Monsieur Ganiwali oude de Melody Queen uit de jaren 80, de one and only mevrouw Indra Ramcharanji. Music by the semi-classical group Ishara onder leiding van Rajkumar Lakshmanji. उन्नीस मिनट रह गया है छह बजने में साथियों. अगला बयान जबरदस्त सॉन्ग है और लाते हैं प्रोग्राम में मशहूर गाने वाला हमारे सुरीनाम देश फॉरेन देश का माएस्ट्रो राजू शिव गुलाम बैठक गाना का ऑल्सो एक महा महा गुरु और वो सुनाते हैं तू तो करिया रे काजल.

अवश्य उस तरु का उस्ताद और बैठ गन का एक महा महा गुरु श्री राजू शिव गुलाम जी के ब्यूटीफुल आवाज में आप श्रोताओं ने ये अति सुंदर बयान को सुना। अगला बयान एक और जबरदस्त गायक है हमारे सूरीनाम देश का सुनील सा राम सुंदर जी के ब्यूटीफुल आवाज में ये अति सुंदर बयान आप सुनिए बैठक गाना स्टाइल में। मेरा सुंदर सपना बीत गया। श्रोताओं को मालूम होना चाहिए कि ये एक लाइव रिकॉर्डिंग है। एंजॉय द म्यूजिक रेक्स रिक्स फनेट ऑन्स हेरलक एंड वर्मलांत सूरीनाम।

शाबाश शाबाश जबरदस्त गायक हमारे सूरीनाम देश का ढवाने डोली माएस्ट्रो सुनील राम सुंदर जी के ब्यूटीफुल आवाज में थी सुंदर बयान आप सुन रहे थे लाइव रिकॉर्डिंग। तो साथियों घड़ी की तरफ देखता हूं तो 10 मिनट बाकी है 6 बजने में और आप चून है आप ही का हैप्पी हैप्पी स्टेशन दनहाशर का वन एंड ओनली फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो साप्ताहिक प्रोग्राम सरनामी संगीत का आप सुन रहे हैं। पहला अध्याय में हमेशा की तरह कुछ बैठक गाना और दूसरा अध्याय में कुछ इंडियन सरनामी पॉप म्यूजिक। तो पहला अध्याय का ये आखिरी बयान आप सुनिए हॉलैंडिस का जबरदस्त गायक डिडोर्ख ब्रोकस इन द यारे 90 और बिलोंग टू द खानदानी फैमिली नेचुरली फैमिली रामबरन इट वेल कदरसे यूएटेड है सिन रामबरन जी का निफ्या है एंड फादर फन जी आर रामबरन नेचुरली टॉप सांगरेस मोमेंटल फन हॉलैंड मिलकर सुनते हैं अनूप राम बरन जी का ये बैठक गाना स्टाइल रोई रोई अखिया अ ग्रेट सॉन्ग स्पेशल।

0: शाबाश मशहूर गायक हमारे हॉट इंडीज का, और रोटरडैम शहर में रहते हैं ये लोग। वीत द चेरी ओक द फादर इज फाउंडेड बरुंद संगरेस जिया राम जरन एंड नेचर फन सेन राम बरन नतीले। तो साथियों, 4 मिनट रह गया है 6 बजने में। यहीं तक था हमारा पहला अध्याय सरनामी संगीत का, जो समाप्त होने को आया। अभी आप विज्ञापन सुनिए, देश विदेश का समाचार, उसके बाद दूसरा अध्याय सरनामी, जैसे आप बोलिए। हम लोग तो बोलते हैं सरनामी संगीत, कोई बोलते हैं हमारे सुरीनाम से म्यूजिक, मार अतिस बेच सुरीनाम से हिंदुस्तान से म्यूजिक, व्हाट ऑन से फोर ऑर्डर्स आइट India hadden meegenomen 1873, hè? Dholak, harmonia, dhantaal. Dat is nu uitgebreid met nog een paar andere instrumenten. To saathiyo, dusra adhyay ke aap zarur wait kijiye, tab tak aap ye suniye. Dat is ook belangrijk, hè? World news. Break ke baad milta hoon, saathiyo, kahin jana mat.
1: Vanuit Den Haag. Radio.
2: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Nederlandse agenten helpen al 6 jaar op rij Belgische collega's in Knokke-Heijs met overlast door Nederlandse jongeren. Jeugdagent Maureen Wildvank uit het Gooi spreekt jongeren proactief aan. De samenwerking leidt tot minder vechtpartijen, minder openbare dronkenschap en minder vernielingen. Ten westen van Athene zijn 2 blushelikopters op elkaar gebotst en neergestort tijdens het blussen van een natuurbrand bij Psata.

फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का रविवार का रात्रि का प्रोग्राम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। 2 अगस्त 2026 का रात्रि का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर्स जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम कार्यक्रम में। एंड नैचुरली वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स ससुर लोबी लोबी ऑन ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू एंड नैचुरली बदांत फॉर हेट लुस्टरन। घड़ी की तरफ देखता हूँ साथियों, तो 2 मिनट गुजर चुका है 6:00। जो भी रेडियो का काम हो, खास फरमाई से जरूरी खबरें इस तिहारे डैंक ऑन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो किफायत सस्ते दम सर्विस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश होना आप मात पर हम लोग बनाकर और जितने बार आप चाहेंगे उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे, और ये भी किफायत सस्ते दाम में। मैं तो सदियों से यही आप सभी से कहते आ रहा हूँ कि फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो से अव्वल और सस्ता पता आप श्रोताओं को हॉलैंड देश भर में नहीं मिलेगा यारो, आजमा कर तो देख। सभी जानकारी बेल फन मांडा टू फ्रेडा टाइडेंस कंटोर यूरो ऑफ द फॉलोइंग टेलीफोन नंबर्स कंटोर 07-362-2047 और स्टूडियो कतार का नंबर है 07-362-2077। जो भी रेडियो का काम होना डैंक ऑन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। इवेंट फन हार्ट वेलकम नेचुरली।

Bent u nog geen lid van Vagun Hindustani Radio? To guzaris binti nivedan kiya ja raha hai ki aap bhi jald se jald Vagun Hindustani Radio ka member bane aur ro ko bhi banaye. आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है. रिसेंट नहीं तो यार खरीद अलवर हैबो ओंस कराओक क्लबje van Vagun Hindustani Radio opgericht onder leiding van maestro Chandrasen Gangaji, die ons twee keer per maand aan het opleiden is. En we hebben al een paar keertjes opgetreden en heel veel goede respons. तो अभी आकर जो हम लोगों का छोटा सा मोटा सा Vagun Hindustani Radio का परिवार बनते जा रहा है, जो काफी बड़ा हो चुका है, आप भी आकर उसमें शामिल हो सकते हैं. आप मेंबर बनिए Vagun Hindustani Radio का और आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है. सभी जानकारी बेल ऑप 070-365-2247. Dan wordt hij automatisch doorverbonden naar onze teamleider, de one and only maestro Johnny Number One. To abhi jald se jald Vagun Hindustani Radio ka member bane aur ook ko bhi banaye. En natuurlijk, iedereen is van harte welkom. हम लोगों के बारे में चर्चा करते रहना यार, रिक्लाम बनाते रहना, क्योंकि आप लोग है तो हम लोग भी है. और इसके लिए हमारे फुल टीम की तरफ से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद. वादा के मुताबिक लेकर चलते हैं साथियों आप सभी को हमारे दूसरा अध्याय सरनामी संगीत का. तो कुछ बॉम्बास्टिक होने वाला है ना, मौसम भी बहुत ही मधुर है दनहांग शहर का. और जहां पर यू जिस हाल में आप भी हो, Vagun Hindustani Radio आप सभी को याद करते हैं और फुल टीम की तरफ से आप सभी को एक शुभ रात्रि, हैप्पी हैप्पी वीकेंड. और जरा दिल को थाम लीजिए, क्योंकि आप सुनेंगे एक ट्रेडिशनल सरनामी बैठक गाना. लोग काफी दूर पहुंच चुका है एआई टेक्नोलॉजी से, संगीत तो बनते रहते हैं. और अब पूरा जो बनाया जा रहा है संग अलस वॉटनी डोर कंप्यूटर खमाक्त डोर बपाल दिशिकंत डोर कुंस्मातिक इंटेलिजेंसी मेर बकेंद्रास आई टेक्नोलॉजी. तो ये नगमा तैयार किया गया है, एक सरनाम भाई ने बनाया है. और सुनिए कि कितना जबरदस्त जबरदस्त संगीत है. हेल लुक ऑन नॉट लाइस्टर मैं वेटिंग दैट अलस डू द कंप्यूटर इज gemaakt door een iemand. तो मिलके सुनते हैं नजरिया ना लागे रे. इट इज हेल मोय gemaakt natuurlijk en dit wordt dan de toekomst, hè, echte kunst. En ja, dit is dan een beetje nepkunst, hè.

0: क्या बात है, नाइजेरिया ना लागे रे, ट्रेडिशनल सरनामी बैठक गाना। और ये बनाया गया है दोर कुंस्मातख इंटेलिजेंसी मेरबकेंटल्स आई टेक्नोलॉजी। कौन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन है साथियों, जोर तोर से आप सरनामी संगीत सुन रहे हैं। कुछ भड़कती हुई सॉन्ग्स सेलेक्ट किया हूँ शुरुआत में, तो ये अति सुंदर बयान सुनिए जो मिलके गाए हैं महान गायक श्री सेन रामबरन, साथ दे रहा है उनका द ग्रेट सिंगर रैपर माएस्ट्रो मैनो, सुरियामी लोकल सॉन्ग हाथी के दांत भैया।
1: ता सुनिला

Zo'n hit hier door Sing Rambren en Menno. Zo'n minuut weet dit hoe je kan zijn, Sathio, Che Bachkar. En Jor Toursi Sharanami Sangeet chal rahe hai. En aap chun hai Fahun Hindustani Radio per Ravivar ka Ratri ka program. En kuch अब सुनिए एक जबरदस्त कलाकार इंटरनेशनल कलाकार ऑल्सो हमारे सूरीनाम देश का जबरदस्त गायक जिसे हम मिस्टर के फ्रॉम सूरीनाम के जानते हैं द ग्रेट कवीश कालकाजी को लाते हैं प्रोग्राम में और वो सुनाते हैं आप सभी को कुछ इस तरह अपने अंदाज में

जबरदस्त गायक जिसपे मैं नाम से गर्व है और होना चाहिए। आप तो सुन चुके हैं क्या गाता है ये नौजवान कविश कालका जी। अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं साथियों, एक जबरदस्त सॉन्ग है न्यू न्यू न्यू नतुलक फन उस्तादों का उस्ताद और हमारे सुरीनाम देश का इंटरनेशनल कलाकार द ग्रेट क्रिस राम खेलावन जी का बिल्कुल नया सॉन्ग है पायलिया। एंजॉय द म्यूजिक।

शाबाश, बिल्कुल नया सॉन्ग उस्तादों का उस्ताद इंटरनेशनल कलाकार हमारे सुरीनाम देश का मैस्त्रो क्रिस राम खेलावन जी का। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन है रविवार का रात्रि का साप्ताहिक सरनामी संगीत का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। घड़ी की तरफ देखता हूं तो 3 मिनट बाकी है 6:30 बजने में। अगला बयान एक और जबरदस्त सॉन्ग है क्रिएटेड बाय आई टेक्नोलॉजी कुंस्नातह इंटेलिजेंसी न्यू लाइफ बैठक गाना इंडो कैरेबियन फोल्क सॉन्ग क्रिएट डोर द कंप्यूटर आई टेक्नोलॉजी।

क्या बात है, शाबाश शाबाश पायलिया बोले रे, अति सुंदर बयान क्रिएटेड बाय हमारे सूरीनाम और कुछ कैरिबियन के नौजवानों ने मिलके तैयार किया है और कह दिया है इंडो कैरिबियन फोक सॉन्ग क्रिएट डोर आई टेक्नोलॉजी, कुंस्मातिक इंटेलिजेंसी, अलस गमाक डोर कंप्यूटर्स, नतुलिक मेट आई टेक्नोलॉजी। दो मिनट गुजर चुका है, 6:30 बजकर।

वक्त हो चुका है साथियों कुछ शेर शायरी हो जाए ना हमारे शेर्स के चाहने वालों के लिए। अर्ज किया है यारो भाई भूपिंदर जी ने कि एक तलवार की कीमत होती है उसकी धार से, एक तलवार की कीमत तो होती है उसकी धार से, इंसान की कीमत होती है उसके व्यवहार से। तुम्हारी दुनिया से चले जाने के बाद हम तुम्हें हर एक तारे में नजर आया करेंगे। तुम हर पल कोई दुआ मांग लेना, तुम हर पल कोई दुआ मांग लेना, और हम हर बार टूट जाया करेंगे फालंदस तेरे की तरह। मैं एक ही गुना बार बार क्यों करती हूं, हर दुआ में उसे ही याद क्यों करती हूं। ऐ खुदा जब वो बना ही नहीं मेरे लिए तो मैं उसे ही इतना प्यार क्यों करती हूं। इसी को तो कहते हैं प्यार यार। ख्वाहिश ऐसी करो कि आसमान तक जा सको, दुआ ऐसी करो कि खुदा को पा सको। यूं तो जीने के लिए पल बहुत कम है, यूं तो जीने के लिए पल बहुत कम है, जियो ऐसे कि हर पल में जिंदगी पा सको। ना मैं तुझे खोना चाहता हूं, ना मैं तेरी याद में रोना चाहता हूं। जब तक चल रही है मेरी सांसें, जब तक चल रही है मेरी सांसें, तुझे ही याद करके जागना और सोना चाहता हूं। दिल से दिल की दूरी नहीं होती, काश कोई मजबूरी नहीं होती। आपसे अभी मिलने के तमन्ना है, आपसे तो अभी मिलने की तमन्ना है, लेकिन कहते हैं ना किसी की हर तमन्ना पूरी होती है, किसी की तमन्ना सभी के तो पूरी हो जाते हैं लेकिन कोई कोई के ना पूरी होवे। तो भी आप कुछ शेर से सुने, कोशिश करूंगा आगे के प्रोग्राम में कुछ और सुनाने को। स्टे ट्यून ऑन, आप ही का तो आवाज है, जनता का आवाज है, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज है। अब जरा आप लोग दिल थाम लीजिए क्योंकि अब मैं ला रहा हूं प्रोग्राम में आप ही का जाना माना हुआ और पहचाना हुआ आवाज, उनसे टॉप अमरूपर फन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो डवानी माएस्ट्रो अनिल सरजू जी के ब्यूटीफुल आवाज में ये अति सुंदर बयान, शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान आप सुनिए। मुकेश जी का गाया हुआ नंबर, लेकिन हमारे भाई अनिल सरजू भी क्या गाता है आप खुद सुनिए और फैसला कीजिए। ब्यूटीफुल सॉन्ग, संसार है एक नदिया, आशीर्वाद नम ब्रो।

मशहूर गाने वाला हमारे सूरीनाम देश हॉलैंड देश का और हम लोगों का अपना यारों का यार कोलीखा भाई फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो अमरूपर फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो उस्तादों का उस्ताद माएस्ट्रो अनिल सरजू जी के ब्यूटीफुल आवाज में थी सुंदर बयान आप श्रोताओं सुन रहे थे। 20 मिनट बाकी है साथियों साथ बजने में और अगला बयान एक और जबरदस्त गायक हमारे सूरीनाम देश का मशहूर गाने वाला फ्रॉम द म्यूजिक फरमासी द स्टार्स जेमी और रायन जेमी राम बरन और रायन को लाते हैं प्रोग्राम में और वो सुनाते हैं एक जबरदस्त भांगड़ा मिक्स गोरे रंग। एंजॉय

Shabash, shabash, from the music formatie, the stars from Suriname, Jabardast Gayak, Jamie Rambaran aur Ryan ke saath milke yati sundar bayan gaye hain aur kya Jabardast arrangement the stars music formatie ka. Paramit reh gaya hai. साथ बजने में साथियों, अगला बयान एक और जबरदस्त गायिका हमारे सूरीनाम देश का मशहूर फीमेल सिंगर फरानास चिराग अली जी को लाते हैं प्रोग्राम में और वो सुनाते हैं अन खौ औ फन द ग्रेट संग्रेस आउट इंडिया दी देश जब बंटवारा हुआ तो चली गई थी ना एक फिल्म अनमोल घड़ी हेल और फिल्म 1946 नौशाद जी का ओरिजिनल सॉन्ग है और ये गाना ओरिजिनल गाए हैं महान गायक आईडियर 40-50 द हेयर सुरेंद्र और द ग्रेट मलकाय हुस्न मलकाय संगीत नूर जहां जी का गाया हुआ है इतनी सुंदर बयान और ये सुनिए आप इन मॉडर्न यश गसंग दोर हेल टैलेंटफुल सिंगरेस एट सुरीनाम फरानास चिराग अली फ्रॉम द म्यूजिक फॉर्मेशन रॉयल्स म्यूजिक बैंड 2K26 लाइव रिकॉर्ड.

लेने वाला नगमा आप सभी को सुनाई, हमारे सुरीनाम देश का मशहूर गाने वाली फरहनाज अली फ्रॉम द म्यूजिक फरमासी रॉयल्स म्यूजिक बैंड 2K26। रेडियो पे आप चुन है साथियों, और रविवार का रात्रि का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं, और पहला और दूसरा अध्याय हमारे सरनामी संगीत का जो समाप्त होने को आया। 5 मिनट बाकी है 7 बजने में साथियों, तो अभी आप विज्ञापन सुनिए, देश विदेश का समाचार, उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। तो सिर्फ नए नए सुपरहिट सॉन्ग्स फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री, तो स्टे ट्यून ऑन, आप ही का तो आवाज है, जनता का आवाज है, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज है।

फागुन हिंदुस्तानी रेडियो का रविवार का रात्रि का प्रोग्राम हम श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। 2 अगस्त 2026 का ये रविवार का रात्रि का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम था कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम कभी सुन रहे थे आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम कार्यक्रम में। नतुलक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स नतुलक फोडालमासोलोबिलोबियन ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू एंड बेडंक्ट फॉर हेट लाइस्टरन। पूरे सात का वक्त हो चुका है यार, तो जो भी रेडियो का काम हो खास फरमाई से इश्तिहारे जरूरी खबरें डैंक ऑन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो किफायत सस्ते दाम सर्विस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश होना मार्ग पर हम लोग बनाकर और जितने बार आप चाहेंगे बंधु उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे और ये भी किफायत सस्ते दाम में। मैं तो सदियों से यही कहते आ रहा हूँ आप सभी से कि फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप श्रोताओं को हॉलैंड देश भर में नहीं मिलेगा यारो। आप लोग आजमा कर तो देख, सभी जानकारी इसके बारे में आप तार करें फरमान रखते फ्रेडा टेनिस कंतोर उर op de volgende telefoonnummers: kantoor 070-365-2247, of Studio Kadarka nummer 070-362-2077. Job hier radio kakam hona, denk aan Fahon Hindustani Radio. U bent van harte welkom. इसी तरह हम लोगों के बारे में रिक्लाम बनाते रहना यारो, थोड़ा बहुत चर्चा करते रहना और हो सके तो थोड़ा बहुत ढंढोड़ा भी पीट देना, क्योंकि आप लोग हैं तो हम लोग भी है ना। और इसके लिए हमारे फुल टीम की तरफ से आप सभी को तह दिल से धन्यवाद। कंटिन्यू खालिद फन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो, तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और ओ को भी बनाए, आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। En we hebben ook onze eigen karaoke clubje waar heel veel zangers en zangeressen, de omroeper en omroepsters live voor jullie gaan zingen. We hebben al een paar optredens achter de rug en het is heel goed ontvangen. We worden Jortorse opgeleid door maestro Chandrasekhar Gangaji. Wat onze haai op zijn leeftijd nu nog laat horen. My God, God bless him. Door volg onze social media van de omroepers en ook van Fahon Hindustani Radio. Dan ziet u zeker waar wij binnenkort live voor u gaan optreden. Dan bent u ook van harte welkom hoor. Door aap bij Fahon Hindustani Radio ka member bene. औरों को भी बनाए, सभी जानकारी इसके बारे में आप तार करें अपने 070-365-2247, dan wordt die automatisch door verbonden naar onze teamleider, de one and only maestro Johnny number one. 10 minuut guzer chukai saat bachkar aur warake mutabik srif kuch Nene super hit songs from the Bollywood film industry. Ek digbar just gayak ko late hai program mein the great Roop Kumar Rathore met zijn mooie diepe stem aap sabhi ko sunane wala hai. Maula mere maula ki aapke aankhe kitni khoobsurat hai. Mahan sangeetkar the great music director Mithun

दिल को हिलाकर और झकझोर के रख दिया ये अति सुंदर बयान ने आज की रात फ्रॉम द सुपरहिट मूवी स्त्री टू तमन्ना भाटिया का ये अति सुंदर और जबरदस्त मूवी राजकुमार राव जी के साथ। और देखा जाए क्या अल्फाजे है अमिताभ भट्टाचार्य का और द ग्रेट कॉम्पोजर्स सचिन और जिगर जी का ये संगीत था। गला तो क्या बात है देखते रह जाएंगे आप, मलकाए हुस्न मलकाए संगीत द ग्रेट मधुबंती बख्शी जी का। पावन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन है यारो और जोर तोड़ से कुछ नए नए सुपर हिट सॉन्ग्स मैंने सेलेक्ट किया है। मधुर मौसम है ना और वीकेंड भी धीरे धीरे अब समाप्त होने को आ रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि आप सभी को कुछ सुनाते रहूं और हिलाते रहूं। ये भी एक बिल्कुल नया सॉन्ग है इन न्यू याचर कोई शहरी बाबू इस जमाने के मशहूर गाने वाली द ग्रेट श्रुति राणे जी के ब्यूटीफुल आवाज में आप सुनिए ये अति सुंदर बयान को। लेटेस्ट सॉन्ग

0: ब्यूटीफुल सॉन्ग लेटेस्ट सॉन्ग सुनाई आप सभी को द ग्रेट श्रुति राणे फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन है साथियों। रविवार का रात्रि का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। 8 मिनट बाकी है 7:30 बजने में। मौसम तो बहुत ही मधुर है दनहा शहर का। अगला बयान एक और जबरदस्त गायक हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का और देखा जाए फ्रॉम द मलिक फैमिली अरमान मलिक जी को लाते हैं। ब्यूटीफुल आवाज का मालिक जो कितने सुपरहिट गाने बना चुके हैं अपने भाई अमाल मलिक जी के साथ। एंड हियर नोक एंच मैं रहूं या ना रहूं। और श्रोताओं को मालूम होना चाहिए कि ये गाना तकरीबन 468 मिलियन केर और बकेकेस अब से ओक एन ग्रोट रिकॉर्ड मैं रहूं या ना रहूं द ग्रेट अमाल मलिक।
1: हमेशा करता रहूंगा।

बार सोचा, कह दूं कि फ्रेंड नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड है तू, पर सपने टूट जाने का डर कभी दिल से गया ही नहीं।

0: Mama, coming.
1: Come.
2: Come on, my boy.
0: Coming, Papa.
1: David को bye बोला.
0: Bye, David. Story अभी बाकी है.

इमरान हाशमी का ये ब्यूटीफुल मूवी और संगीतकार अमाल मलिक के क्या साज है, गाने वाला उनका भाई द ग्रेट सिंगर इस जमाने का अमाल और अरमान मलिक का जादू आप सुन रहे थे। पावन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप जो नहीं साथियों, रविवार का रात्रि का प्रोग्राम श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। पूरे 7:30 का वक्त हो चुका है और एक जबरदस्त सॉन्ग आप सुनिए, म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम के साज है, अमिताभ भट्टाचार्या के अल्फाजे और गाने वाला है इस जमाने का डेग्रेट सिंगर दर्शन रवाल अंत भूमि त्रिवेदी। मिल के सुनते हैं ढंढोरा बाजे रे, क्या बात है, जरा और जोर से पिटिए छा ढंढोड़वा।

शाबाश, क्या बात है, जबरदस्त सॉन्ग, ढिंढोरा बाजे रे, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी मूवी में से निकाला हूँ। महान संगीतकार प्रीतम चक्रवर्ती जी का साज और अल्फाजे था अमिताभ भट्टाचार्य जी की। गाने वाले हैं दर्शन रावल और भूमि त्रिवेदी। धीरे धीरे वक्त भी करीब आ रहे हैं साथियों, 5 मिनट गुजर चुका है 7:30 बजकर, तो कुछ आखिरी शेर हो जाए ना आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में, कुछ ताजे ताजे भेज दिया है यारों का यार, जो काफी सालों से मेरे लिए लिख लिख कर भेज देते हैं ना, भाई भूपेंद्र जी डायरेक्ट फ्रॉम बम्बई सिटी, मुंबई सिटी। किया है साथियों की दिल को दिल से जुदा ना कीजिए, जरा सोच समझ कर फैसला कीजिए, अगर आप जी सकते हैं हमारे बिना, अगर आप जी सकते हैं हमारे बिना, तो बस हमारे मरने की दुआ कीजिए। मेरे मरने पर तो रोने वाले बहुत है, कोई ऐसा चाहिए जो मेरे रोने पर मरने की बात कर जाए, हम साया बनकर रहे वो मेरा, यानी खादिव बनकर रहे वो मेरा, हर पल हर कदम पर मेरा साथ निभाए। सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं यारो, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो किनारे बदल जाएंगे। अश्क टपक जाते हैं रोने से पहले, अश्क यानी आंसू टपक जाते हैं रोने से पहले, सपने टूट जाते हैं सोने से पहले, सब कहते हैं कि इश्क एक भूल है, सब कहते हैं कि इश्क एक भूल है, काश कोई रोक लेता ये भूल करने से पहले। ना कोई ख्वाहिश है ना कोई चाहत है, ना कोई ख्वाहिश है ना कोई चाहत है, रहे हर पल खोए तुझमें अपनी तो खुदा से यही फरियाद है। आखिरी शेर साथियों आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में, ख्वाब सच हो तो मंजिल भी मिल जाती है, याद भी अक्सर तस्वीर में ढल जाती है, कुछ मांगो अगर तो सच्चे दिल से मांगो, क्योंकि एक दुआ से तकदीर बदल जाती है। क्या बात है। तो साथियों भी आप कुछ आखिरी शेर सुने आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और इस बार जरा दिल को थाम लीजिए, दो जबरदस्त गाने वाले हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का, इस जमाने का द ग्रेट पापों, क्या आवाज का मालिक है और साथ दे रही है मलकाए हुस्न और मलकाए संगीत, द ग्रेट मधुबंती बख्शी, धागे ये गाने का बोल है, म्यूजिक कंपोज किया गया है और शमीर टंडन और अल्फाजे है महान लेखक समीर और अंजान जी का, मिल के सुनते हैं ये जबरदस्त सॉन्ग, क्या बात है।

म्यूजिक डायरेक्टर शमीर तंदन और आवाजें था महान गायक द ग्रेट पापों और मधुबंती बख्शी जी का। अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं और घड़ी की तरफ देखा जाए तो वक्त भी धीरे धीरे करीब आ रहा है। 18 मणि टड़े गया है यारो 8 बजने में, तो जरा ये जबरदस्त सॉन्ग आप लोग सुनिए। ब्यूटीफुल सॉन्ग इस जमाने का बनाया हुआ संगीत है।

Beautiful song, wonderful song. विकी कौशल का ये ब्यूटीफुल सुपरहिट मूवी में से निकाला हूँ ये थी सुंदर बयान. गाने वाला करण औजला और ये नगमा को वो खुद लिखा है, संगीत दिया है इस गाने में. या मिल के देखा जाए करण औजला का खुद का ये संगीत. तो साथियों गर्मी का मौसम है, स्टूडियो में काफी गर्मी हो चुका है. वह बनत एक वार्म हीरोर और बहरे तो मैं जब आ रहा था स्टूडियो की तरफ तो तापमान तकरीबन 26 डिग्री का था. तो धीरे धीरे वक्त भी करीब आने लगा है आप सभी से विदा लेने को. लेकिन उससे पहले आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में ये आखिरी बयान आप सुनिए. जबरदस्त गाने वाली जमाने का द ग्रेट जैसलीन रॉयल और स्टेबन बेन जी के आवाजों में ये अति सुंदर बयान आप सुनिए. म्यूजिक कंपोज बाय जैसलीन रॉयल और अल्फाजे है प्रिया सराया और आदित्य शर्मा जी का. साहिबा इज द सॉन्ग्स नेम.

श्रोताओं की सेवा में पेश किया गया और ये भी खास करके फाहून हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से आप रविवार का रात्रि का प्रोग्राम सुन रहे थे। तो धीरे धीरे वक्त भी करीब आ गया है जो नगमा अब भी मैंने चलाया साहिबा म्यूजिक कंपोज अरेंज्ड बाय जसलीन रॉयल और ये गाना वो भी मिलके स्टेबिन बेन के साथ गाई है। लिखा है प्रिया साराया और आदित्य शर्मा जी ने ये ब्यूटीफुल सॉन्ग को। तो साथियों वक्त भी धीरे धीरे करीब आ गया है आप सभी से विदा लेने को। 8 मिनट रह गया है 8 बजने में। तो यही तक था आज का मेरे हिस्से का कार्यक्रम जो समाप्त होने को आया। ये आशा उम्मीद लेकर घर को जा रहा हूं साथियों कि जिस तौर तरीके से मैं कोशिश किया आप श्रोताओं को सेवा करने में ये आशा है यही उम्मीद है कि मेरा पेश किया हुआ प्रोग्राम आप सभी को पसंद आया हुआ होगा। हमारे बात आप सभी को सेवा करने वाला है साप्ताहिक प्रोग्राम लेकर वन एंड ओनली मैस्ट्रो चंद्रसेन गंगा जी। तो हमें आप सभी इजाजत दे अगर कुदरत ने साथ दिया तो आने वाले बुधवार रात्रि 8 बजे में आप सभी से फिर मिलने वाला हूं संगीतकारों का दास्ता नामक कार्यक्रम लेकर हलिंग में गीत और गजल ओल्ड इज गोल्ड। तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना मजे लेते रहना गर्मी का मौसम है और अगर हो सके तो साथ ही साथ कुछ ठंडा गर्म पीते रहना क्योंकि यहाँ तिस बैठे हील वार्म है बेच कॉल्ड वाटर मैटन स्केच लेमन दत खात यू हेल खुद दून सेफ मैन है और हो सके तो जरा एक रसवा भी पील जाने हमारे दीदिया बोली से ढकोल पहनते नल ऊपर में जी ये बहुत लोग चाहे वेरवा मोई है हिसाब से तो हिसाबी तो साथियों यही तक था। सो लोबी लोबी ऑन ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू और जाते जाते हमेशा की तरह कुछ ना कुछ गुनगुना देता हूँ आज से जो मजबूर हूं ना और आज मैं इस सुनाने वाला हूँ आप सभी को हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का एक जबरदस्त गायक बारिटोन सिंगर द ग्रेट सी एच आत्मा जी के याद में कुछ ना कुछ गुनगुना देता हूँ अनहेल बकेंद्र न्यूमर और हो सके तो मेरे साथ भी आप लोग गाइए।

shoy, shoy. Love you all from the bottom of my heart. और कुदरत ने साथ दिया तो आने वाले बुधवार रात्रि 8 बजे मैं हाजिर हो जाऊंगा आप सभी के खिदमत में. शोशो लोबी लोबी ऑन ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू और धन्यवाद बुदंग फॉर लाइस्ट्रन. बाय बाय.

नारायण जी और अलका याग्निक मिल के आपको सुनाएं यार बदलना जाना मौसम की तरह, क्योंकि कभी कभी प्यार करने वालों में यही डर रहता है कि ऐसा हो जाए, लेकिन होना तो नहीं चाहिए लेकिन कभी कभी ये भी हो जाता है। चलिए फाओ हिंदुस्तानी रेडियो पर आप चून हैं तो प्यार मोहब्बत की बात अगर जो हो ही रहा है तो चलिए सुनते हैं बप्पी लहरी जी अपनी साज में आपको क्या सुना रहा है।

तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए। ये शानदार गीत फिल्म मनोकामना में से निकाले हैं और बप्पी लहरी के साज पर बप्पी लहरी खुद ये गीत पेश किए फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। जबकि आप भी हैं, मैं भी हूँ, आप सुन रहे हैं, मैं चला रहा हूँ, इस उम्मीद के साथ आपको अवश्य अच्छा लग रहा होगा। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, तो क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये सुनाऊँ।

तुम चैन हो, करार हो, मेरे इश्क हो, मेरे प्यार हो। जहाँ तक मेरा ख्याल है, म्यूजिक डायरेक्टर ने इस गीत में यही सोचा होगा कि इसमें ना ड्रम बजाऊँ, ना तबला बजाऊँ, ना ढोल बजाऊँ, बस वायलिन और गिटार से काम चला लिया है। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा यह गीत हम भी आपको सुनाए हैं। वैसे तो कितने गाने में ड्रम और तबला कम बजे हैं, बिल्कुल नहीं बजे रफ़ी साहब के गाने में भी, लेकिन इस गाने में भी जहाँ तक मेरा ख्याल है उन्होंने उन लोगों ने फैसला की चलो अब की बार कुछ नहीं बजाते हैं। चलिए हम आपको सुनाते हैं कार्यक्रम में ये गीत।

www.faunfm.nl पर आप चून हैं। जो लोग चून किए मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। कार्यक्रम पे आप चून हैं, एक शुभ समय पेश करते हुए चलिए हम आपको ये गीत सुनाते हैं। इस तरह से आ रहा है।

1981 का ये गीत, जी हाँ, फिल्म दर्द में से निकाल कर हम आपको सुनाए हैं, जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ। अगर प्यार ही मोहब्बत की बात चल ही रहा है, जी हाँ, तो चलिए नए पुराने गीतों के संगम में हम आपको ये सुनाते हैं। के आपको सुना रहा, यानी किशन कुमार।

ये ख्वाहिश तो हमेशा रहता है ना प्यार करने वालों का कि तू किसी और को चाहे, ये खुदा ना करे। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, और क्या ख्याल है बाबुल सुप्रियो, और देखते हैं। हाँ, बाबुल सुप्रियो और अलका याग्निक।

प्यार करके देखो ना, ये गीत सुनाया गया फोन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में है। चलिए अगला गीत हम आपको क्या सुनाएं, चलो ये सुनते हैं, इस तरह से आ रहा है।

नए गीत पुराने गीतों की मेल में एवरग्रीन किशोर कुमार जी और लता जी, ये दोनों मिल के आपको सुनाए ये शानदार गीत हमने पेश की आपकी आप ही के लिए शुभकामना के साथ। चलिए, क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको सुनाऊं आशा जी और कुमार सानू? जी हाँ, आशा जी कुमार सानू आपको क्या सुना रहे हैं?

क्या बात है, बाबुल सुप्रियो और आशा जी मिलके आपको सुनाए हैं सबसे प्यारा है, वाह क्या बात है। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, ये बहुत प्यारा नंबर, ये भी है एक

तुम्हारी मोहब्बत बहुत याद आई, प्रेम प्यार मोहब्बत की बातें जबकि हो रहा है, हमने ये गीत पेश किए फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए एक बार फिर हम आपको सुनाते राहत फतेह अली खान।

0: 21, 22 en 23 augustus. Voor meer informatie www.minimumsummerfestival.nl.
1: आप चुने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर जो लोग चुन के मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है। चलिए आपका स्वागत करते हुए हम पेश कर रहे हैं ये शानदार गीत, इस तरह से आ रहा है।

रोशन के साथ पर रवि साहब और लता जी मिल के आपको ये गीत सुनाए फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। आप चुने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर, आपका हृदय से स्वागत है। तो अगर जो आपका हृदय से स्वागत है तो लीजिए, आपको ये गीत से हम आप स्वागत करते हैं। इस तरह से लता जी

पिया बोले होले होले। आपने तीन आवाज सुने, सैफ अली खान की, सोनू निगम और लता जी के, ये तीनों मिलके आपको सुनाए हैं। ये शानदार गीत हमने पेश किए। ओपी नैयर के साथ पर कश्मीर की कली, रफी साहब।

किसी न किसी से कहीं ना कहीं कभी न कभी ओपन एयर के साज पर रफ़ी साहब की आवाज़ में आपको सुनाया गया ये शानदार गीत फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में।

0: महेंद्र कपूर जी,
1: ये शानदार दिवस में आपको सुनाए लता जी के साथ लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर। आकाश पे दो तारे सदियों से चमकते हैं। चलिए, ये गीत के बाद हम आपको सुना रहे हैं, ये गीत इस तरह से आ रहा है।

यह दिल है मोहब्बत का प्यासा, मैत मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए हैं। यह शानदार गीत फिल्म दिल ने फिर याद किया 1900 देखूं तो नहीं 1966 का यह गीत, और हमने पेश की फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में।

0: Thank you, brother. Thank you very much. Come on.
1: मुझे आज वो मैंने लाना है।
0: अरे
2: क्यों? तुझसे नाराज जिंदगी अनूप होशाल आपको सुनाए हैं। ये शानदार गीत हमने पेश की फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए अगला नंबर हम चलाने वाले हैं और वो ये है, इस तरह से आ रहा है।

अगर दिल किसी से लगाया ना होता, रवि साहब की आवाज में हम आपको सुनाए चित्रगुप्त के साज पर नेखंतीन एन शस्त्र का ये फिल्म है। और हमने पेश की फिल्म बड़ा आदमी से निकाल कर। चलो देखते हैं अगला गीत क्या ख्याल है, अगर जो मैं आपको सुनाऊं, सोनू निगम, साजिद और सुनिधि चौहान, ये तीनों मिलकर क्या कमाल करते हैं।

मारिया मारिया साजिद सोनू निगम और सुनिधि चौहान मिलके आपको सुनाई ये शानदार गीत इस तरह से हमने पेश की।

फिल्म लव स्टोरी में से निकाले हैं, हमने ये गीत और पेश किए ओवर फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो। आप चुने फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो पर, जो लोग चुन की मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। आपको एक शुभ, सभी शुभ हम पेश किया जा रहा है। चलो हमको सुनाते हैं ये गीत इस तरह से।

न झटको जुल्फ से पानी ये मोती फूट जाएगी। ये शानदार गीत चला हमने पेश की फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। इस गीत के पीछे एक राज है, एक कहानी है, लेकिन कभी फिर बता देंगे, इसे हम याद रखेंगे, शायद आप भूल जाएं, लेकिन कभी भी अगर ये गीत मैं चलाऊंगा तो इसकी कहानी आपको अवश्य बता दूंगा। चलिए अगला गीत, क्या ख्याल है हम आपको ये गीत सुनाते हैं।

फनहंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फनहंट के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतो निकलिए तार कीजिए 9735 6320 तक सेफ नफेटा फनहंट हिंदुस्तानी रेडियो।

लिबास क्यों रेशम पहनो कपास क्यों, फन ये जादूगरी का है अरमा तुमको परी का है, तो किपला मारो मंत्र टेटी बनकर निकल।

में हाथ डाल, ऐ गुल चेहरा परी जमाल, मुद्दत से दिल उदास है तेरे होठों की प्यारे, ऐ दिल भर मेरे लब पर।

0: हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमाल मुद्दत से दिल उदास दादा दास है तेरे होठों की प्यास है ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का दादा आम
1: ये वाक्य आपने सुने बड़े मियाँ दीवाने हैं। जी हाँ, ये शानदार गीत हम आपको सुनाए इस तरह से। चलिए अगला गीत नंबर हम पेश करने वाले हैं इस तरह से, देखते हैं दिल तेरा दीवाना में से निकाल कर।

हाँ जी रफ़ी साहब और लता जी, फिल्म शंकर जय किशन में से निकाल कर हम ये गीत पेश किए हैं ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ और आप सुन रहे हैं। उम्मीद है गीत आपको अच्छा लगा होगा। और चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है।

बिड्डू के साज पर हम तुम्हें चाहते हैं इसे, ये गीत चलाया गया हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में फिल्म कुर्बानी में से निकाल कर मनहर उदास आपको सुनाइए। चलिए आपको एक लम्बा कवाली सुनाते हैं, ये मजहबी कवाली नहीं है तो भागिए मत जी ना, ये एक मोहब्बती कवाली है, तो लीजिए आपको सुनाया जाए रफ़ी साहब, आशा जी और कोरस, क्या ख्याल फिल्म द ट्रेन में से निकाल कर।

वाह क्या कव्वाली था। पल दो पल का साथ हमारा, दो पल का रिश्ता है, ये गीत पेश किया गया शाम के कार्यक्रम में। चलिए हम पेश करते हैं अगला गीत, और वो ये है

याद रहेगा, ये रंगीन ज़माना है, याद रहेगा। ये शानदार गीत चला फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए अगला नंबर हम पेश करने वाले हैं वो ये है।

तुम्हें एक प्यार करते हैं करते रहेंगे। अब ये गीत चला सुमन कल्याणपुर और रफी साहब ने पेश किए। चलिए कार्यक्रम हम आगे बढ़ाते हैं और हम पेश कर रहे हैं इस तरह से रफी साहब की ये गीत फिल्म कर्ज। जी हाँ, फिल्म कर्ज में से निकाल कर चलो सुनते हैं।

दर्दे दिल दर्दे जिगर रफी साहब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ पर आपको सुनाया फिल्म कर्ज में से निकाल कर। चलिए माइक मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस, जी हाँ करोड़ों के दिल पर राज करने वाला इस तरह से है।

आंखों में रंग क्यों लाया लता जी और मैं तो मुकेश द हार्ट थ्रब ऑफ मिलियंस एक फूल चार कांटे में से निकाले हैं लेकिन तीन शस्त्र 1960 का ये फिल्म और हम आपको सुनाएं। चलिए एक गीत और चला रहे हैं। जी हाँ, और ये भी जाना पहचाना गीत है मुकेश जी का। जी हाँ, सुन लीजिए इस तरह से। जी नहीं, एवरग्रीन किशोर कुमार, क्षमा कीजिए। एवरग्रीन किशोर कुमार।

फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतोने के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 6 7 2 तक 7 फेटा फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

0: चीनी कला न जाने जात सरस्वती माता दीजिए हमको अपनी आजीरमा दे
1: मैं तेरी शायरी।
0: तमाम रेडियो फाहुन के सुनने वालों को हमारा राम राम नमस्कार प्यार भरिए नाम सस्यकाल। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम, आज का देश और विदेश का समाचार सुनाना है हमारा काम, यही है हमारा मोहब्बत भरी प्यार की पैगाम।

जनता स्वीटी स्वीटी जनता आज भी हम फेसबुक के माध्यम से लाइव है अपना प्रोग्राम में और आज भी आप लोग को हम दुनिया की शेयर कराएंगे रेडियो फाउन के माध्यम से और जाकर बांध में सूरीनाम के भी शेयर कराएंगे। तो हमारे नानी लोन आजा लोन आजी लोन आप जहां भी हो बड़ों के प्रणाम बच्चों के आशीर्वाद और दोस्तों के हमारे दोस्तों के सलाम दुआ प्यार नमस्कार सब सब भैया। तो यहां से हम तुरंत चलते हैं और जाते हैं अपना देश सूरीनाम की ओर और फेसबुक के माध्यम पे आ गया है इसरी जाने के धर्मेंद्रा इसरी आ गया है तो आपको हम स्वागत करते हैं धर्मेंद्र। तो धर्मेंद्र बातचीत ये हो रहा है सूरीनाम के भैया दुई परानी बोले बड़ा प्रेम से रहतरा बोलिए जोनी झगड़वा होइगे ना ना ना ना ना ना इस दूसर बातचीत है दुई प्राणी के बातचीत हुए है दुई प्राणी के सिपाही पकड़ी से तो इ दोनों के देर तक यूली के पकड़ी से ऑफ डीलिंग जोन बा सीईई के एगो अक्टन 12 तक यार के एफएस एगो फैफन देर तक यार के तो इस सब के कैसे पकड़ी से भैया क्यूबान के क्यूबान के औरत रहा भैया क्यूबान लोग के औरत लोग के समोकल करके लावत रहा देशवा में तो लोग जानो है आदमी ड्रग्स स्मोकल करे है सौदा पानी स्मोकल करे अबे बतावे कितना तमाकू सब स्मोकल कैसे और इस सब मेंस हैंडल करता भैया फॉर्मूला आइट बेटिंग फॉर फॉर नाम लगा क्यूबान से फ्रावन एंड हील मोये फ्रावन और बे मेंस हमार भैया लोन हुआ पे बनैया लोन है सूरीनाम में हमसे बोले है जॉनी बोले बड़ा सुंदर सुंदर क्यूबान के औरतियां है तो वही के मारे तो एक के सबन क्यूबा के औरत लोग के स्मोकल करके लावे है तो हम ना बोले ला तो लोग के जइयो देखिए यो मां हम बताए ला तोरिया कैसे है तो हियां बड फ्रॉ फॉर क्लार्ड बोले हैगा औ जोन के पकड़ी से ऑन द सुक हम खांग नादर फॉर मुड लक स्लाख्त ऑफर एगो क्यूबान के औरत स्लाख्त ऑफर हाथ गेल है बतावे है बोले हैगा दैट से हर अन कम्स इन सूरीनाम बोले जैसे हम आइली बोले सबन हमार पासपोर्ट ले ले इस है पासपोर्ट

यहां पे हमारे हमार बिरमान लोंडे जा है चकलस करे हूं वहां पे जाई के बैठाई दी से और पासपोर्ट कुबान के छोड़ी के माई के और कस पासपोर्ट ले ली से और ले जाई के बोले अब चल तू अपन सेक्स वर्क के काम शुरू कर नाइट क्लब में। तो हमारा बहन अर्शिला भग्गू समझ भी अलगमान से आकर हमारे प्रोग्राम में जुड़ गए हैं, तो आपको हम स्वागत करते हैं। तो यहां बताए गए हैं कि पासपोर्ट लेके जाए के खदोंगन ओम सेक्स वरक्त फरिश्तन और ना खाली एगो फर्स केलंद क्लब में ले जाए वहां पे और बदमाशी करत रहा। हां और बदमाशी करवावत रहा द नाश खाव से आन द शेख मेर्डर फ्रोवन फन क्यूबांस ऑफ कॉम्स ऑफ द अपर लोकासी कॉमोवेना मन हंसू में भैया ले जाए ले औरत के धल्ले रहा कॉमोवेना में भाई स्मोकल कर बड़ी ढेर और कॉमोवेना में एगो रास्ता के नाम बात अर्शिला तू तो जानत हो यो कॉमोवेना के बांचित है एगो रास्ता के नाम बा माया दाम है हमें तो पता न है और जे कमोवेनक है हंसुक है आपको तो पता होगा कि माया दम कमोवेन में कहाँ है। तो कमोवेन में माया दम में भैया हुआ पे ले जाए औरतियन के जैसे महासैन में धरत रहा भैया पे और क्यूबा के औरत के मंगाई और ले जाए माया दम में आम खवावत रहा का भैया। और बताए गए हैगा ऑफ कॉम्स्ट क्यूबा ऑन फॉर ना मुदलक फाल्स फॉर वेंसलन फन सुरीनाम ही व्लांट इन ओवर गोमन और बोले फॉर सेक्स वर्क मींस इन पासपोर्ट वर्डन इन कोनोमर आस अंडर पंत से अक्टर को होदन वार्डोर से अफंकलिक ब्लीव फन द फर्दाक्टन। तो जो ने पासपोर्ट वाले ले ली तब तो अपु जोन बोली तो के करे के परिगा और मोई मोई बार बोल के चल तो के सरनाम में हम बकुआ खवाबे मोई मोई काम देबे और हिया लाई के एके और क्यूबा के औरत लोग के और लाए हौसल करवावत रहा पासपोर्ट आसपोर्ट ले रहा। तो लेडी सेफ बे से हमारा एक बहन और आ गया है चित्रा अवतार आपको बहुत प्यार से और स्वागत करते हैं अपना प्रो ग्राम में। तो ये बात हो चुका भैया तुम जानो है क्वेक क्वेक जाने जो सुनवा वाला चीज हुआ है तो क्वेक के बात है। तो क्वेक के तरह चोरी भैला तो हम कई रोज से बोली ला बकी सरमक्का के रीबा में भैया सरमक्का के रीबा में बेनालांग के रीबा में मछरी मर मर सब उतरान है इरमा राम तहल सिंह आपको हम स्वागत करते हैं। मछरी सरीनाम में सरमक्का में और बेनालांग में मछरी मर मर सब उतरान है भाई फरखेब भैले हुआ के पानी। तो लांटी बोले है बोले तू लोग के रीबा के मछरी पकड़ के ना चाहे खाई के और ना पानी चाहे पिए के बोले फरखिफ्तक है। तो अब अनमी लोग के बारा दुख है भैया जो अनमी बेनलांत में रहे हैं वो रीबा के पानी से बनावे खा है और मछली बनाई के खा है अपन जीवन चलावे है जब तो रीबा फरखिफ्तक हो गए है तो अनमी भला अपन जीवन कैसे जाई चलावे। तो लांटी का बोले है शांति गुरु के दुर्पू में शर्मा का रिवीर में बोले हुआ पे शांति गुरु में ले जाए अब उस सबके पकेता देवे भैया पकेता देवे है या बतावे है बोले सिचुवासी है जो सिचुवासी है खले तो मसाले फिस्टर्फ्ट एन ओंत रीखल्ट दाखल के लिए इन खत्रोफन गमेंशाप के बांचित हो रहा है। तो बताए गए हैगा कि अब ले जाए वो कैप्टन है जिसका नाम बा एथार प्लेन शांति ग्रोम के बोले हैगा 10 बवून दे हेल्प वार्डेरन वार्डेर करे हैं मां बोले फिर भी फुसर पर कहता हम लोग के लगे आवे है दौरव सो बोले है मां बोले हम लोग के बोले कैप्टन बोले हैगा पिकिंग पोइका के
pleit voor verdere hulp. Zij stelt dat de pakketten veel betekenen voor de bewoners, maar dat de opvolging noodzakelijk blijft.

Zolang de rivierwater onbruikbaar blijft, mensen te panieken hoe aan bara problemen. Maar de komen ja, bolere Cuba ke aurat ke irma. Cuba ke aurat ke sarma. Mensen band smokkel kerke lawe de suame. Paspoort wel leke al jijke nachtclub me. Protest twee sekswerk ke kam karwawe he. To hier pe bataye gaye he. Na khali Cuba ke auratien ke bhaiya. 1700 इलाखाल तमाकू निकेरी में सबन स्मोकल करी जरे कोई कोकाइन स्मोकल करे है कोई भैया तमाकू हो स्मोकल करे कोई औरत स्मोकल करे है तो यहां अब तमाकू के बारी है 1700 पाकी और जाए के स्मोकल भइल है ये बातचीत हुए वो जगह के नाम बा क्रापा हुक लान निकेरी के बातचीत है तो क्रापा हुक लान निकेरी में एगो बहुत बड़का परताई तमाकू मिलल है और बोले एगो 50 बरिस के आदमी के सपन पकड़ लीजिएगा तमाकू के साथ में और ओके जबरदस्त बूटू मारी से और रमिया के भका भक चाहे तमाकू पिए के भैया जब तू तमाकू स्मोकल कर लेते तो कह चाहे तमाकू पिए के ये बात है सूरीनाम के हमारे प्यारे प्यारे जनता तो यहां पर बताए गए है पता है और हमारे उस्तादों के उस्ताद महा उस्ताद भैया सुंदर हीरा लौंडा के नाच बिरहा के नाच के गुरु भी हमारा प्रोग्राम में आकर और जुट गए हैं तो हमारा उस्ताद के हम यहां से हृदय से स्वागत करते हैं तो भैया हीरा जी बातचीत हुए भैया इतना रोफ हुए सूरीनाम में का बोली भाई और हमार हनीस मनोरथ बोले बोले चिजुअन बोले बड़ा मोई हुई के दसवा तू रिश्ता के बोला अब देखो भैया खवा पंद ऊपर फाल भैल बालकोन में नमिया बैठ के अपन ठंडा ठंडा हवा लेवतरा ठंडा ठंडा हवा लेवतरा एगो सीनियरो बुरखर यहाँ और खुमोई से अपन घर में बालकोन में बैठ के हवा लेवतरा भैया ई सब बांचित हुए हैं एगो रास्ता के नाम है मुरई स्ट्राट भैया खाए वाला मुरई पूजतियात करे तो जान जइयो मुरई स्ट्राट के है ते बालकोन में अपन बैठ के खूब ठंडा ठंडा हवा लेवत रहा और सोना के केती पहिर के भैया उतरे में दुई गो नाए गो दुई गो आदमी यंग ब्राउन फिश पे ओकर ब्राउन फिश पे रुकल है और ब्राउन फिश लेके रुकल है भैया और आई के बोले हैगा एगो बोले हैगा रेक्स ट्रेस ओकर बालकोन में घुसल है बिना एको वार्स क्यूएं के निकारी से पिस्टोल भैया और ये बयारदम मन के 18 क्रात के सोना के केती गटई में से लेके चल गए हैं और फॉर्म फॉर लेवन कॉप और हंगरवा रहा जैसे को बाघ के मुड़ी के तू जाने सेवन हंगर बनाए रहे तो भगवा के मुड़ी के और फॉर फॉल्क तो रहन दे त्रिकना तो ब्रोमफिश तो दोस्तों कोई जमाना में बहुतर्स बोले रहा बोले हम बोले तिकुआ में बोले यहाँ पर ऐसी डेंथ हो बे बड़कुआ हो जाबे तब बोले जितना आदमी के घर में लोहा लगल है बोले लोहा ना हुफ्त लगावे इतना फैलक हो जाए दसवा मेरे भगवान घरवा में आदमी के आजकल अपन बालकोन में लगावे के परे ले भैया कि बालकोन में लोहा लगावे के परे वन बालकोनवा में तो के डर है हम तो लगाए बाटी भैया बालकोन में लोहा और ओमा लोहा बन करके जैसे भैया जल में बैठियो तीन ताला लगाई के झलवा में बैठ के बहरे तकियो कि जल में से जैसे कोई बहरे ताके है तो ये बात है हमारा सूरीनाम के प्यारे प्यारे जनता की बालकोन में भी आदमी लोग के और चोरी हो जाए रोफ हो जाए ये बातचीत है हमारा सूरीनाम के हमारे प्यारे प्यारे मीठा मीठा जनता तो हम जाए भैया हम लोग के जो फोर्थ सेटर है और फोर्थ सेटर हैगा आसाम ब्लैक के और वो है अश्विन अधीन फोर्थ सेटर फन नेशनल अश्विन अधीन बोले है दोंडर दाख के और फरखादरिंग में बोले बपाल ने तैत फरदाखन फॉर लीडर वास का बसेट ऑफ द ग्रंथ वेटलक फरांत वर्ड लग हेड के बारे में
अधीन बोले, अबे आप लोग के और बात हम बताएंगे कि क्या हुआ सूरीनाम में। आप लोग जानो है, आप लोग जानो है, फिर पार्लियामेंटारी रहेगा सिद्रिक फान जमजोन है। हाँ तो टोनी अब भी आ गया है, तो आपको हम स्वागत करते हैं टोनी इसरी को भी। तो टोनी बात ऐसे है कि सिद्रिक सैमसन है फिर यहाँ पे एक पार्लियामेंटारियर है और दोंदर दाख के भैया ओके सबन आसाम बली में बड़ा जबर एनडीपी के औरत लो लपेटी से भाई, जो लपटाई लपेटी से ओके इतना लपेटी से कि एनडीपी के औरत सब पार्लियामेंट छोड़ के बहरे चल गए है। बोले है कि सैमसन बोले तू रेडियो हलान के गो रेडियो है, बोले तू वहां इंटरव्यू पे बोले बाटे कि औरत न चाहे सरनाम में प्रेसिडेंट होए के, बोले हम लोग वही मारे डेमोस्ट्रेट करे, बोले तू चाहे सॉरी मांगे के वन, बोले तू कैसे बोल सके कि औरत के नाम आएगा सूरीनाम में प्रेसिडेंट होए के, और बोले तो के ए बोले फ्रॉल के प्रेसिडेंट मुझे बन अस क्रिटिक ऑफर बलाई तेजस वर्ड को कोपल अन इट फेट दैट से अन फ्रॉल इज दी फॉरमेंड स्प्राक स्कूटर मेरे नाम बिने फ्रॉल के एनडीपी पार्लियामेंटारियस सैमसन बोले हम थोरो सब औरत के बुल्ली बाटी। सैमसन बोले है बोले हम बुल्ली बाटी कि सीमोन के कभी ना चाहिए प्रेसिडेंट हुए, एक बार हम लोग इतना फ्रॉक स्टेल करीला का बोले हैगा पार्लियामेंट में सीमोन्स आईबे न करे है, तो बोले ऐसा औरत प्रेसिडेंट लाइक ना है, बोले ई बतिया हम बुल्ली है, बोले हम थोरो बुल्ली एक को औरत के नाम आके प्रेसिडेंट हुए के, बोले हम लोग कितना फ्रॉक हेयर स्टाइल कर ली है कि जैसे स्कूटू को पॉलिसी ब्यूरो में से इतना क्विक क्लास हो गए है, इतना स्कूटू यहाँ रोतसोई करे है, यहाँ चोरी हुए, अब बोले प्रेसिडेंट के चाहे आए के फरकलार करे के, अब बोले आईबे न करे मैं तो ओक मेन से tijdens de regering van NDP, je bouwt als president, trouwens het ook dezelfde probleem, die president behoudt, komt die awe hega DNA mee. Toen je baat he, van Samson reageerde later met een schriftelijk verklaring waarin hij stelde dat zijn uitspraken uit het interview volledig uit de context zijn gehaald. Volgens hem was het nooit zijn bedoeling om een vrouwen te discrimineren of hun geschiktheid voor de presidentskamp in twijfel trekken. Hij benadrukte dat bestuurders moeten worden beoordeeld op hun functioneren, integriteit en bereidheid van de verantwoording af te leggen, ongeacht die hoe jij ouderd hoe je marad hoe je oude aanbloeien jano bhaiya joen samen per verkiezing prioriteer haan oes samen per Tony bolat raan NDP kademien bole unowan kuli als president jano hee batia बोले हम लोग कुली के नाम मांगे लद्देसुआ के प्रेसिडेंट कभी ना हुई, तो उस समय पे आदमी लोन मुना कोलत्रा की भी डिस्क्रिमिनेशन है और यहाँ सैमसन के समान पहले है और सब बोले ओके चाहेगा फौत अपन लेवे के, लेकिन अब तक सैमसन बोले कुछ फौत न कर ली, तो बोले कैसे भला हम अपन फौज जाबे माफी मांगे, बोले दैट खात नीत खबर, तो हम जाई तरी मारोको के ओर भैया। हाँ सैफनन दर तक दैसन ना एगो भैया सैफनन दर तक दैसन मिनी ख्रांतन फान आउट खुता खकेर नान मारोको 17,000 मारोकाने जोन गैला खुता में और है वो स्पांस जगह है स्पाइन में खरेंच फंड स्पांस एक्सक्लेव बोले हुआ पसे हबड़ा होत रहा, बोले हेगा ओफर स्टाकन से अलमेर दन सेवन दर तक तैसन मारोकान से मीनी ख्रांतन Migranten inmiddels teruggekeerd naar Marokko. Bole dat meldde Spaanse minister van de Binnenlandse Zaken. Or bole hega.
बोले 57 मेंशन बोले जोन बूढ़ के मर गए भी है एक बार स्पंस क्रांत बोले है बोले हैगा स्टर्क तू नाम फन मी क्रांत वेर इन खुटा अ नो सिचुएशन uitgeroepen बोले क्रिटिक हैगा इटालिया फिनलैंड फ्रांसक डचलैंड के शरीपन अंदर मेयर ऑफ ग्रेंस कंट्रोल तो हम बोले कुछ मारको के बारे में आप लोग को हम बता देते हैं दोस्तों। हाँ गर्मी के मौसम है तो पानी तो पीना चाहिए हमारे दोस्तों। पानी पीने में खिलवाड़ तो आ गया है सासार्थ आ गया है शारदा भी आ गया है तो आपको हम स्वागत करते हैं हमारे सासार्थ के। तो हम चलते हैं और अगला समाचार की ओर। हमारी जनता पुलिस चीफ हम जाला श्रीलंका के ओर दोस्तों। बहुत जनता है हमारा हिंदुस्तानी जगह देखी से श्रीलंका में जाई के फ्रांसी से तो बोली तो श्रीलंका के न्यूज भी हम तरी बतावल कर भैया हीरा। तो श्रीलंका में भैया हुआ मौत के सजा मिलल है श्रीलंका में मौत के समा सजा मिला और के मिलल है एगो फोरमालक पोलिसी शेफ के मौत के समाचार मिलल है। ई का कल रहा 2019 में ट्वी जैसे नीखन तीन में एगो दौलक एगो बम आंसलाख कल रहा देशवा में। हाँ जहाँ पे ट्वी होंदर नीखन सेफ तक आदमी मर गया रहा श्रीलंका में अंदर भी तीन गो नीदरलैंडर भी उही में रहा जो मर गया रहा। एगो पुलिसी शेफ ई चीज कर ले रहा और बोले एकर बारे में बोले होख बरुक गए ला सकवा होख बरुक गए ला तुई डाइशन तुई एन तुई तक में बोले और पुलिसी शेफ ओकर नाम बा जया सुंदरा और बोले एंड तुन मालक मिनिस्टर फॉर डिमेंसी डिफेंसी हेमा सिरी फेर्नांडो नॉक्स एंड फ्राई गस्प्रोक मेंसे और 66 यारक पुलिसी शेफ जो रहा होक बरुक कर ले रहा होक खरेफ्टोक में श्रीलंका ही सिंस 67 तक हुआ दो स्ट्राफ आउटफुर कर दी से कितना आदमी बोले सुरिनाम में भी जाही करे के भैया जो ने सुरिनाम में दो स्ट्राफ है बाकी हुआ पे सबन वर्किंग में ना लावे हैं बोले ना माखे और जो एगो दुगो जो हुआ जो आदमी लोग के मौत करे है रूफ करे हैगा एगो दुगो जो दो स्ट्राफ मिले भैया 10% फंड क्रिमिनलिटी फॉर लाख तोड़ मैया खुद इन सुरिनाम दून सनी मसेंस दासिन श्रीलंका का हैब खदान में से इस इतलान फील बीटर खवर्द क्वाद क्रिमिनालिटेट तो ही बतावे हैगा द स्ट्राफ वन वर्द दोरखास उमखसेट इन लीफस लांगे गफांगने स्ट्राफ 1976 में मर इंडियांस इनलिटिक दिन्स बोले 4 तारीख अप्रैल के 2019 में आल गवार्स्कीर फोन मोगलेके सेल्फमोर्ड आंसला दोर इस्लामिसे टेरोरिस्टन द अथॉरिटीज सोनन टू हिन एक्शन हैवन गनोमन द आंसलागर वर्द प्लास ऑफ 21 अप्रैल 2019 बोले हैगा जहां पे तीन गो केर की तीन गो होटल में 2019 तक आदमी मरल रहा और 500 आदमी चोटाई रहा। तो ये बात है दोस्तों श्रीलंका रेख बांग श्रीलंका ही फॉर्मल का पुलिस चीफ तर दूर फुट ओर दिल उम्दत है इन 2019 दूर लक बम आंस अन बम आंसलागन इन इट लैंड नीट ही वेटन टू फोरकोमन और बोले दरबे कोमन 209 जीवन एक मेंशन ओम हेड लीवन बोले उन ना बचाई पा रहा होकर बारे में बोले यहां पे दोस्तों ओम तो फोर कॉमन और चियुआ ऐसे भले पुलिस चीफ के बारे में है हमारे प्यारे प्यारे मीठा मीठा जनता हमारे नानी लोन हमारे प्यारे प्यारे भौजी लोन। अभी आप लोग को हम और आगे के समाचार यहाँ पे बताते चले हैं। बातचीत भैया जब देखो पहले भी रहा भैया सुरिनाम के जल भर गए दिलब बंधु आ गया है। हाँ दिलब आपको भी हम स्वागत करते हैं राजा सांतो बोमा ओफर लोट हो गया भैया जहलिया से अब लांटी के पैसा ना रहेगे सबन के खवावे के बुद्धू
खवावे के भैया अब हुआ पे अरेस्टांत बहुत ढेर हुई गए, अब ले फ्रांसीर के लांटी पैसा 6 महीना हुई गए ना भरी, अब घास खाइयो। जहल के मान चीटे पुलिसी बिरो के और ले फ्रांसीर जो खाई ले यात्रा देवे उस सब बोले हम लोग 6 महीना से पैसा ना पैली है। तो बोले जब पैसा ना पैली है मैं बोले तो हम लोग जहलीवन के सोचिला बोले हम लोग कर्जा ले ले बोले हम लोग जाएला जहलीवन के खवावे भैया, और बोले हम लोग कर्जा ले ले हम लोग जाएला जहलीवन के खवावे और लंटी 6 महीना से बोले हम लोग के पैसा ना भरी से हमारा सूरीनाम के लंटी काहे ना जहलीवे से तरकारी बोवाई के खाई पकवावे रे भैया। मोई से इस जा है और जाए के सबके रूफ कर कर चोरी कर कर अशांत बोमा में बैठ के जैसे होटल में बैठ के खाई के गोरे है और कैचरिंग जाए जाए खाई बनाई बनाई देवे है। तो इस सबके हम बताई है लांटी के चाहे वही कम कर्तवन से खेती बाड़ी करवाओ तरकारी बोवाओ और वही तरकारी ले के चलो अपने तुलो बनाओ शांतो बोमा में और बनाए बनाए अपन मेड जहलीवन के खवाओ। ऐसे चीज आ जा मारे भले ही फंसरी नाम सवेल सवेल द लिक्स हैब में से मसे हैब खेन ख्याल। तो गीता सिगुलाम भी आकर हमारा हमारा प्रोग्राम में जुड़ गया है। तो वेले से सेल्फ इन द खफान इस वेले से द लिक्स लीफ खान खान फोर्सेट में से एंडेड कानी द ऑन द नेम इस चलन दसे कॉस्टन फॉर फॉर खुदे ट्रांसपोर्ट पर्सोनेल और बोलेगा महीने से लांटी पैसे ना भरी से। तो एक बारे में मिनिस्टर फाइनेंशियल पॉलिसी ले गए ले तो बोले एडमिनिस्ट्रेटिव फॉल्ट बोले हुए een deel van de leverancier voorlopig doorgaat uit verantwoordelijkheid gevoel en uit vrees van de maatschappelijke gevolgen groeit de onzekerheid zonder snelle oplossing dreigt de voedselvoorziening van de arrestanten alsnog volledig vast te lopen. तो ये हमारा जहलीवन कहता भैया लोन जहल में हुई हो। तो बोलियो ये जोनिया बोले तू मांगे हम जाए वहाँ खेती करी, अरे मियाँ मोटाए ऐली बाटी खूब खाए ऐली बाटी जो रे हम अपन जहलीवा काट के जाए के चिनवन हिंदुस्तानियन के घरवन में फिर रोफ करी और रोफ करके पैसा जितना मांग बनाए बना ले पकड़ा जाबे फिर आबे यहाँ होटल में हम आइए हमें तो लोग कमाई के खावाओ। जहलीवन बोले है और हमारा रखेरिंग श्री नाम के सदुन ही लमा निक्स एनमी में से सब्लाइफ मादी में से फुदर सब्लाइफ मादी में से फुदर एंड दिस इज। अब देखो एक ना एक चीज के बाद चितना है 100,000 एसआरडी के बात है भैया 100,000 एसआरडी के बातचीत है जो लुटेरा जाए के हाँ लुटेरा जाए के एगो रास्ता के नाम बा खेरास्त्रासर नाम में 27 तारीख जुली के और बताई गई हैगा 27 जुली एंड 29 जुली पलाफोन तूर के घर के पलाफोन तूर के और जाए के घुस के एक और एगो द्रियन फेज तक यारक आदमी घरवा में रहा और ओके का बोलेगा 100,000 पैसा चुरा ले और इद्रिय से इवन तक यार का नमिया घरवा में रहता और घरवा जो रहा ओकर भाई के रहा और बेटा लांत मेरा भैया ई भैया हुआ रहत रहा और ओकर एकनार जोन घर के रहा ओकर भाई बेटा लांत मेरा भैया कितना आदमी जो सूरीनाम देश में भैया सुंदर घर बनाए के छोड़ देवे है अपन सास के ने अपन माई के ने अपन भाई के बोले तू ही घर में रहो तो के ना हो तो कुछ रह के चिराग पानी भरिए हम आवे तो घरों में प्रेम से रहबे और कुछ पैसा भी छोड़ दे है लेकिन चोरन ओहू जाए के मार दे
भैया होंदत दैसन एसर दे मारी से एक दुई सीस ना मारी से भैया बहुत बड़का पैसा है जो नदमी पसीना से पैसा कमा है ओके तो मालूम है कि कितना मेहनत से पैसा आवे है। अब देखो कोर्स है श्री नाम के और वो है एरो है त्वियम फिरतख एरो त्वियम फिरतख कोमा ट्विंटख SRD 1 euro to Rio, tapio 42,20 SRD. Als je jouw kine euro, tapio 43 SRD ke 1 euro bhariyot utra payo ego euro aur American dala hai 37.50 ka upar se adhin ka bole hai bole Suriname mein jitna dukan hai bole sab paisa turave kine hai euro dollar bole uchi jua ban kare bole sab chahi central bank se kare re bhai jab admi हंदलारे जब पैसा ना पाएगा डॉलर और यूरो जैसे वो अपन सामान कीन सके देशवा चलाए सके अपन दुकान चलाए सके तो वो जरूर कीनी भैया ओके पैसवा नोक दखेगा। तो यहाँ पे आप लोग को बताए द कोर्स इज 42,20 दैट गात इट मेंसे तो हम बोली आप लोग को बताते ही रहेंगे ताजा खबर। तो हमारे जनता हमारे प्यारे प्यारे जनता यहां बताए गए हैं सिद्रिक के बारे में आप लोग को तो हम बता चुके हैं कुछ नया न्यूज आप लोग को हम बताएंगे। हमारे जनता मथुरा की ओर हम जाए ना फिर यहाँ पेयर है आप लोग जानो कमिश्नर फ्रॉम पुलिस रहा फिर मिनिस्टर फ्रॉम डिफेंस ही हुई रहा एंड टाइट फ्रॉम फिर यहाँ पेयर रखिए ना फिर यहाँ पर मथुरा का बोले हैं भैया मथुरा फिन की एनडीपी नीट कॉन्सिक्वेंट इज बोले जब एनडीपी बोले मेन हेल खसेन बोले हमार हेल खसेन के बोले तू लोग क्रिमिनल बाटे बोले नी माथा दस्तान फिन खनुमन मथुरा फिन एनडीपी नीट कॉन्सिक्वेंस तुम द एनडीपी में एंड मेन हेल खसेन क्रिमिनलाइजेर दे हिफ निमान अस्तान फिन इन खनुमन बोले है बोले बाकी अब बोले वनेर की अब एनडीपी निस्वार प्रोटेस्टर तेगन मीडिया आइसप्राक जोन पे यहाँ पे के पार्लियामेंटेरिय है सिद्रिक फान सैमसन बोली सेगा के एगो औरत के प्रेसिडेंट न चाही होए मतलब सिमोन के न चाही बहर होए के तो एनडीपी के भैया चारों बगल से गरम गरम हवा लगे लगल है हाँ जहाँ न चाही हवा लगे के हूँ हवा लग गए भैया औरत जितना एनडीपी के रहा सब निकर निकर बहरे चल गए तब यहाँ पे काबले कृष्णा प्रसाद और काबले मथुरा बोले है जोन समय पे हम रखेरिंग में रही एनडीपी के आदमी हम बोले रहा हम क्रिमिनल हमारे ही लग क्रिमिनल तब बोले उस समय पे कोई अवस्थान नहीं ला बोले आप इस सबके गरम गरम हवा लगे तू जाने हिंदुस्तानी में कहीं और कुछ लग जा हम में कौन काम है बोले के उस सब मीठा मीठा बोलिया तू लो तो समझदार है हम का बोले मांगिला वन ईयर द एनडीपी सेक्स शुल्क हार द वार्डन तब बोले दान खा एक सेकंड बोले कि उस सब इरलक ना है बोले 2015 में बोले हैगा मेन एंट्री द डेट इन द पॉलिटिक और बोले जस्ट बोले जे एनडीपी बोले हम में बोले रहा हम बहुत बड़का क्रिमिनल बाटी बोले हमार हेल हसन बोले हमार आदमी हमार बेटवा बोले सब क्रिमिनल है बोले एकर बारे बोले फॉर द रेक्टर ले गली बाटी और बोले रसीद दुखी के ले गली बाटी रेक्टर ही तुन फोनस आइज कस्टेल फॉर हिर पार्लियामेंटारी रसीद दुखी एनडीपीयर के तुन ही निमान फन एनडीपी इन एक स्टैंडपॉइंट दारिन खनुमन हेट वाज अंडर हेडक प्रेसिडेंट दी तुन फोर्थ एटर वाज फॉर द पार्लियामेंट मेन इज नोइट क्रिटिस गवेज नाद एगन कोलीगा दोर ते सेकंड दैट से दैट नीड हैडन मुटन सेकंड वन इज इट इमान फन हेन इज दस ये दैट हेड मेड मंटल
der liefde wordt bedekt en er geen consequent bedrag is bij Mathura bole hega. Aur tulun jano bhaiya NDP me hamara Nikeri ke Seattle House me pe rasit dukhi. Ab rasit dukhi NDP ke parlament me na baithe te bole ye admi अपन घर द्वार ना चलाई पाई पैसा ऐत ना आई पाई तो बोले आई हमसे पूछे कैसे ऐत आई पाई तो पहले भैया लूटो खाओ और दोन हो जाए तो बोली कहां से अब हम लाई तो ये बात है हमारा सूरीनाम के यारो हमारे प्यारे प्यारे जनता एक लाश एक लाइक मिलल है हाँ ओ बात बता दी भैया एगो लाइक मिलल सूरीनाम में और उ लाइक वासन में से इन ऑन बिंडिंग आन खतरोफन ये बात हुए एगो फैमिली लेड बोले लीड ओवर लीडने और बोले हैगा फॉर आज नोक सेने खीन आनवेशिकिंग की कोई ओके मारी से और एकर बारे में अंदरसुख हुए कैसे है फ्लोरा के सिपाही एकर बारे में खोजे है ते एगो घर में एगो लाइक मिलल है दोस्तों लेखाम फॉर अन फेयर खान द स्टार फॉर ऑन बिल्डिंग एंड क्रॉफर्ड इन एन वोनिंग इन एन अनबाउ अबे घरवा बनत रहा जिस कंप्लीट घरवा ना रहा क्लार भइला म मालूम ना है उ घरवा कैसे रहा और कैसे ना रहा हमारे जनता हम सोचेला तुलुक के एगो हम स्पंगाना सुना दे और यह नाचे नाचे हाँ शारदा तरी नाच लियो तू तरी नाच लियो गनवा पे स्पंग स्पंगाना तू जाने हरदम चलाइला तो पलंग सगवन के भैया केसरी जी

राजा जी बोले पलंगिया पे का हुए भैया, अच्छा टूट जाई तो देखल जाई, दूसर बेदी की नाई भैया, दूसर बेदी की नाई टूट जाई तो ये बात है। भोजपुरी सॉन्ग के बाद में हम जानते हैं हमारे जनता, हम जानते हैं और वो कहाँ है, हम जानते हैं भैया सूरीनाम में तो जानो चारों बगल जाए के आदमी पेन कर सके। हाँ सोशल मीडिया पे रखा हुआ आदमी जाए खेल ना है, एकवा में जा है ना है, एकवा में ना है, आदमी बोले हम दौड़त दौड़त कानी के तरह तेल जाए जाले भाई, खेल औतमान में पैसा ना है तो बिगड़ल है तो ई है फलान ढकान काम ना करे पैसा ना देवे। तो यहाँ पे बताए गए है कि ATM मशीन से सूरीनाम देश में हमारी जनता, आप लोग को पता है तो आप लोग को तो पता है सूरीनाम में ATM मशीन से गा, और बताइए गए कंस्यूमेंटन कॉन्फ्रेंटेट वार्डन ATM मशीन से फाक लीक ऑफ बेटन वर्कर में पैसे में ना रहे, और ये पैसा ना रहे भैया तो टूटल रहे तो जानो है तो एक बारे में एगो बैंक कंसलेंट है गा और है का ट्रेंस कॉनेस गोनेस बोली सेगा दैट हैड फील हेल्प कॉस ओम ATM नेटवर्क द अंडर होल्डन मशीनिया अंडर होल्ड करे के बोले बहुत ढेर पैसा हम लोग के लगे है, बोले एकर बारे में बोले बहुत ढेर इन्वेस्टेर करे पड़ेगा, बोले टेक्नोलॉजी ओम बेट लाइफ में द ट्रेंड एंड ऑनट्विकलिंग ATM बोले है नेटवर्क सूरीनाम के बोले है बखरेदार व्यवहार फॉर हुकिंग नो साकलक वारन तो उसे मांगेगा कॉस्ट फॉर हुक करे भाई opzichte van de internationale markt de kosten redelijk laag tegelijkertijd weet hij de samenleving to up to je je paisa isa pen karo bhaiya to aur jada paisa lagi wahan bolo sabke kosten bahut jabar hai to lo jano to ap koi mare ja budhiya paraniyan hua pe paisa ja paave hai aao fe aave hai to ladkan ke bole hai beta je ye sab paiswa hamar nikar laiye कारण कि अब बुढ़ियन पुरनियन थोड़ा बेर बेर जाए ऑटोमैट खोजे देशवा भर में, एक में जाए टैक्सी भर के लड़कों को बोली बेटा एकवा जा तो उस सब ऋषि को ना मांग लेवे तो एक दाय में सब आओ फी के पैसा निकाल के जो घर में धरे हैं तो अब उधर भैया बोले जहाँ सुकुरु है वहाँ चूटी है और जहाँ पैसा है हुआ चोर है, तो बुढ़ीवन के जाए जाए वही रूफ करे हैगा चोरवन भाई ओमदात हम लोग के ऊपर है अपन ऑनट्विकलिंग फॉर द फेल खेत में इन्वेस्टियर न करे है। तो सुनील दीप गजरी भी आ गया है, आपको हम स्वागत करते हैं। अगर जो ऊपर है जितना ऑटोमात सब में पैसा धल्ले रहत हर एक भीड़ में कुछ न कुछ मुखला खेत कर ले रहे तो आदमी ना रहत के एक दाय में जाए के सब पैसा निकाल के घर में धरत वट ओके ब्रेड कीने कुछ कीने कहेगा तो बेचारा कहाँ जाएगा पैसा लेवे तो सब पैसों निकाल के घर में धरे भैया तो कोई बेदी के नीचे लुको आवे कोई हियाँ लुको आवे कोई हुआ लुको आवे है तब चोर जाए के लपेट देवे भाई। दिस इज इन फ्रॉम द ग्रोस्ट प्रॉब्लम इन इट लैंड दी नीड इन्वेस्टेड फॉर इन द ICT in de ontwikkeling, de technologie van ons land. Mensen, bijna heel veel mensen hebben hun bankpas, dat ze daarmee ook kunnen betalen. Maar heel veel winkels, dus die namen, hoe mogelijkheid na hè? Hier toch bij jou, deel Albert Heijn mee, dat 10 donnieke breed hem scan kerke lela. Ik heb bijna nooit geld. Er zijn heel veel mensen, ik werk hier mensen, op mijn werk, waar ik werk zelf, daar komen mensen hele dag geld. Betaling, ik zit in het betalingsverkeer ergens mensen. Bij mij kan je geen contant geld. Als John Dean hem op internet na hij je kuch hoige he. Dat zijn mensen in een probleem, want ze hebben geen geld. En naki छोटा मोटा आदमी बड़का बड़का आदमी लो भैया उस सब टेलीफोन लेके खाली चले हैं और टेलीफोन से स्कैन करके दिन भर उसे अपन बताल फकीर करे हैं अपन पास करे हैं आलस खाफिया ऑनलाइन में से। तो वो रमिया के जब तू चोरी करियो पड़ते मैंने या कुछ चोरी करियो तब तो के रोवे के परिवार ओमा खाली अल्बर्ट हैन एक्शन के बॉन घुसेर धरल ले जैसे हमार जब चोरी करियो तो के रोवे के परि बोले कौन चीज उठा ले लिए वहां जैसे नो इट हेल्प देन मेन से दैट सॉर्ट ऑनट्विकलिंग मुत इन सूरीनाम गेबेरे दैट सॉर्ट ऑनट्विकलिंग ये मुत अलेन मेट ये पास लोपे एंड मेयर नीट
चोरी कमती हुई आदमी जो सौ सौ हजार पैसा घर में धरे बा उस पैसा तो के ना हो धरे के आलस मुदना द बंक फरकेर कान अमा बंकवा शर्फी जन ना दे पाए जनता के ओवर है तो खरंसिया ना दे पाए दत ये 24 uur kan geld krijgen wanneer je nodig hebt gaat deze probleem nooit opgelost worden hij na bij je zo niet dat gajri zo is het toch dus ons land is nog hoeveel jaren achter ik heb het over Suriname mensen op hem jij bij je Rusland Polen ke over ha bole Polen heeft Russische ambassadeur ontboden Polen Russische ambassadeur ha oké bole to loud ja Toulaudia Appendees wilde hem toch in Amangela om uitleg te geven om de neergestorte raket in de nacht van woensdag donderdag ik hoor raket geralha premier Donald Tusk Jonma na Trump Donald Tusk Jonma bole hij zei al snel vermoeden ki Rusland ke go raket bole hamar desh mein giral hai bole ekar bare mein ambassador bole li baati puche ke bole khat om de Russische kaha 101 raket giral ha ekar bare mein donder dag ke radio pe bole go kruis raket giral ha aur bole gevaarlik om a kernkopper ha Tusk zei al meteen ki Polen bole ki het doelwit was van een aanval bole de kruis van plaats tijdens een nacht in de zware Russische luchtaanvallen op Oekraïne. Bole Johnson met Rusland, bole een Oekraïne koeper, bole kabel kruisraket, maar dit is mijn gerel hem, bole ongeveer 90 kilometer van de grens van Oekraïne en raakte niemand gewoon door de gevonden brokstukken kon worden wel vastgesteld. Atulonjano Bahia, Polen is EU. Polen is NAVO. Als Rusland één van de NAVO-landen gaan aanvallen, gaat de hele NAVO erop, mensen. En dan moet Rusland voorzichtig zijn. Je kan alles doen, maar ga geen NAVO-land aanvallen. Want dan gaat de hele NAVO hem beschermen. En als dat gebeurt, dan wordt het niet een kleine oorlog, maar een mega grote oorlog. Jibate, maar je taat er niet bolie, Johnny. Tupuri, aketoria na bataille, heko, katori. Tasanam ke koko actori se kamti he, bhaiya, sab karaka me, jarai se bhaiya, jatra koko ino ino milel he. Ma malum na koko ino jarai se, ke puiri jarai se, pisan jarai se bhaiya. Social media pe bahu chij hove he. To Sangeeta Mahesh bhi a gaya hai. और वो है अलमेरा शहर से आपको हम स्वागत करते हैं संगीता जी तो फिर तक यार के एगो आदमी भैया बताए गए हैगा फॉर ब्लाइफ पास रहा ओके मंगलवार के नीदरलैंड में तिलबुर्ग में मिलल पकड़ान है रोटरडम के सिपाही पकड़ी से तिलबुर्ग में जाए के को फिर तक यार का मान के जे के फास्ट वो जगह ना रहा एड्रेस एड्रेस ना रहा बोले हैगा बतरोकन है इन बेड फॉर बरेडिंग फन दुई voering bij la criminele circuit mee. De arrestatie vond plaats in de kader van groot onderzoek naar de internationale cocaïnehandel. John Zuid-Amerika mee bijle. Hamasa naam is Zuid-Amerika mee. Apelen to Jano he. Sukkerwaarke rechtercommissaris. Iedemia ke dui haptake. Twee weken in de cel blijft. Zegt het OM. Bole chargo admie ma pakraan he. 26 tarre augustus ke. Ik er bare mee. Openbare zitting he. Op betaaie gee hega. In opdracht van Duigo Hollander, Nederlander, 42, 47 jaar oud, bolle februari mee, bolle in Colombia zijn gearresteerd, Colombia met pakraan heen, voor de drugshandel. In mei pakte de politie in Colombia nog een Nederlander op. Dus, Hamara Hollander, wanneer bij jou paaien cocaïne, ke maja, to is heb ke jij ke pakli zega, Colombia mee, Hamare, pjare, pjare, sunne walo, Hamare, janta. आप लोगों ने जानो भैया यहां बताए गए हैगा ट्वी तो द्री तेरो रिस्म फरदाख्तन मंगलवार के बुधवार के यहां बताए गए है नीदरलैंड में फॉर ओर डील भैले फॉर टेररिज्म अबले दर्द फरदाख्त जो हैगा वीख फरदेंगन फॉर टेररिज्म अबले जो नहीं इसे का कर ले रहा तो बातचीत होएगा तीनों टेररिस्ट फरदाख्तन इसे दुई हफ्ता के पकड़ के बन कैसे रोटरडम में और दर्दा वाला के सुख के लिए कमिश्नरस एगो 16 बरिस के और एगो 19 बरिस के लोंडा है रात के हिसाब इन फाल कैसे रोटरडम
अमस्टरडाम में, Eindhoven में, Alkmaar में जाए कि सबके पकड़ी से। और बोले बोले इन फालर वर्दन geen wapens aangetroffen, wel zijn enkele gegevens dragen in beslag genomen. Er is concreet doelwit of moment voor aanslag in beeld. तो ये बात नीदरलैंड के मानचित है हमारे जनता, जो आपको बताना हमारा काम है, बताना काम है। अब देखो भैया, आदमी एक मिला ओ तो लेकर रिश्तक से जाए, सुरीनाम के बातचीत है भैया, हीरा लतूर वेख के बातचीत है। अब देखे एक मिला मांगे हबड़ा हो ऐसे ही बड़ा पात्र पे, तो अब यो तो हुआ ओके रोकी जो ने अनमिया हबड़ा हो जाए। ये बात हुए है क्रॉसिंग लतूर के और फ्रैंकलिन वेख के, तो हुआ रैम करी सेगा जो ने अदमिया हबड़ा हो जाए मा ओकर पछुआ एगो ओ तो रहा हमें जना ओके हास रहा, तो वो तो हुआ नगे लेकर पीछे अगोरे उ इनहाल करके जाए के फूत कांगवा का मारी से भैया, मुंह फूत खांगर के मार के अपरे पेल भागल है। थोड़ा देर बाद फिन लौट के आयल है ब्लैक बेल एगो स्कौतुरा 25 बरिस के भाए, स्कौतुरा ओके सिपाही पकड़ के बंद करी से बोले फूत कांगर के तू फरेद कल्ले बाटे वाना दा खेन, ता एके अब्स कमिसारस में गए ले फोर द रेक्टर गए ले है, तो कमिसारस एके फ्राई कर दी सेगा वो फेस्टक करे से उपमार मिनिस्टर। अब बोलिए जॉनी कैसे हुई से कई चीज हुआ, तो एकर बारे में बताई गई है बोले बे आन कॉम्स्ट्रोफन वेस्ट दिनार है स्लाख्टोफर आन दात खेन तेकर फान लीवर में फर्दून मर गए रहा। बोले अन इस स्काकल बताई इसकी मर गए है, और बोले एट इट अंडरस्टू केस का ब्लेकन दात द ऑटोबस टू द कोर फान आ रही दें ओवर द लातूर वेग रेड है कौन फान इन द रिक्टिंग फान मार्टिन लिटर कुशवेग मार्टिन लुथर किंगवेग से रिक्टिंग इंदिरा गांधी वेग जात रहा दोस्तों। और बताया गया द पुलिस ब्लिक नीत दारू पीले रहा बकन ऑफ आंध्र बदवेलम द मिडलैंड ओकर रेप वेश्वर अहांग दैट अंडरसुक इन गफोर्डर है। लिखा फन स्लाख्टोफर इज नतुरली इन बरस्लाख नोमे। अब एकर बारे में अंडरसुक हुई का हुई का ना हुई, तो ऐसे बेचारा मर गए भैया अरे दिंग से। ये बात है हमारी जनता, प्यारे प्यारे जनता। बको भैया बारा चकल्लस भाई जो ही रखे रिंग में आवे भैया मिनिस्टर फॉन मेनी लांस बेनी लांस से साके में बोले कम करतन लांटी लोन के कितना आदमी है अमतनार जो दुबल सलारस पावे है भाई। तो मिनिस्टर ने आउट फोर्स से तरफ असेंबली मनी निश्वा भी बोले हैगा बोले फिर तीन होंदत आख्तम फिर तक आदमी के बोले सलारस हम लोग ब्लॉक हेयर कर दे ली बाटी। हाँ बिशक मिनिस्टर बोले है बोले हैगा फन द 2004 फे ऑन फेन 12 अमतनार जो सब न पावे है बोले फन 1253 तक आदमी के बोले हम लोग ब्लॉकेयर कर देली, तो कहे ना 800 हुआ के और करे है बतावे है। तो नीतू हेवन स्लैक नेगनन देर तक आदमी बोले हम लोग के उतरा ढेर में से अनमेल्ड करी से बोले टोटल ओवर है इस ब्रीड आपको ऊपर मान दाख में 1400 एंड 8 फेसेस लालस बोले ब्लॉकेयर कर ली बाटी। बोले को त्रायक तरहां फान सलारस ब्लॉकेयरिंग के बारे में बोले हों द ट्वीन सिवे सलारस एंड ओक ब्लॉकेयर बाकी भैया ब्लॉकेयर तो तू कर ले है बाकी अरमियन के जो देवत सलारस पावे है ओके तरीक वेरखंड क्रक से ना भरवाइए जो उन तरह पैसा पाए से भैया यहां बतावे करे कि हम लोग के रखेरे 200 मिलियन एसर दी पर यार ओकर पैसा पानी में चल जात रहा रखेरिंग की। और बताई गई हैगा बोले हैगा द वेस मान फॉर द आन दैट इट बलाई नीच गस्टूल इज ऑफ पॉपुलिज्म वार दो इंफॉर्मेशन पास द सामलीविंग वर्ड गदील वनेर दैट नोडिग इज। और बोले ये कान इन द डार ब्लॉकेयर मार दन फर्लिश ये जो रेक्सा ये मुद द प्रोसीड्यूर इन अख नेमर एंड दैट डून वे ऑल दिस मिनिस्टर फान बिशा और वो है मनीरस फान बी आउट फोर्स इतरफान उनसे DNA के बारे में हमारे जनता। भैया जो नदमी पयाल पे बैठे हैं पटवान वानी का हम लोग बोली ला अब बोले इंदिरा गांधी वेख
और वो परफॉर्म निकाह के बोले है तू लो जाने पे अल बेसुन भैया भाई सिगरी जहाँ चले वो पर से नहाल करे है नानी बड़ी चकल से एक बारे में ओमदार फीलर है परफॉर्म निकाह हरदम और बेशफेर मांगे पैसा कमाए भैया तो बेशफेर का करे फिलवम न मांगे रहे तो बगलिया में फिचपात है भैया फिचपतवा पर से चलाए गए नहाल करे है रुक लो से रे खतरा खरफन बेशफेर के बारे में है तो एक बारे में मिनिस्टर फॉर ट्रांसपोर्ट बोले हैगा बोले बारात से ऊपर फर्दर मात्रेगल ऑफ द रुकलोसर रही गदरागन फॉन बिशफिर अफ द स्ट्राफन अब तुझे ये स्ट्राफ करे ई चीज हुआ तो बड़ी दिन से हुए कैसे बोले है हिराम बोले आज द कुफर ड्रंकन इज देम एंड द पू एंड दैट इज ऑन सलांग सुरीनाम लाती के ये सब चीजों करे अरे जब तू प्रॉब्लम कंसंट्रेट पहले बाटे तब तो के चाहे ओपाप देखो भैया दुई वो कफरी के आंखी हिया बन कर ले बा फ्रेड ब्यूरोक्रेसी के बांचित हुए हमारे जनता बुधवार के और नईस एगो है और एगो हैगा 29 बरिस के दुई गो लंडन भैया फ्रेड ब्यूरोक्रेसी आमे ये सब घुसल है और जाएगे दिवताल करी सेगा ओवर खंडरा खाने रिसर्च और बतावे हैगा अंदर पुलिस चीफ आंखें की सब लातर मोमेंट पे जबर अन बिसोंदर ओवर द साग बकेंसर वार्डन खमाक तब बताएगा काम भैले और काना भैले लातरी के बारे में सब हम बताएगा हमारे जनता हम तो लोग के बोली ला हमारे तैतवा फिन हो गए है हाँ तो जय तैतवा हो गए है तो हमें चाही गाना का बोले हैगा रोकी के तो

हमारा प्रोग्राम यहां से खत्म आने क्यों हो रहा है, और आप लोग को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हमारा प्रोग्राम सुनने को। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम, और हमारा समाचार सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो हर शुक्रवार को 6 बजे हम शुरू करते हैं, मंगलवार को शाम को 6 बजे, सोमवार के दिन में 1 बजे हम हैर हाल करते हैं। बाय बाय, स्वाई स्वाई।

फूल को भी तुझको रफी जी की मोहम्मद रफी जी का ये सॉन्ग है। इस मूवी में हीरो था अजीत भाई जो विलन के रोल अब लोग अब वो करते हैं। तो निकट इंद्रियों से स्टका ये सॉन्ग था। तो अगला गीत की ओर हम चल, ये गीत जो है नहीं किया तो करके देख, मेरे ख्याल से इस गीत को हम पहली बार सुन रहा हूं। नहीं किया तो करके देख, और ये है नाइटिंगेल नहीं मुकेश का ये सॉन्ग है, करोड़ों का दिल चुराने वाला, द हार्ट ऑफ द मिलियन, माइटी मुकेश का ये सॉन्ग है और मूवी का नाम है चार दिल चार रहे। और 1950 का ये सॉन्ग है दोस्तों, आओ सुना जाए।

तो करके देख, ये तीतल तो बहुत मस्त है भैया। ओ और ये है हाथ जाओ दीवाने आए, मूवी का नाम है सिंगापुर। ऑल इज गोल्ड फॉर

हट जाओ और दीवाने आए, और कौन सा दीवाना आएंगे, हम आप लोग के लिए हम छोड़ देते हैं। और सुना जाए माइती मुकेश का ये सॉन्ग है।

0: और ऐसा ठुमक के मत चलो, ऐसा ठुमक के मत चलो कि आपको ठुमका लग जाए। तो ये गीत बहुत यानी कि मशहूर है दोस्तों, और ये है दिल तेरा दीवाना।
1: नजर बचा

0: नजर बचा करी चली गई वो, और क्या क्या गाया है, मशहूर सॉन्ग था हमारी दोस्तों।
1: आशीष में पैक्स हॉलों में भी फुटबॉल कर ले।
2: हिंदुस्तानी कब से स्पोर्ट में आएगी भैया द्वारका?
1: ना हिंदुस्तानी स्पोर्ट में आए, मारे सब सेलेक्ट पेयर करे सुरिनाम में।
2: ओके
1: या
2: मन हम जाने ला जितना फुटबॉल जरा कपड़ी रह रहा
1: या
2: हिंदुस्तानी
1: नहीं सुरिनाम में रह जाए
2: या एक हिंद एरफारिंग बट मैं फुटबॉल इज इन माय स्पोर्ट
1: जय हिंद रहा तकदीर बॉयज रहा
2: या
1: शांति दल रहा
2: पहचान लगा डाम के ओके जाने ला
1: ऑफ क्लास में जब हम बोली सब ऑफ क्लास में खेल ले
2: या
1: मार इस कांस ने पाओ पहले
2: मक्के कांस ले होतरा
1: अरे तू जाने तो खेले है और वो अब सुरिनाम से एल्फ ताल के फर्स्ट तरक करे
2: दैट में ये नहीं
1: या
2: दैट इज लाइक
1: या
2: वन एक एक एक होड बे ना नोई की दैट इन हिंदुस्तान एन होगर फुटबॉल में
1: नहीं नहीं नहीं हिंदुस्तानी खेली है सुनाम से अस्पताल में यार सीफन तक हमें ससन सीफन तक के बात है एक बकरा के ट्रेनर रहा रफूनर
2: ओ
1: जैसे वो उज्जर रहा तो
2: या या
1: तब
2: तो क्या कहते खुरून बोले थे ज्यादा रॉब वेद बोले तो
1: मैं नहीं मैं सीरियस रफूनर अपन टीम में सुनाम के सिलेक्शन में दो या तीन को हिंदुस्तानी के ले रहा भी और इस भर ने कॉन्काकाफ कॉन्काकाफ एंड सो फोर्थ जीतल है
2: मैं द्वारका तू फुटबॉल भी खेला
1: या
2: तू के हम कहां फुटबॉल खेले अब तेरे तोरे बे लोग की तो पकड़ी व्हाट हैव यू फुटबॉल फॉर स्पेन
1: या हम साफ छोटे से फुटबॉल
2: कहां से कहां पे खेले को कोनो फ्री ने किंग ऑफ किंग होन में एक क्लब ही
1: या एक क्लब ही मैं छोटा रहे तेरे लोग एक क्लब बनाओ थे नहीं
2: परसीना अरसीना से हम भी खेल ले बाटे
1: या या ब्रो तो फुट है
2: ब्रो तो फुट हम भी परसीना से खेली पोंपल मूड से खेली और का बोले जे कहीं वो बाल और पायर कपड़ा अपना लपेट के हमने मारी
1: मैं तो जाने पहले जो लेयर है बाल रहा
2: हाँ?
1: वो मेरे को बिना बाल रहा था
2: इधर बैठे के बाल अपना मैं याद है
1: टोके ओके पंप करके और एको फेटर तो के बांध के
2: हाँ
1: तो धलो तो के संझा खेले तो के सवेरे से एको कार सो में लगा हुए पड़ा जा रहा सी एल रहा
2: द वेरी नीड
1: हाँ तो वो मेरे रोंदम कार्स लगा के घाम में रख
2: काहे खातिर
1: तब ओके जब मरिए तो बलवा स्प्रे पूरे था
2: नो नो नो नो डिड वी सिग्नल
1: जिस तो बाल खेलत के जैसे वो तो पहले बिना बांध रहा
2: हाँ
1: वो बिना बाल जब ना बोरो हो जाता है
2: हाँ
1: द कोई नहीं स्पेल
2: द कोई नहीं स्पेल
1: नहीं
2: और हमें याद है तो बिना बांध के बाद बताइए भैया द्वारका बिना बंधुआ में एगो कभी कभी बिना बंधुआ निकल जाता जब कहीं फाड़ जाते को बोला हो जाता
1: हाँ वही चीज हुआ था
2: ओ क्या किसान या
1: जब बिना बाल तो फर के तो मैं पैरा वगैरह भर के तो खेल सकते
2: आओ यो यो यो यो यो इन मेल के यार ताल वास दैट ओके
1: दैट वास इन 1960
2: ik was nog niet eens geboren
1: nee maar,
2: als, maar ik heb er wel mee
1: maar, ja maar pahle sen ke football ok je to mois ne pompu kare to udne rond hota abhi
2: maar kahan tu rahte bhai rajan
1: jani ek mein khabore nikiri
2: ya
1: एन एन तो आलस
2: है मैं बलवा कहाँ खेलते हैं तू
1: निकेरी
2: में निकेरी में खेलते
1: हैं या मार दो
2: ओके
1: या या अपन इन पर मार दो फुटबॉल
2: हम लोग सुरिनाम में हम एक बैंक सेलोफोन आउट के सर मक्का तो हम लोग के पछवा को बकाल आई नहीं हम लोग बोले थे हम लोग डमो अप खेली तो बलवा मारे गो तो वो हम चल जाए कूद कूद हम लोग उतर वो वैसे निकले हैप्पी ना डू मई कमा एनी केरी नीट है
1: नहीं हम लोग गोत्र बगले ने खेले थे
2: ओके
1: फुटबॉल फेल्ट रहा मैं
2: या
1: एक वस्तु आलफ यार होते लोग परमार भी उचल ली मार जब आई नहीं परमार भी तो हुआ खली कफरी रहा गांव भर में
2: या या
1: स्कूल के बाद तब ना स्कूल तब सब के संग जाए खेले फुटबॉल रोज
2: या
1: रोज जाए फुटबॉल
2: मार वर्ट वास इन मोये टाइड है यू द्वारा
1: या कमा या और अन वैसे क्रिमिनलिटी सब चीज में रहा
2: नहीं
1: मकलक रहा सब चीज में
2: या प्रसिस भाई राजन सुनो ना लीचे खान एन द खाओ मैं से ओक फ्राग एन आप लोन तार करके अगर ये बताना चाहते हैं कि व्हाट हैव यू ली सो लुई खात इन योर यूथ द कैन यू ली हम बेल मैं से वही द्वारका भैया राजन द्वारका और हम बैठल बाटी कुछ अपन जवानी के यूथ के बारे में बता ही सके है और सो हुए तैयद एंड सलाख्त तैयद ओक 0 7 2 1 3 6 5 9 8 पे तो भाई राजन कुछ सुनाई हम उस सब के को गीत तो अभी हम लोग आ जाएंगे लदी मेंस वे बीच इन स्फीयर को मैं देंगे
1: या या से

0: और भैया राजन दुख भरे दिन बीते ने भैया, ये कौन फिल्म के गाना है क्या भाई राजन?
1: मदर इंडिया नहीं तालिया में हमें के देख लिया एक दफे थिएटर एम्पायर में
0: तालिया
1: या थिएटर एम्पायर में रहा सौंदक मेडक
0: या
1: रुसफीस रत्ना थिएटर एम्पायर
0: या
1: सौंदक मेडक के रहा मातनी फोर्स टैलेंट
0: या
1: और एक कार्ता पे दो जने जाए सके रहले
0: ओके
1: दिस बिफोर हम अकेले थिएटर आगे पहुंच ली हम तो हम अगोर मनई आए तो पूछे भैया तू अकेले बात है
0: हाँ
1: तो जब कोनो भेटाइए तो ही फेस तक सेंट और सेस तक सेंट वाला करता है तब दूजे
0: क्या था
1: फेस तक सेंट
0: या दैट वाज द मोये टाइम टू
1: या
0: ओके तहां थिएटर तालिया कैन एक दी बिस्टैंड नोग स्टेज तो
1: या थिएटर तालिया रहा नासी डॉक्टर नासीला जहां थिएटर स्टार ऑफ स्काई बड़ा हम
0: ओके
1: या मार लोग दरफा जा जाने स्कूल के तहत हम स्कूल जाते हैं सो
0: हाँ
1: तब हर दम में जैसे भी फिल्म आ तो जाने स्कूल ये तब तब ये दिन रहता है जॉनी
0: या
1: वन स्कूल के बाद हैश्वेरा के बाद चिट्ठी लिखे पड़ रहा था
0: ओके कोची के चिट्ठी तू ले घर रे द्वार का अब पहले ही ले है तू
1: नहीं मैं सीरीज जॉनी लावा सीरीज बतिया हो जाए पहले इसाई तो तुर बगले बैठे कोई ऐप कर दे एक सीरियस तरह से फल नजीर
0: या
1: तो तुरंत जान तू का ऐप करे
0: ना ना ना
1: शायद तेरे फ्रेंड ने तेरे से वो ऐप करे हुए तुरंत जान पाई तो
0: हाँ हाँ
1: और हम लोग के समय में तो हो जाने तू और उस समय पे ना तू स्कूल में कौन छोड़ी के चाहे लग ले और सो तब तू अब हिम्मत नहीं बोले कर तो के चाहे
0: तो कैसे बोले रह जाते ब्रीफी
1: या ब्रीफी से
0: ब्रीफी हो
1: या मैं ब्रीफी लिख के जब जब ब्रीफी लिख देते अपने हिम्मत है देवे कर
0: ओ दी मुझे ईमान पोस्टमोर्टम सुकर पोस्टमोर्टम चाहिए को जे
1: हम जब स्कूल जाते थे हमारे बगले को लौंडा बैठा था जब हमारे से घटिया रहा तो वे वो छोरी के चाहा था तो चिट्ठी लिखे तो चिट्ठी हमें दे बोले देवे के तो तब अरे बिरतियों में सब कुछ था खेते पाच जाए कब दे
0: या
1: महन जाए जे कि चिट्ठी हम उसके पढ़ के फाड़ के दिख दी
0: काहे के तू ना मांगते छोरी और कल के जाएगा
1: नहीं सीधा रही तो कि चिट्ठिया में का लिखा
0: और लिखा राजा जी मैंने ही लिखता हूँ तो यह कोई चीज तू बिचारा के
1: मार कई लड़कन अब कई लड़का घर भी मार खाल सो के चिट्ठी बाय बाप पाई गए भी
0: हाँ
1: जिस पहले इसे चला था चिट्ठी के जरिए ना
0: अब तो एक जरिए व्हाट्सएप
1: हाँ व्हाट्सएप और
0: ईमेल
1: हाँ उसके बाद जब आखी आखी मारो सब चीज ना है तो बगलिए बैठ के वो तो फिर के ऐप का दिल की
0: अब बोले मैया वो लंडवा में आखी मारी से वेट करो
1: या
0: दे दत के देखो
1: हाँ तब न
0: मैं छोड़िए भी आखी मारत रहा जी
1: या मैं छोड़िए अरे सब कोई इंसान है तो इधर से
0: हां
1: मैं लंदन और बदमाश रह ले
0: या
1: वो तो आज तलुक
0: मैं भाई द्वार का एक भी फ्रूख कर हम लोग किस तरह से लिफ्टिंग ना रहा तो हम लोग जाए नौता औता करे तो नौतु आप जो छोड़िए नौतु और में रहे तो उसे माए बाप अपन बिटियन के लिए अब जाए घर है तो वही पाचे हम लोग पीछे तो तू सुनिए एक से एक गाना लोंडर लानार में एपी का नाम का नाम
1: मर हमें को एको एको हमें ना एको कहावत याद है ये तू बोले
0: हाँ
1: तू जाने इस साइड तू न्यूटन के बाद बोले अभी मने लोगों ने सोचे बुधवार और हुआ है सो तो सब हम प्यार मोहब्बत न करे है का करे सब बेफोर बिल अपन नाना सके गए न्यूटा में तो गए तो नाना के कोनो ऐसे आगे कहो बुढ़िया या बगले कहो इसे बैठा
0: दे सोचे
1: बुढ़ोना खली एक भाव से ताकि
0: हाँ
1: तो
0: हाँ
1: मैं वो कहावत है चिजुआ के
0: हाँ
1: कि कौन कहते हैं बूढ़े लोग प्यार नहीं करता कौन कहते हैं बूढ़े लोग प्यार नहीं करता
0: परसीस
1: बूढ़े लोग प्यार करते हैं शक यही है फर्क यही है कि उस पर कोई शक नहीं करता
0: कोई शक ना वो चुप्पे से मार दे आंखें बदल करी
1: उसे क्या अपन नाना का बैठा ले लिया हम जाए नाची वाची Ja.
0: Maar wij raden Nikiri mee, kijk eens. Hoe oud was je toen je weg was van Nikiri?
1: 12 jaar.
0: Oh, dat waren we eens keren. Maar hoe heb je toen van basisschool volgen?
1: Ja, basisschool, maar dan liep er maar uit de hoge straat.
0: Ja, maar Nikiri vind ik nog steeds mooi, joh.
1: Ja,
0: ik heb de hele familie
1: en zo,
0: maar kijk eens naar de mampira, toen het op die willen wonen.
1: Maar eet kijk naar beerde.
0: Maskita, maar kan niet. Mampira na.
1: Oh.
0: Maskita, omdat Yarikawa uitkijkt bij Bakuyen, jullie liggen. De maskita wel liggen, maar één jatka liggen, salve, dan aan niet meer. Maar Nikiri met chobe en salve, je toen mijn kunstje joh, nat de kou.
1: Maar kon ik
0: niet. Hoe is dat ding weer? Mampira toch?
1: Ja, kon ik niet meer programma's doen, het heet शायद कभी बोल सके है तो भी बताइए
0: तो बताइए सके कि कैसे तरह मंपीरा
1: या वो छोटा के माल है
0: वो ना देखा है एक दिन हम गली निकली तुम तो टाइट वहां से जाओ और हमें चिजुआ काटे हम मारी एक भाव मस्कीटा ने सोमन पारामारी को शहर में हम लोग मस्कीटा मारी फट फट तो हमारी कोई मारे इवन करे चिजुआ एक भाव काटे एक तो लातर हम लोग बोली और सब कोई के और तो जाने हमें हम एक बार अलर्जीस फंदो लेकिन हमारा गोड़ फूल जा तो हतवा तो ये फूल के शुरू करी तब सबन बोली कि नहीं तब हम जल्दी जब गली फीनी चिराग में देखे द दिन का एनी थी सी
1: नहीं शायद धान वहां से ना होते मंदिर धान
0: दुकान दुकान दुकान उन्हीं केरी में ढेर है क्या चीज और एक वास ओक फॉर नीदरलैंड एक दिन हम गली निकेरी ना हुआ वे ना सी कड़ाबू पकड़े ए भगवान वही लागे कान पकड़ के दस दाई उठ बैठ ले ली कभी ना भाई द्वारका मस्कीटा उतर से हमसे हमारे नेफो जो ले गया हम में बोले दहिया भर में चांटा लगा ले ए द्वारका चांटवा तो मोटा लगे माखी हम थोड़े चांटवा घुसे लिए यार ऊपर लखिया भाई के
1: या मन मस्कीटा बहुत अरे इसाइट अभी सुनाम है मस्कीटा भरल
0: मदार है पी ओक फंदी देंगे हैं
1: या
0: ओके न्यूज़ भी पढ़ेल देंगे इस निकेरी निकेरी है परमारीबू में भी है
1: सुनाम है भरल
0: है फ्रॉम वही जो बताते हैं भाई उज्जैन ओतो के बांती सबन इधर और बीगे हैगा पानी जो उसे और ज्यादा पैदा हो गए हैं
1: या चार पैती भाई
0: चारों बगल है
1: पानी जहाँ निस्त्रो वो है
0: हाँ
1: उसन उसन संग तो सुनाम में भरल
0: बहुत ढेरेगा हाँ मैं सोमर में ये नहीं लाम पे मैं मस्की टाल गया
1: वही वही वही रखकर मारे भी
0: हाँ
1: टाइम में जो सब ने रखा
0: हाँ,
1: है
0: हाँ
1: पानी बल्टी में अफसो
0: हाँ
1: तो इसमें एयर और मन
0: या नीदरलैंड में भी मस्की टाएगा और एक टाइम के नीदरलैंड से एमसी नाम है जाते हैं बोले यार सुली सर नाम में चाटा ना लगे तो वही तुम्हारे टाइम में ना आए लास्ट पैर के चले पर नो भाई राजे ने लिख खावत ड्राइव
1: या पुराना गाना
0: है अच्छा एक गीत आप के लिए हम चलाते हैं और जेकर सैया हैं उस सब के लिए ना
1: वो चिट्ठिया वाला तो
0: ना सैया दिल में आया ना
1: अच्छा
0: ठीक है चलाई
1: या
0: ओके

तो भैया द्वारका राजन द्वारका यहाँ बज गए 8 हम सोचे हम लोग के रिक्लाम चाहिए करेंगे ना भाई द्वारका ook mooi gemaakt worden. Dus ik ga nu

0: औरो बड़ी अरमान से, बड़ी अरमान से लिखा है बलम तेरी कसम फिल्म मल्हार का ये गाना नेखतिन एन फैफ्तिख का, जिसको जिस फिल्म में लता जी और मुकेश जी गाया है। और ये गाना तो, और ये गाना जो अब हम चलाने जाते हैं भैया, ये गाना जो है बहुत पुराना गाना है गीता दत्त शैलेंद्र का, और इसमें हेमंत कुमार ने भी इस गाना को गाया है। दादा हेमंत कुमार ने मुझको तुम जो मिले तब वो क्या हुआ जहां भी मिल गए।
1: मशीन आज मैं बहुत

मिली जहां मिल गई, दादा हेमंत कुमार का ये गाना है और इस फिल्म में काम किया है मालहा सिन्हा ने गीता दत्त के साथ दोस्तों। और ये गाना है तुम तो प्यार हो सजना, और ये फिल्म है भाई शहरा का फिल्म है, और शहरा का फिल्म में क्या कहते आओ मिलके।

तुम तो प्यार हो हो सजनी, और लता और मोहम्मद रफी जी ये गाना आपको सुनाए। फिल्म शहरा का ये फिल्म लिखी थी इंद्रिय से अस्तक का, और ये नया गाना जो नहीं है पुराना गाना लिखी थी नेहने से अस्तक का है, और मुकेश जी इस गाना को गाया है फिल्म विश्वास का ये गाना। और मिलके सुना जाए हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों।

और दोस्तों चांद की दीवार न तोड़ो और प्यार भरा दिल तोड़ दिया फिल्म विश्वास का ये गाना निहित होने निहित शस्त्र का। और दोस्तों ये भी एक पुराना गाना हम चलाते हैं, फिल्म विजयंती माला राजेंद्र कुमार का ये फिल्म है साथी का ये गाना, और ये हम यहाँ से रेडियो फाहुन के माध्यम से चलाते हैं हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों, और आओ मिलकर सुना जाए कि ये क्या गाते हैं।

मेरा प्यार भी तू है और ये बहार भी तू है, फिल्म साथी का ये गाना हमने निकाला है और जिसमें काम किया है विजयंती माला और राजेंद्र ने दोस्तों। और ये गाना है मोहम्मद रफी जी, परमाशी मोहम्मद रफी जी इस गाना को गाया है लक्ष्मीकंद के प्यारे, लक्ष्मीकंद प्यारे लाल के साथ पे। और ये गाना है फिल्म दोस्ती का और दोस्ती के गाना उसने सुनना चाहते हैं तो यहां से हम चला देते हैं और यहां से मेरे दोस्ती मेरे

और दोस्तों मेरी दोस्ती और मेरा प्यार, और इस गाना को मांग किया है और वो है सुरेश हरि प्रसाद भैया है नकन, बर्तन अर्तन धोई के भैया एकदम तैयार है। और बोले जॉनी ये गाना है फिल्म नूर जहां का, ये गाना है आओ मिलकर और हम सब और सुना जाए।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया, उनको हमसे प्यार है।

और मैं पल दो पल का शायर शायर और शायर हूँ। तो ये गीत को है सलमा और सबीना का तौबा तौबा मामा मिया।

और तौबा तौबा चक्कर में न आना, और बुरा है जमाना, सलमा और सबीना का ये सॉन्ग है। तो ये गीत कौन है दोस्तों, ये भी एक यूपी पोल पद्मश्री मोहम्मद रफी का एक हिट सॉन्ग है जो यहां से हम आपको सुनाते हैं। तू इस तरह से मेरे जिंदगी में और आना, कौन इस तरह से आना, ये गीत आपको बताते हैं।

Our to Mr. Asi, और मेरे जिंदगी में शामिल जरूर होना। तो महेंद्र कपूर का ये एक लाइफ ऑफ नाम है जो आप लोग को हम सुनाएंगे।

हाय जानी चमने और तेरा गोरा गोरा बनन में क्या हलचल मच चुका है। ओहो आशा जी रोमांटिक सॉन्ग वक्त सॉन्ग के नाम है जब हम जब जमीन पे वो फिक्र नाम है वक्त 1965 का।

हम जब सिमट के आप और बाहों में आ गए, और वो है महेंद्र कपूर का ये सॉन्ग है। दोस्तों हम चलते हैं अगला सॉन्ग के लिए। तो ये क्या है दोस्तों, हम सफर मेरी हम सफर, और वो नाइटिगेल नाइटिगेल, और वो है लता जी का ये सॉन्ग है।

और हम सफरी मेरी हम सफरी और ये बहुत बेमिसाल जोन है हमारी यारो हमारी दोस्तों। तो अगला गीत के ओर हम चलते हैं। न्यू निवर रे तुम्हारी नजरी क्यों खफा हो गई और गुस्सा मत कीजिए परमा श्री मोहम्मद रफी और नाइकी ये लता जी का मोफी का नाम है दो कलियां।

तुम्हारी नजरे अरे क्यों खफा हो गई है और खता बस्त दो। दोस्तों ये एक मस्त भरी सॉन्ग जो आपको हम सुनाने जा रहा है हेमंत दादा का, ये सॉन्ग है।

0: जो आपको हमने सुना ही दिया है यारो।
1: कवि न बन,
0: अगर कविता किसी हो तो ध्यान से सुनिए।

आपके प्यार में कभी कोई कवि ना बन जाएंगे। तो हम और एक चलते हैं, जीवन भर ढूंढा जिसको वो प्यार अभी तक नहीं मिला है।

और जीवन भरे ढूंढा जिसको वो प्यार तो नहीं मिला हमारे यारो। ये सॉन्ग जो है दोस्तों पुराने गीतों की बाहर सॉन्ग है जो मेरे ख्याल से न सिर्फ मुझे आपको और आपकी बगल वाला या बगल वाली को भी अच्छा लगेगे। और लातवैखनीते में द ओव निमर्स फन मेरे दिलिए पुकारे आजा। मूवी का नाम है नागिन।